0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
3: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
7: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.co.nz.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favorite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
14: हम

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. और जैसा कि आप सुन सकते हैं, अभी आपके लिए हम लंच बॉक्स का ये सफर लेकर आ रहे हैं. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग हियर, बट राइट नाउ जस्ट गिविंग यू ऑल एन अपडेट कि केतन जो है ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. और आज जस्ट फॉर अ सरप्राइज आई एम हियर टू कीप यू कंपनी टिल केतन कम्स. इट बी अ वेरी सुन, डोंट वरी. मुझे पता है कि आपको उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है दिस टाइम, बिकॉज ही इज योर पैल, ही इज योर फ्रेंड एट लंच ब्रेक और लंच के टाइम पे लंच का मंच करते हुए. सो वेरी सून ही विल जॉइन अस, बट टाइम बीइंग के लिए देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन हम एंड स्पेशली ऑन लंच बॉक्स टुडे. आपके लिए और भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें हम लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि इतनी सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है यार. अभी ना राहत फतेह अली खान जो है ये आने वाले हैं 25th ऑफ जुलाई को यहाँ सुपर सिटी ऑकलैंड परफॉर्म करने के लिए, और इनका शो रहेगा एट द ट्रस्ट अरेना. तो इफ यू वॉन्ट टू ग्रैब योर टिकट्स फॉर दैट, dryTickets.com, रिमेंबर dryTickets.com से आप टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा. JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shahzada Productions जो है इनकी ओर से आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विटनेस नन अदर देन राहत फतेह अली खान लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू विन सम पासेस, उप्स, उसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज करनी होगी, वो है ये कि सुनते रहिएगा लंच बॉक्स. थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि पासेस जीतने के लिए एक्चुअली आपको क्या करना है. कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसी कोई चीज़ नहीं करनी है आपको. बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है और वो है हमारा सोशल मीडिया विजिट करना है. बट आफ्टर दैट व्हाट डू यू नीड टू डू, वेल कीप लिसनिंग, इन अ व्हाइल आई विल बी टेलिंग यू.

0: सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सॉन्ग. बहुत ही पसंद है मुझे तो ये गाना पर्सनली, बट उम्मीद है कि यू हैव ऑल्सो एंजॉयड इट, आपको भी पसंद आया. एंड इफ यू लाइक इट डू लेट मी नो 5599 फिर ऐसे और भी कमाल के गाने आपके लिए लंच बॉक्स में आज आप केतन के साथ भी सुनते रहेंगे बस थोड़ी देर में. बट फिलहाल 26 मिनट्स अवे फ्रॉम 1 PM एंड मैंने अभी मेंशन किया था ना कि आपको बताएंगे कैसे आप जीत सकते हैं एक डबल पास. अगर आप इंटरेस्टेड है टू विटनेस दिस मैजिकल म्यूजिकल परफॉर्मेंस वन एंड ओनली शो इन न्यूजीलैंड जो कि 25 जुलाई को होने जा रहा है, राहत फतेह अली खान आ रहे हैं आपके लिए अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक लेकर, जहां पर सूफी सॉन्ग्स तो रहेंगे ही पर खूबसूरत कव्वालियों के साथ साथ बॉलीवुड का नशा भी आपको चखने को मिलेगा. तो ये सब कुछ हो रहा है और इसके लिए dryticketscom दैट्स द प्लेस जहां से आपको टिकट्स ग्रैब करने हैं. जेके स्टार प्रोडक्शन, स्कोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन की ओर से हो रहा है. सो राइट नाउ मेरे पास करीबन 3-4 मिनट्स है एंड विद इन दिस 3-4 मिनट्स व्हाट आई वांट यू टू डू इज 0800 00 हम. रिमेंबर 0800 00 हम, इस नंबर पर आपको कॉल करना है. लेकिन कॉल कर कहना क्या है, वेल आपको बताना है ऐसे किसी एक राहत फतेह अली खान सॉन्ग के बारे में, अ सॉन्ग दैट राहत फतेह अली खान इज संग जो आपको आपकी लाइफ के करंट सिचुएशन से बड़ा रिलेटेबल लगता है. मतलब आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी कमाल की, बड़ी मस्त है, तो वो उससे रिलेटेड कोई गाना दैट हैज़ बिन संग बाय राहत फतेह अली खान एंड यू थिंक लाइक ओके दिस सूट्स माय लाइफ राइट नाउ, या फिर आपकी ज़िंदगी अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी यू नो उदास है, तो आप अगर कोई सैड सॉन्ग जो उन्होंने गाया है वो डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं. और देयर इज़ समवन रियली स्पेशल इन योर लाइफ एंड दैट समवन स्पेशल रिमाइंड्स यू ऑफ अ सॉन्ग दैट राहत फतेह अली खान है संग, तो वो आप हम बता सकते हैं. यू हैव गॉट options to choose from, right? So 0800 00 hum, 0800 00 4866 par give me a call right now and bataiye Rahat Fateh Ali Khan ka wo kaun sa gana hai jo aapko bada relatable lagta hai ya kisi ke liye aap dedicate karna chahte in your life and I'll put your name in the draw. Hello ji, good afternoon.
1: Hello
0: ji, kin se baat ho rahi hai?
1: Anthony,
0: kaise hain aap?
1: ठीक है, आपको जो कैसे आपको
0: मैं एकदम बढ़िया. एंथनी, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं आपसे क्या?
1: साउंड स्लो करना
0: है जी.
1: अच्छा, मेरा वाइफ के लिए वो ये गाना राहत फतेह अली खान का बहुत पसंद है, तेरी मेरी
0: तेरी तेरी मेरी कोई गाना है. I think you are talking about the song from Bodyguard, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी. राइट, हाँ. देखो मेरे को गाना नहीं आता पर मैंने बता दिया कौन सा गाना सोच रहे थे आप. सो एंथनी, ओके एंथनी, जस्ट गिव मी मोमेंट, आई विल पुट योर नेम इन द ड्रॉ. मेरे को आपका नंबर नोट करना है इफ यू डोंट माइंड. एंड एंथनी, आई हैव गॉट योर नंबर हियर और आपका नाम ड्रॉ में मैं डेफिनेटली शामिल कर रही हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. आपकी वाइफ का नाम क्या है बाय द वे?
1: मेरा
0: नहीं, आपकी पत्नी का है. आपका नाम तो एंथनी वो पता चल गया, पत्नी का क्या नाम है भाई साहब?
1: पत्नी का नाम आशा.
0: आशा, चलो थैंक यू सो मच एंथनी फॉर योर कॉल, हैव अ वंडरफुल डे.
1: बाय
0: बाय. राइट, वन मोर कॉल. गुड आफ्टरनून.
2: गुड आफ्टरनून पूजा जी, कैसे हो? केवल बोल रहा हूँ.
0: केवल कैसे है? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आपके क्या हाल है?
2: बहुत अच्छा दिन है आज, बहुत ही अच्छा दिन है.
0: खूबसूरत धूप खिली है ना?
2: ठंड भी है, धूप भी है.
0: ठंड भी है, धूप भी है, वही तो खूबसूरती है न्यूजीलैंड के मौसम का भाई. चलो केवल आप बताइए, पहले तो ये बताइए मुझे, गाना आपकी लाइफ पर आधारित है या फिर किसी को डेडिकेट कर रहे हैं?
2: लाइफ.
0: आई लव दिस चॉइस. तो लाइफ पर आधारित कौन सा गाना?
2: वो तेरा भी बिछड़ना जरूरी था.
0: हाँ, वो तो बड़ा दर्द भरा सैड सॉन्ग है.
2: बस वही दर्द भरा हुआ है.
0: अच्छा, कोई बिछड़ गया लगता है आपकी लाइफ में?
2: हाँ जी.
0: अच्छा चलो, आई वांट
2: एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था.
0: अरे ब्रेकअप, I feel for you brother, but I hope ki you come out of this stronger and you find someone in your life jo aapki life mein dher sari khushiyan dher sara pyar lekar aaye. Thank you so much for your call Keval, aapka naam bhi

0: कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम गेट $100 डिजिटल वीजा कार्ड विद AMI। Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
2: Otara, oh yeah.
3: South Auckland's buses just became a lot better.
2: Grey South Road, now even greener.
3: With better bus routes, more frequent buses, and more.
2: Weymouth Road, way better buses.
3: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
4: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

It's Valentine's Day. Groove.

0: Shots.
1: लंचबॉक्स में आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज का ये सफर जहां पर चटनी शॉट्स की बारी आई है. बट बिफोर वी गेट चटनी शॉट्स फॉर यू, आज एक चीज़ के बारे में आपसे हम बातें करना चाहते हैं. दिस इज समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. काफ़ी बातचीत हो रही है एंड सम डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. सो दिस स्टोरी इज ट्रेंडिंग राइट नाउ एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस, पर अगर आपने ये नहीं सुना है तो चलिए इसके बारे में पहले आपको कुछ चीज़ें बताते हैं. इनफैक्ट आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो भी हमने कुछ बातें की थी इसके बारे में. एंड दिस इज बेसिकली अ सिचुएशन जहाँ पर प्रणीत मोरे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है ये, और इनके शो में एक शख्स जो है ये आए थे. नॉर्मली प्रणीत जो है ये काफ़ी यू नो इंटरेक्शन करते हैं अपने जो भी गेस्ट्स होते हैं उनके साथ, उनसे सवाल जवाब का एक राउंड रखते हैं बेसिकली, जहाँ पर कुछ बातें उनसे करते हैं और उनका जो भी कॉन्वर्सेशन होता है उससे वो अपने यू नो पेजेस पर, अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं. सो ही हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ कॉन्टेंट क्रिएटर नेम्ड हिमांशु जांगरा. और हिमांशु जो है रिसेंटली ही हैज़ फाउंड हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी आफ्टर उनका एक वीडियो जहाँ पर ही वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद प्रणीत, इट वेंट वायरल. और बेसिकली एक डिबेट सी ऑनलाइन छिड़ चुकी है आफ्टर दिस इंसिडेंट गेन अ लॉट ऑफ अटेंशन. नाउ जो वीडियो सर्कुलेट हुआ उसमें दरअसल इनका जो रिएक्शन है हिमांशु का, ये इनको काफ़ी भारी पड़ा. इस पर्टिकुलर क्लिप में हिमांशु प्रणीत को एक सिचुएशन नरेट कर रहे हैं जहाँ पर ही टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ही टुक अ गर्ल ऑन अ डेट, और उनके साथ वो डेट पर गए थे. द गर्ल हैड आस्क्ड फॉर लाइक ओके विल हैव सम बिरयानी एंड देन द बॉय ऑर्डर्ड द बिरयानी, और बिरयानी आई खाने के बाद एंड द गर्ल वॉज लाइक कि ओके आई थिंक आई टेक अ लीव, आई विल गो होम. एंड द बॉय इज़ लाइक कि अरे मन में सोचा उसने ऐसा, जो ही आउट राइटली सेड इट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंड अप कॉमेडी शो जहाँ पर ये गए थे, कि इनकी बिरयानी करीबन 370 रुपीज़ की आई होगी और 370 रुपीज़ इन्होंने स्पेंड किया है तो वसूलेंगे, तो और वसूलने के लिए ये लड़की ऐसे कैसे बिरयानी खा के चल दी. तो इन्होंने जब ये कमेंट किया, इनका ये वीडियो वायरल हुआ. अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली क्रिटिसाइज प्रणीत एज वेल कि वो ऐसे सिचुएशन में हंस रहे थे, काइंड ऑफ इनकरेज द होल पॉइंट. आफ्टर विच प्रणीत हैज अपोलोजाइज्ड और उन्होंने वो पर्टिकुलर वीडियो अपना जो है ये डिलीट कर दिया. द कॉन्ट्रोवर्सी हैज इवॉल्व नाउ एंड अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि जिस कंपनी के लिए ये काम करते हैं उस कंपनी के डायरेक्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बातें हिमांशु ने कही है वो उनका जो सिचुएशन दर्शाता है, इट डजेंट रिफ्लेक्ट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी डजेंट अग्री विद वट एवर ही हैज सेड. तो इसीलिए उनको उनके ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए या ऐसे स्टेटमेंट के लिए उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया है, उनको बेसिकली टर्मिनेट कर दिया गया है. नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन वेंट वायरल, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन केम आउट, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी से भी अब हाथ धो दिया है, बेसिकली अपनी नौकरी गवा दी है. एंड क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अगेन कि जो हुआ क्या वो सही हुआ. व्हाट अबाउट यू, आपका क्या कहना है. वट एवर हैज हैपेंड विद हिमांशु, मतलब हिम बेसिकली बीइंग टर्मिनेटेड, वॉज इट समथिंग ही डिजर्व्ड. वट डू यू हैव टू से अबाउट दिस. डू यू थिंक The company has taken the right decision. 5599 पर आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर. एंड नो दिस दैट दिस इज नाउ लाइक नॉट अ मेड अप स्टोरी और समथिंग, इट्स बेसिकली समथिंग दैट हैज हैपेंड इन रियल. समवन हैज सेड समथिंग जिसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए गए हैं और जिसके लिए अब उनका ये सिचुएशन हुआ है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनकी नौकरी से उनको निकाल दिया गया है. तो आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आप बस हमें कॉल कर सकते, आई मीन सॉरी मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, सेंड योर मैसेज थ्रू ऑन 5599 एंड थोड़ी देर बाद विल सी कि आपने क्या कुछ कहा है इस टॉपिक पर, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर दैट यू लाइक टू फॉर अस टू शेयर. सो रिमेंबर लंच बॉक्स का मजा आप उठा रहे हैं, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वेंसडे 10th ऑफ जून है आज, और फिलहाल 9 मिनट बाकी है 1 बजने में.
0: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
1: थ्रोबैक से पहले ज्योत्सना जी आपका मैसेज आया है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कंपनी ऑन लंच बॉक्स टुडे. केतन के बारे में पूछ रहे हैं आप. सो जस्ट लेटिंग यू नो ही इज रीचिंग वेरी सून. आई थिंक ये आपके साथ लंच के मंच से जरूर देंगे और आपके साथ बने रहेंगे आज के इस लंच बॉक्स के सफर में. सो ही विल बी देयर वेरी सून, जस्ट अराइविंग इन अ फ्यू मिनट्स. ओके, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास प्रिया आपका भी मैसेज आया है. आज जो हमने चटनी शॉट में स्टोरी शेयर की है उसके बारे में आपने मेंशन किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करने के लिए. फिलहाल चलिए आज का थ्रोबैक लेकर आ रहे हैं आपके लिए. वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द ईयर 1996. ये फिल्म आई थी मासूम. ये ओरिजिनल मासूम नहीं है, वो 80s में आई थी जिसमें उर्मिला मातुंगर और जुगल हंसराज थे, शबाना आजमी है, नसरुद्दीन शाह. लेकिन ये जो मासूम है 1996 में आई थी. अगर आपने नहीं देखी है कभी, ऐसे आपका भी दिल किया कि यू नो कोई ऐसी पुरानी फिल्में जो है ये देखे, कुछ यादें ताज़ा करें, तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो इस फिल्म में इंदर कुमार थे मेरे ख्याल से और आयशा जुल्का, उन्हीं पर इनफैक्ट ये गाना भी पिक्चराइज है. एंड ओमकार कपूर, ही प्लेड दिस लिटिल बॉय, वेरी क्यूट कैरेक्टर था इनका, उनका किरदार इन्होंने निभाया था और उनके ऊपर वो गाना छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, वो गाना भी पिक्चराइज है. सो यस, फिल्म मासूम का ये गाना. अब चलिए आपके लिए आज के थ्रोबैक में ऑन लंच बॉक्स अभिजीत और साथ में साधना सरगम की आवाज़ों में.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 7 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज काफ़ी मॉडरेट और पार्शली क्लाउडी आपको देखने को मिल सकती है लेटर ऑन, बट यस अभी के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और आज का दिन सनसेट होगा 5:12 पे। लंच बॉक्स
2: विद केतन, ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: केड़ा नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बोला आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। पर यस, मैं अभी जस्ट आया हूँ, थोड़ी देर पहले पूजा थी यहाँ पे, बिकॉज शी वॉज कवरिंग अ बिट फॉर मी। मैं किसी इम्पॉर्टेंट काम में थोड़ा फंस गया था, उस वजह से लेट हो रहा था मैं, सो आई जस्ट इन्फॉर्म हर एंड या शी वॉज हियर फॉर फर्स्ट आवर ऑफ द शो। बट यस, कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है आपका दिन? दिन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मॉर्निंग कैसी गई? एक घंटा एक्चुअली बीत चुका है। लंच बॉक्स में आप क्या लेके आए हैं, लेट मी नो। 5555 इज द नंबर। पर यस, अभी के लिए और भी बातें होने वाली है, शुरुआत करेंगे बिजली गिरेगी। देवेंद्र पॉल सिंह बाबू की आवाज में आप ये एंजॉय करेगा ना। लेकिन यस, थोड़ी देर में आपके लिए लंच टाइम के से लेके कौन कौन सी खबरें हैं जो इस आर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए एंजॉय करो ये, और उसके बाद क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना,
0: बचाओ क्या

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: वेलकम बैक. वेल, अभी आपके लिए लेके आने वाला हूँ लंच टाइम रेंट लाइन, जहाँ पे आप मुझे भेजेंगे ऐसे मैसेजेस, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही इरिटेट फील करवाती है. दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी स्मॉल बट आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं. ऑफकोर्स एट द सेम टाइम यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो यस, डू सेंड मी द टेक्स्ट एंड लेट मी नो. काफी इंटरेस्टिंग मुझे मैसेजेस आते हैं इस सेगमेंट में और काफी यू नो एंटरटेनिंग भी होता है. सो यस, फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए. वैसे लेटर ऑन लेटेस्ट खबर के साथ साथ आपको बॉलीवुड की खबर भी मैं बताते रहूंगा, तो कहीं मत जाइए एंड कीप लिसनिंग टू दिस अमेजिंग शो, लंच बॉक्स शो. मेरा नाम केतन है. अंटिल 3 आई एम हियर.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
1: हम.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहां से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
6: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ भी नहीं. एक 2-3 दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है. 6 to 10 a.m.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic holiday destinations in the Pacific. Fly return to Samoa from just $795 or to Tonga return from only $735. Take that well-deserved holiday in Fiji and beyond with Fiji Airways. Sail on now. Book today at fijiairways.com or call your travel agent.
8: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: Please use your imagination for the following ad.
10: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
9: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
11: Slide.

0: पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Maki Road, Papa Toitoi, plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Mujhe pasand hai ladka. Hum.
1: Lunchtime, Rant Line.
3: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं. लंच बॉक्स डेज, मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो पे 104.2 एफएम के जरिए. वेलियस पहला मैसेज है जय का. वो कहते हैं पाकुरंगा से, व्हाई डज एवरी फैमिली गैदरिंग इवेंचुअली बिकम डिस्कशन अबाउट प्रॉपर्टी प्राइसेस. दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू. बट ये लड़कों में ही होता है, लाइक यू नो इट डजंट गो विद द गर्ल्स. होता होगा उनके भी, बट ऑब्वियसली उन मेजर कन्वर्सेशन में मैं था नहीं तो आई वुडंट नो. निशा कहती हैं ग्लेनफील्ड से, हे केतन, पीपल हु डोंट रिप्लेस द टॉयलेट पेपर शुड रोल लूज प्रिविलेजेस. हैं बहुत ही सर के ऊपर वाली अंग्रेजी थी, बट लुक्स लाइक आप कुछ तो कंप्लेन कर रहे हो यहाँ पे टॉयलेट के लिए कि वो रिप्लेस नहीं करते हैं. इट इज़ लाइक जस्ट बीइंग देयर और फिर आपको करना पड़ता है बीइंग इन काफ़ी सीरियस सिचुएशन में. फरजाना कहती है मनोरेवा से, हाय केतन, आंटीज कैन फाइंड आउट रिलेशनशिप न्यूज फास्टर देन सोशल मीडिया. दैट इज सो ट्रू यार, मतलब देखते ही पता पड़ जाता है उनको. करण कहते हैं ओनेंगा से, बुला केतन, फीजी इंडियन फैमिली स्ट्रीट लेफ्ट ओवर लाइक वैल्यूएबल एसेट. दिस इज नॉट जस्ट फीजी इंडियन थिंग, ये मेरे पापा का भी है. आई नो माय पापा लाइक इतने सालों, 15 साल 20 साल से चीज़ें पड़ी रहती, बट ही डजंट, ही इज डेयर टू गिव इट टू द जो यू नो स्क्रैप वाले आते ना, उनको देने को मना कर दे. बोली पता नहीं क्या, किस चीज़ का वेट करेंगे कल को, क्या पता 50 साल बाद एकदम कीमत उसकी बढ़ जाए. अजय कहते हैं हाय केतन, माउंट रॉसल से, ऑकलैंड रोडवर्क से हैव बीन देयर सो लॉन्ग दे आर पार्ट ऑफ सीनरी. ये तो काफी, और काफी जोक्स भी बनते हैं इस पे तो, एक्चुअली काफी रोस्ट भी किया जाता है. लीना फ्रॉम न्यूलैंड, केतन भाई, एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज अ ड्रॉअर फुल ऑफ टेक अवे मेनस नोबडी यूजेस एनीमोर. वेल यस, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. आप बस बने रहिए बिकॉज थोड़ी देर में आपके लिए और भी अपडेट लेके आऊँगा, लेटेस्ट खबर भी लेके आऊँगा. अभी के लिए है जवानी तो इश्क होना है, शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज में आप एंजॉय करिए ये वाला गाना.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: क्या नमस्ते वेलकम बैक यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स मेरा नाम केतन है और अभी की कुछ इंटरेस्टिंग खबर लेके आया हूँ मैं पार्लियामेंट वेलिंगटन के पार्लियामेंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गोस्ट टूर के बारे में वैसे हेलोवीन के मौके पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी को एक हॉन्टेड हाउस में बदल दिया गया था ये लाइब्रेरी पार्लियामेंट के सबसे पुराने बिल्डिंग्स में से एक है और यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की कई कहानियां मशहूर है वैसे टूर गाइड्स विक्टोरियन एरा गोस्ट के कॉस्ट्यूम्स पहनकर विजिटर्स को अंधेरी कॉरिडोर्स और अंधेरे कॉरिडोर में मेरे को तो मुंबई वाले को अंधेरी याद आ गई अंधेरे कॉरिडोर्स और गॉथिक स्टाइल लाइब्रेरी के अंदर ले गए और टूर में सबसे ज्यादा चर्चा थी फॉर्मर MP विलियम लेनाकी जिनकी डेथ 1898 में पार्लियामेंट के अंदर हुई थी और जिन्हें आज भी यहाँ के सबसे मशहूर गोस्ट में माना जाता है क्या बात है उनमें भी मशहूरता होती है नाइस यार वैसे इस गोस्ट टूर में हिस्ट्री मिस्ट्री और थोड़ा सा हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के छुपे हुए इतिहास को एक नए अंदाज में दिखाने का भी एक अनोखा तरीका है अनोखा तो है भाई लेकिन जो तरीका है इट इज़ नॉट वेरी क्योंकि भाई ऑनेस्टली बताऊँ मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगती है ये गोस्ट वाली मूवीज और ये सब बट फटती तो है मतलब कुछ भी बोलो फटती तो है बढ़िया साहब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे हुआ था डजेंट मैटर इट कैन बी आउट ऑफ न्यूजीलैंड एज वेल मेरा राय जब मैंने पहली बार क्वींसटाउन में जो वो गोस्ट का बना होता ना हॉन्टेड हाउस तो वहाँ मैंने विजिट किया था बट मैं गलत लोगों के साथ चला गया था यू नो इट नीड्स टू बी द प्रॉपर ग्रुप एज वेल मैं उन लोगों के साथ गया जिसमें सच में एक बंदे को तो खुद गोस्ट को बोलना पड़ा कंप्लेन का एक होता ना जैसे कोई अगर विजिट कर रहा है तो अगर आप पैनिक सिचुएशन में हो तो आप एक शॉर्टकट कुछ बटन दबा सकते हैं ताकि आपको बाहर निकाल सकते हमारे केस में गोस्ट ने किया था जो गोस्ट एक्ट कर रहा था उसको दबाना पड़ा बोले कि भाई इनको निकालो ये हमको डराने नहीं दे रहे बट हाँ वो हमारा पहला इंसिडेंट था बट यस मेरा एक बकेट लिस्ट है यहाँ का जो आई थिंक पुकेको है या पुकेनो की तरफ जाते हैं एक गोस्ट कराका से भी एक रास्ता दिखता है वहाँ पे जाना है मुझे और वहाँ पे विजिट करके एक्सपीरियंस करना है कि कैसा है हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन देयर लेट मी नो

0: स्वागत करता हूँ फिर से। वेल यस, अभी एक और नई खबर आई है जहाँ पे आज के काफी शॉकिंग न्यूज आई है कनाडा से। वेल, एयर कनाडा के फॉर्मर पायलट जॉफ्री वॉल को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया है, और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगी, उन्होंने लगभग 16 साल तक कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाई लेकिन उनके पास कैप्टन के लिए जरूरी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस नहीं थे। पायलट के मुताबिक उन्होंने 2009 से 2025 के बीच 900 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट की, और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि पायलट के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी और एक रूटीन चेक के दौरान वो पकड़े गए। वैसे उन पर फ्रॉड और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल भी करने के आरोप लगे हैं। हालांकि एयर कनाडा ने कहा है कि पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है क्योंकि पायलट रेगुलर ट्रेनिंग और फ्लाइट कॉम्पिटेंसी चेक पास करते थे, लेकिन एयरलाइन ने इस मामले को बहुत गंभीर बताया और पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया था। वैसे ये केस एविएशन इंडस्ट्री में लाइसेंस और सेफ्टी चेक को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा लूपहोल कैसे हो सकता है दैट ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रही है, लेकिन बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है। दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। एक मैसेज भी आया है उन्होंने, शायद मुझे पुराना मैसेज जो एक सवाल किया था मैंने कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट करती है बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर द लंच टाइम। इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया बट ही इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स हेड ऑन साइट 9 AM मॉर्निंग मीटिंग्स। अरे अक्की का नाम है, अक्की इन्होंने नाम बताया अपना। तो ये कहते हैं, ये कंप्लेन करते हैं रिगार्डिंग द मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग होती है 9 AM, उसकी बात हुई है। बट यस, मैं करता था जब मैं हेस्टिंग्स में काम करता था वहाँ पे होता था, नॉर्निंग एक्चुअली हमारे तो 8:30 बजे होता था, यानी कि वी नीड टू बी देयर बाय 8 एट द ऑफिस, गेट रेडी फॉर द मीटिंग, और उसमें मिनट मेकिंग्स और ये सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी पड़ती। डिफरेंट एक्सपीरियंस है यार, मुझे लगता है कि हाँ इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। बट थैंक यू फॉर सेंडिंग मैसेज अक्की।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text HOCKEY to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Kino could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
8: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
9: Lunchbox with Keith.
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
9: इसके पीछे?
1: हम।
9: Lunch के मंच पे।
0: चलिए बॉलीवुड से भी कुछ खबर लेके आए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से कलेक्शंस आए हैं, कितने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहे हैं, उस पर भी थोड़ी नजर डाल देंगे। बट यस, एट द सेम टाइम कुछ नए मूवीज की भी चर्चा हो रही है। अभी धमाल 4 की भी बात हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्टर लग रहा है, पोस्टर लॉन्च हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें रितेश देखमुख फिर से दिख रहे हैं लेकिन सरप्राइजिंगली वी माइट हैव अजय देवगन एज वेल। वाओ, अमेजिंग यार, फिर से एक आई फील लाइक यू नो काइंड ऑफ सिमिलर टू गोलमाल अगेन जैसा कहानी हो सकती है। बट लेट्स वेट एंड वॉच जब वो सेकेंड पोस्टर डालेंगे। बट यस, है जवानी तो इश्क होना है, अभी तक वर्डिक्ट जो है वो पेंडिंग है, बट स्टिल द रिकॉर्ड इज सेइंग इट्स 26.43 INR करोड़ का कलेक्शन किया है इंडिया में अलोन। एंड उसके बाद बंदर ने 2.58, पेडी ने 12.99, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो 1.56 जो फ्लॉप हो चुकी है, श्री बाबा नीब करोरी महाराज 0.001 फ्लॉप हो चुकी है, रजनी की बारात इज़ ऑन 0.10 ये भी फ्लॉप हो चुकी है। वैसे कुछ फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है 12 जून को, यानी कि दो दिन बाद मैं वापस आऊँगा। दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म है ये, काफ़ी चर्चे में एक्चुअली, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शुड गो एंड वॉच द फिल्म। उसके बाद कॉकटेल 2 वो भी रिलीज़ हो रही है 19 जून को, जिसका गाना एक है तुझको मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, एंड ऑफकोर्स हमारे जो टॉप हिट ऑफ द आर है उसमें भी आप सुनते ही हैं वेलकम टू द जंगल, वो 26 जून को रिलीज़ हो रही होनी है। और अल्फा जिसमें आलिया भट्ट काम कर रही है, आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ नहीं आलिया भट्ट नहीं एक्चुअली इसमें हाँ सॉरी आलिया भट्ट एंड शर्वरी वो भी है यस, और स्पाई से रिलेटेड है कुछ ये फिल्म, नॉट एग्जैक्टली श्योर बट ऐसा कुछ मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ये भी 19th को रिलीज़ होने वाली है, तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड, सॉरी 3rd जुलाई को रिलीज होने वाले, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज फिल्म। आप मुझे बताइए कौन से फिल्म के लिए यू आर एक्चुअली वेटिंग अलॉट टू गो एंड वॉच इन द थिएटर।

वेलकम बैक। वेल यस, अभी इस हार में मैं सवाल पूछने वाला हूँ आप सभी से, और वो सवाल ये है दैट क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बेस्ट फ्रेंडशिप डे था, यानी कि एक होती है फ्रेंडशिप और एक होती है बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बेस्ट फ्रेंड उसे कहते हैं जो सबकी अलग डेफिनेशन होती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है दैट बेस्ट फ्रेंड इज दैट पर्सन हु इज काइंड ऑफ अ फैमिली मेम्बर बट हु स्टैंडिंग ऑलवेज विथ यू, नॉट जस्ट वेन यू आर हैप्पी बट ऑल्सो ड्यूरिंग द सैड टाइम एज वेल, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब भी, एंड ऑफ कोर्स विदाउट यू टेलिंग दैट पर्सन ऑटोमेटिकली विल गेट इट। तो यस, ये तो मैंने छोटी सी बात बताई है, बट यस आप मुझे बताइए कुछ ऐसे मैसेज, ऐसा मैसेज मुझे 5599 में भेजिए जो आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं, जो शायद आप कभी फेस टू फेस नहीं कह पाए, या आप मुझे कह सकते हैं 5599 पे यहाँ पे, और लेट्स सेलिब्रेट द बीलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टुडे।

0: वेलकम बैक, किरण नमस्ते, आपका स्वागत फिर से करता हूँ आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है, आप सुन रहे हैं मुझे स्ट्रेट फ्रॉम हम 104.2 एफएम, जहाँ पे हम चलाते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट। वैसे यस, थैंक यू सो मच अगर आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से तो उसके लिए, और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वेल यस, इस आर में हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि कुछ पॉडकास्ट के अपडेट देने हैं, साथ में एक इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशन कप भी होने जा रहा है उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा, इंडियन इंक थिएटर उसके बारे में भी बात करूंगा, और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कुछ चटपटी खबरें लेके आऊंगा। बट स्टार्ट करते हैं ठहर जा अमान अरमान मलिक की आवाज में एंड अंडे का फंडा बाय प्रतीक जोशेफ।
1: बचाओ क्या,

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: लेके आ चुका हूँ लेटेस्ट खबर अभी की न्यूजीलैंड के तोरंगा से। एक आज बड़ी ड्रग बस्ट की खबर सामने आई है। कस्टम्स ऑफिसर ने पोर्ट ऑफ तोरंगा में एक कंटेनर से 100 किलोग्राम कोकेन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 35 मिलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर है, यानी करीब बहुत ही बड़ा अमाउंट। बाप रे कितने जीरो आएंगे वही नहीं पता मेरे को तो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोकेन के 100 ब्रिक्स पर लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा का नाम लिखा है। ये ड्रग्स एक रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में छुप कर आया था, जिसमें दूसरा लीगल कार्गो भी मौजूद था। वैसे कस्टम ऑफिशियल्स को एक्स रे स्कैन के दौरान कुछ शक हुआ, जिसके बाद कंटेनर की तलाश ली गई और ये बड़ी खेप पकड़ी गई। वैसे इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि कंटेनर चिली से चला था और पेरू से होते हुए कोलंबिया और पनामा के रास्ते न्यूजीलैंड पहुंचा था। अथॉरिटीज का कहना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो एजेंसी कितनी ज़्यादा एक्टिव है। वैसे यस अभी भी चल रही है वैसे इन्वेस्टिगेशन, और जैसे कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: ड्राइविंग यू होम,
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहां पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
8: Showerdome.co.nz.
9: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 0275146477.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Well, एक स्पोर्ट्स से खबर लेके आया हूँ. आईसीसी ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पिच को ऑफिशियली अनसेटिस्फैक्ट्री यानी बहुत ही निराशाजनक करार दिया गया है. वैसे इस फैसले के बाद लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. डीमेरिट पॉइंट्स बोले तो ऑफकोर्स यू ऑल नो इफ यू होल्डिंग द लाइसेंस और एनीथिंग अगर ज़्यादा मिलते हैं क्रॉस कर देते हैं तो मे बी लॉर्ड्स मे नॉट बी एबल टू प्ले फॉर सर्टेन टाइम. जी हाँ, अगर वो फेल होता है तो. वैसे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के मुताबिक पिच में बहुत ज़्यादा सी मोमेंट था. बॉल कई बार बहुत नीचे रह गई थी और बाउंस भी लगातार बदलता रहा. वैसे इसी वजह से मैच के पहले दो दिनों में ही 33 विकेट्स गिर गए थे जिससे बैटिंग करना बेहद मुश्किल हो गया था. वैसे ये टेस्ट मैच बारिश से भी काफी इफेक्ट हुआ था. सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गया. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त तो ले ली बट पिच की क्वालिटी को लेकर इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने भी नाराजगी जताई है. वैसे आईसीसी की नियमों के मुताबिक अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग पर वेन्यू को एक डीमेरिट पॉइंट मिलता है जो 5 साल तक रिकॉर्ड में रहता है. वाओ, तो बेसिकली उसको रिफ्रेश करना 5 साल के बाद ही पॉसिबल होगा. यानी कि अगर ये कंटिन्यू रहा लॉर्ड्स में इन 5 सालों के अंदर अंदर तो चांसेस मे दैट लॉर्ड्स माइट गोना लूज टू प्ले फॉर इंटरनेशनल फॉर सर्टेन टाइम. जी हाँ.
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

स्वागत करते हैं आपके आज इस लंच बॉक्स शो में। जी हाँ, वैसे यस, हम बात कर रहे हैं उस मैसेज की जो आपने मुझे भेजे हैं। मैंने एक सवाल किया था आपसे पहले कि व्हाट वन थिंग यू वांट टू टेल टू योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स विच यू नेवर कुड टेल। जी हाँ, या फिर शेयर। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा एंड डेफिनेटली काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी फील करवाएगा। रवि कहते हैं, आई नेवर गॉट चांस टू टेल यू हाउ मच योर फ्रेंडशिप हेल्प मी थ्रू सम रियली टफ टाइम। बैक देन आई थॉट यू वुड जस्ट नो। दैट इज सो कूल रवि भाई। वैसे यस, होपफुली आपके दोस्त भी सुन रहे होंगे मुझे और आपके इस मैसेज को। प्रिया कहती हैं, आई विश आई हैड टोल्ड यू दैट इवन आफ्टर वी स्टॉप टॉकिंग आई always hoped life was treating you well. Some friendships never really leave you. That is so cool, yaar. Dev bhai kehte hain, I should have apologized for that silly argument that ended our friendship. Looking back, it was never worth losing a good friend over. That's really emotional message, bro. But hope aap apne dost se jaldi mile. Anjali from Henderson, I never told you how proud I was for everything you achieve after school. We just drifted apart before I got the chance. Karan kehte hain, I wish I had stayed in touch. We always thought we would have more time. Neha kehti hain, Magre se, you were like family to me growing up. And I don't think I ever said that you for that. Aakhri message padhte hain, I should have told you that our friendship meant more than just a normal thing to me than fighting in with other people. Vikram bhai ka message hai. वैसे yes, ये सारी बातें तो हुई, but मेरा भी एक दोस्त था, अभी भी है, but the only thing is that we are not in touch, and I honestly, he was more than just a friend, he was more like a mentor to me. और उसने मेरी तब help करी when I was actually struggling with so many things in academic way. और वो class का topper था, and then of course आज भी 1% no doubt वो busy हो गया अपनी life में, उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब हो गए, busy हो गए, but I still feel like, you know, जब भी मौका मिले I definitely want to meet him, और उसे thank you कहना चाहूँगा मैं। जी हाँ, वैसे yes, आप मुझे text भेज सकते हैं अगर if you want to say thank you to anyone over here. But thank you to all. Yes, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए एक बहुत ही प्यारा नसीब से पायल देव और विशाल मिश्रा की आवाज़ में।

0: चलिए बात करते हैं अनफिल्टर्ड की बातें, यानी कि पॉडकास्ट। सैनी एंड्रूज़ ने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू किया था WWE सुपरस्टार शैंकी सिंह, जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। इतने बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग इनसाइट्स ऑफ WWE, यानी कि जॉन सिना के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनका अंडरटेकर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे नामी जो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है WWE के, उनसे उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। The Great Khali के बारे में भी उन्होंने बताया कि उनका रिलेशन कैसा रहा है उनके साथ, और साथ में ऑफ कोर्स whether it is actually a real fight happening over there or not, ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। साथ में उन्होंने बॉलीवुड में भी कुछ मूवीज की है, यशराज फिल्म में भी वो गए हैं, यशराज फिल्म स्टूडियोज में, वहाँ पे भी उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, ये सारी बातें बताई हैं। इनफैक्ट अभी एक रील डाली है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, सलमान खान के साथ उनका एक्सपीरियंस भी ऑन अनदर लेवल, ये आप ज़रूर देखें। एक ब्रीफ के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, हम के चैनल पर भी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर सैंडी एंड रुज़्बे के भी चैनल पर, या फिर अनफिल्टर्ड ड्राइव के भी चैनल पे आप जा सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगी वो। साथ में आप ऑफकोर्स बहुत सारी और भी पॉडकास्ट कैच कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन ये लिंक पहुंच जाए, सो दैट यू कैन लिसन टू इट वेदर यू आर ड्राइविंग और वेदर यू आर वर्किंग एंड कैन लिसन टू इट वेरी वेल। मुझे लगता है कि आपको ये पॉडकास्ट मिस नहीं करना चाहिए। साथ में ऑफकोर्स ये जो वीडियो एडिट किया है मैंने पॉडकास्ट का, वो मैंने किया है, तो इफ़ यू हैव एनी थिंग रिलेटेड टू वीडियो मेकिंग, वीडियो क्रिएटिंग और एडिटिंग, डू लेट मी नो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज भेज देना, या फिर आप मेरी कंपनी इंस्पायर मीडिया वर्क्स उसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। पर ये साथ में आप हमें BF लिख के 5599 पे भी भेज दीजिए, ताकि आप कुछ बिट्स एंड कन्वर्सेशन सुन सके विजय एंड पूजा के द ब्रेकफास्ट शो के लिए। उसके साथ ही एक थिएटर भी होने जा रहा है, होने जा नहीं रहा एक्चुअली, हो रहा है, जो 3 तारीख से शुरू हो गया था, एंड इट इज गोइंग ऑल वेरी वेल अंटिल 20th of June होने वाला है ये। iticket.co.nz पे जाके इस शो के टिकट्स ले लीजिए, जिसका नाम है बलून डॉग। इंडियन इंक थिएटर कंपनी आप सभी के लिए लेके आई है बलून डॉग। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय जेकब राजन MNZM रिटर्न जो आ रहे हैं, एक वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग, और काफ़ी इंस्पायर्ड है बाय रविंद्रनाथ टैगोर के बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला। वैसे इसे आप देख सकते हैं 21st सेंचुरी ऑकलैंड कैसेट के हिसाब से। देर इज अ 5-year-old गर्ल एंड लोनली माइग्रेंट वर्कर, उनसे उनके बीच में कैसे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप होती है, एंड देन आगे जाके अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी सामने आता है दुनिया के। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डायरेक्ट भी किया, तो यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस इट आउट। आप अभी आज ही टिकट ले लीजिए, और क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में अभी हो रहा है अंटिल 20, तो आप जाके टिकट लेके वहाँ पर शो देखने जा सकते हैं। iticket.co.nz जी हाँ, क्यू थिएटर इन ऑकलैंड। साथ में और भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि द FIH हॉकी वुमेन्स नेशनल कप होने जा रहा है नॉर्थ हार्बर में 15 से लेकर 21 जून के बीच, और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा चांस है जहाँ पे एक विंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन डिफेंड करेगी अपने टाइटल को अपने घर की सॉइल पे, जी हाँ होम सॉइल पे, और रिक्वेस्ट करिए सारे दर्शकों को आने का, और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में जा सकते हैं वहाँ जाइए और सपोर्ट करिए अपनी होम टीम को। जी हाँ, वैसे यस, काफ़ी टाइम बाद ये न्यूजीलैंड में हो रहा है। एट कंट्रीज़ इस पर हिस्सा ले रही है, वर्ल्ड क्लास हॉकी होने जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट जो कि बहुत सालों बाद हो रहा है न्यूजीलैंड में। वेल यस, आप हमें हॉकी लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं, ताकि आप जीत सके डबल पास। जल्दी से फोन उठाइए, हॉकी लिखिए, अपना नाम लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए। बट यस, टू ग्रैब अ टिकट आप hockeynz.flickit.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए। वैसे यस, स्टिक विद हम टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट एक्शन।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

की वैल्यूएशन लगभग 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है। स्पेसएक्स की सफलता के पीछे उसका रॉकेट लॉन्च बिजनेस, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस और फ्यूचर एआई प्रोजेक्ट्स को बड़ा करना माना जा रहा है। वैसे कंपनी इन्वेस्टर्स को स्पेस बेस्ड एआई कंप्यूटिंग और ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स जैसे एम्बिशियस प्लान्स भी दिखा रही है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी मजबूत डिमांड दिखाती है कि इन्वेस्टर्स अब भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज पर भरोसा जता रहे हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी ही क्यों ना हो। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या आता है आगे इस बारे में खबर। बढ़िया, इलॉन मस्क तो यार अलग ही दुनिया में छा रहा है यार। आई मीन लुक एट द नंबर्स ऑफ हिज कंपनी स्पेसएक्स, 75 बिलियन और 1.75 तक पहुंच सकती है, 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है अगर ये अप्रूव होता है तो। दिल से

वेल थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत ही बढ़िया रहा दिन और आपकी बातें और आपके मैसेजेस, थैंक यू सो मच। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि आप अपने आप को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए टूवर्ड्स द AI फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, हर चीज़ बहुत ही इतनी तेज़ी से जा रही है, सो इफ़ यू डोंट गो अलॉन्ग विद दैट यू माइट बी लेफ्ट बिहाइंड। और साथ में आप रोवाइप भी डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज उसके थ्रू भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को और एंटरटेनमेंट के लिए मिल सकता है। सो यस, मेक श्योर आप डाउनलोड करिए, आज ही कम्प्लीटली फ्री है, और इन्जॉय करिए हमें, लिसन टू अस ऑल थ्रू रोवा ऐप भी, जी हाँ, एंड काफ़ी प्लेलिस्ट है, काफ़ी पॉडकास्ट भी हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। बट यस, आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: 3:05 यू आर लिसनिंग टू कॉफी ब्रेक ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आज सैंडी इज अवे बट वी हैव केतन इन द स्टूडियो स्टिल. हाय केतन, गुड आफ्टरनून.
1: उनको पता है लिसनर को, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही बोला.
0: हाँ वही, इसलिए मैं देखो इसलिए बोला थैंक्स यार केतन.
1: नहीं ऑल गुड यार, होता है
0: कवरिंग अप.
1: मुझे भी तो आज कवर किया गया था.
0: अच्छा
1: आज फर्स्ट स्टार में.
0: अच्छा ऐसा हुआ,
1: थोड़ा लेट हो गया था. यहाँ पे मेडिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है यार. I don't know if I'm allowed to talk like that over here or not. But एक मिनट के पीछे like literally उन्होंने पूरा क्यू जो है मेरा चेंज कर दिया. And because of that मैं लेट हो गया.
0: या मेरे को पता है वो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि अगर हम टाइम पे आते हैं डॉक्टर लेट होता है वो चलता है. लेकिन
1: हम लेट नहीं होने चाहिए.
0: या इट्स अ बिट टफ ओवर हियर थोड़ा बहुत. तू कर सकता है रेंट यार बिंदास, कोई ऐसा प्रॉब्लम
1: मैंने किया अपना और लिसनर ने भी काफी रेंट लाइन
0: किया
1: था
0: ना. ये एक कॉमन इशू है जो हर किसी को बहुत जोड़े रखता है.
1: और ये सिर्फ एक चीज में नहीं, काफी दूसरी चीजों में. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि उसको 2 बार टिकट मिली है वाइल्ड ड्राइविंग. बट उसमें पता नहीं कहाँ से हिम्मत है, उसने पुलिस को बोल दिया है योर इंडिकेटर इज नॉट ऑन.
0: अच्छा
1: पुलिस को बोल दिया
0: ऐसा.
1: तो बोले ओ या थैंक यू बस.
0: बस ऐसे
1: हाँ, हमको भी चाहिए ना वो पावर टिकट देने की.
0: बट अभी तू ये सोचना, अगर यही तू इंडिया में अगर पुलिस वाले को बोलता तो क्या होता?
1: मेरा आखिरी शब्द खत्म होते होते मैं लॉकअप में होता.
0: यार एक फटका वटका तो पड़ ही जाता
1: आराम से.
0: आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे हैं ना अभी, कॉप्स को शूट कर रहे, दे आर यू नो
1: फिल्मिंग, यू मीन
0: हाँ मतलब कॉप्स को फिल्म कर रहे व्हाइल दे आर अब्यूजिंग एंड हिटिंग.
1: एक्चुअली ये तो अच्छी बात होगी ना, लाइक यू नो कि फाइनली, क्योंकि उससे पहले अपन ने सुना ही है दैट ऑब्वियसली पुलिस के पास पावर होती है और वो उसका कभी कभी मिसयूज भी करते हैं. बट अभी एटलीस्ट कैमराज है हर एक के पास, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. और मेरे को लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है ना वो अवेयर भी है और वो चाहती है अवेयर होना कि अगर ऐसे सिचुएशन हो तो कैसे क्या करेंगे. वैसे यहाँ का भी एक पेज है, अगर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं. सडनली मेरे एल्गोरिदम में आया और वो बंदा क्लेरिफाई कर रहा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है.
0: कैसे सिचुएशन में, जहाँ पे
1: फॉर एग्जांपल ये पुलिस का जो तूने बताया. हाँ. यहाँ पे जैसे एक केस था जहाँ पे एक बंदे ने ग्रीन जो घर के बाहर जो ग्रास होती है. हाँ. वहां पार्क किया होता है.
0: हाँ, हाँ, ग्रास
1: तो शायद उसने ब्लॉक किसी ने, तो उसने पुलिस आई थी और पुलिस ने बोला कि यू आर ब्लॉकिंग द वे सो देयर इज अ फाइन फॉर यू. तो उसने बोला किधर ब्लॉक कर रहा हूँ मैं ना रोड पे हूँ ना फुटपाथ, मतलब जो वॉकिंग वाला होता है ना, वहाँ पे हूँ मैं, बीच में ग्रास पे हूँ. और कहाँ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ अलाउड नहीं हूँ पार्क करना. तो उस केस में वो बता रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आपको क्या करना चाहिए.
0: लेकिन एक्चुअली मैं लाइक यू नॉट अलाउड टू पार्क ऑन दैट ग्रास वाला पैच. ऐसे बोलते हैं कि अलाउड नहीं है वहाँ पे, आपको फाइन लग सकता है. काफ़ी बार तो अगर आप अपने खुद के घर के ड्राइववे में भी अगर आपने गाड़ी लगाई है जो लाइक यू नो वो पेडेस्ट्रियन वॉकिंग पाथ के बीच आती है,
1: हाँ.
0: आधा वहाँ पे भी आपको
1: फाइन लग सकता है. वहाँ तो डेफिनेटली है, बट यहाँ मेरे को लगता है लोगों को अवेयरनेस उतनी नहीं है.
0: या वेल एनीवे हम धाराएं की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा इशू इंडिया में हो गया है जहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमिक के शो में एक व्यूअर को ये बार पिनलाइज किया गया है. सो एक स्टैंड अप कॉमेडी में जैसे वो होता है ना क्राउड वर्क होता है. तो क्राउड वर्क के साथ थोड़ी मस्ती चल रही थी,
1: रोस्टिंग बेसिकली.
0: हाँ मतलब ऐसे रोस्टिंग या मतलब बातें हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रहा था. और उसमें जो बंदा है क्राउड वाला बंदा
1: व्यूअर
0: उसने कुछ गलत कमेंट मार लिया और वो वीडियो वायरल हो गया एंड उसको उसके जॉब से हाथ धोना पड़ा.
1: क्या बात कर रहा है
0: यार, 22 ईयर ओल्ड. इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug-driving.
6: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
7: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
8: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
7: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalvari Wagh and Vedang Raina.
8: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
7: मैं वापस आऊंगा, releasing in cinemas on 12th June. Distribution partner for film. Rating TBC.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Coffee break jari hai aapke liye. Sandy away hai because she's not well and much needed usko ek break ki zarurat bhi thi kyunki yahan pe mujhe lag raha hai kafi hamare listeners ko usko sunke bhi khansi shuru ho gayi thi itna wo khans rahi thi studio mein. But anyway, aaj aapke sath yahan pe baatein main karunga aur aapka saath mujhe yahan pe lagega and get the phone lines on as well. 0800-004-866 number hai. Aap yahan pe call karke share kar sakte ho ki aapka thought take kya hai cheezon ke upar. Ek topic ke bare mein maine touch kiya tha bas kuch messages ke pehle and that was around this stand up comic jinko aapne Big Boss mein bhi actually bahut pasand kiya, Praneeth More ka ek stand up, matlab ek stand up unka ek show hota hai जहाँ पे वो काफ़ी क्राउड वर्क करते हैं लोगों के साथ और एक ऐसे शो में उन्होंने क्राउड वर्क किया और एक पुरुष 22 इयर्स ओल्ड काफ़ी यंग उन्होंने वो माहौल में मजाक में एक कुछ कमेंट पास किया जो काफ़ी ऑफेंसिव कमेंट था टूवर्ड्स फीमेल्स और इसका बहुत बड़ा बैकलैश हुआ और इस बैकलैश को लेकर अब उस 22 ईयर नौजवान ने अपनी जॉब को भी खोया है, अपनी इज्जत भी खोई है और सब कुछ खोया है. इट्स रियली सैड. या द कमेंट वाज नॉट गुड, इट वाज रियली बैड. बट एक स्टैंड अप कॉमिक शो है, स्टैंड अप कॉमेडी शो है जहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी बार लोग थोड़ी अपनी बाउंड्रीज को पार कर देते हैं और जो एक थिन लाइन होती है ऑफ बीइंग you know being thoda out of the box and like being edgy and being a bit considerate, wo jo thin line hai wo line thodi unse overstep ho gayi aur wo thode inconsiderate sound kiye wahan pe, aisa cheap comment ho gaya unse. Iske upar kafi backlash hua aur kafi logo ne Praneeth More पे भी लैश आउट किया कि उन्होंने इनक्रेज क्यों की ये बात और उन्होंने एक्चुअली में उसके ऊपर पाबंदी कर देनी चाहिए थी और इनक्रेज नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बातें. और अगर वो सब हो भी गई बातें फिर उसको काट के रील बना के आप उसको पोस्ट कर रहे हो तो ये भी तो गलत है ना. वेल अभी ये अगर आपको पता है ये किस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर कॉल करके आपकी व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो. बट आपको क्या लगता है ये स्टैंड अप कॉमेडी जो शोज़ होते हैं इसमें क्या आपको लगता है कि एक दायरा आना चाहिए, मतलब इसमें एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जहाँ पे देर हैज़ टू बी सम गाइडलाइंस अराउंड टू डूज़ एंड नॉट टू डूज़, लाइक किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए किस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए. डू यू थिंक इट नीड्स टू बी अ बिट मोर कंट्रोल्ड स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट्स? क्या लगता है आपको इसके ऊपर, आपका क्या टेक है? 0800-004-866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस मी अ कॉल ओवर हियर और आप यहाँ पे आपके व्यूज भी शेयर कर सकते हो. हाय,
1: हेलो जी, कैसे हो? उसमें गोविंद शेफ बात कर रहा
0: हूं. गोविंद शेफ, बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. आप बताओ, घर परिवार सब बढ़िया?
0: सभी बढ़िया है, सभी बढ़िया है. बताइए क्या है, आपको पता है इस न्यूज के बारे में?
1: मैं अभी हम काम पे थे और मैं आपकी ये बातें सुन रहा था. उससे पहले दो मिनट पहले मैं यही बात कर रहा था जब आपने इस गाने से पहले ये बात बताई थी ना, स्टैंड अप कॉमेडी वाली जो लड़के के साथ हुआ. तो हम अभी ये बात कर रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है इनका ना. वैसे भी मैंने देखा है कि स्टैंड अप कॉमेडी तो चलो है ही है, उसमें कॉमेडी जो है, बट वो कुछ ज्यादा, मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं उसको ये समझ लूँ कि मैं वर्गल, क्या बोलते हैं उसको, और न्यूड सब कुछ, मतलब
0: ऐसा वल्गर लग रहा है आपको?
1: बहुत ज्यादा
0: वल्गर लग रहा है आपको? क्या वल्गर लग रहा है, मतलब जो गालियां होती है शायद वो वल्गर लग रही है या बातें जो होती है?
1: गालियां भी है और कई, मैंने एक लड़की देखी है जो स्टैंड अप कॉमेडी की है, वो भी मेरे ख्याल वो आने वाली भी है यहाँ पे मुझे लगता है. एक दिन मैं उसकी एड देख रहा था तो वो एकदम, एक दिन तो अपनी माँ के बारे में ही बात कर रही थी वो ऐसे. तो मुझे लगा यार ये किस तरह की, ये मेरा सोच, मेरी सोच है, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे नहीं पता उसके बारे में, पर ये मेरी सोच है कि कोई कॉमेडियन है, कोई अपने ही माँ के बारे में भी, और वो स्पेशली एक लड़की होगी भी, वो ऐसे बात कर सकती है. बट पता नहीं मेरी सोच क्या है, पर मुझे लगा बहुत ज्यादा.
0: नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच गोविंद भाई यहाँ पे शेयर करने के लिए.
1: थैंक यू जी, थैंक यू
0: थैंक यू थैंक यू. हाय, आपका भी स्वागत है।
2: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हैं?
2: जी बिल्कुल ठीक है,
0: बताइए।
2: भाई साहब, मैंने ये क्लिप देखी, ऑब्वियसली
0: आपने देखी है क्लिप?
2: हाँ जी देखी।
0: अच्छा,
2: और दो तीन बातें हैं। देखिए, आप यहाँ पर जब बात करते हैं कॉमेडी शो की या स्टैंड अप कॉमिक की, तो यू इमेजिन ए थिएटर जहाँ 700-800 लोग बैठे हैं और वो बोल रहा है। ये इंडिया में जो छोटे टाइप के कॉमेडियंस हैं, जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमिक कहते हैं, उनके पास ऑडियंस होता है 100 लोगों का, वो 150, उसमें भी वो माइक घुमाते हैं लोगों के पास। जो लड़का बोल रहा है उसके हाथ में माइक्रोफोन है
0: जी,
2: जिसका कंट्रोल आपके पास है एज ए कॉमेडियन और वॉट एवर यू आर। आपने काटा क्यों नहीं व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग नॉनसेंस, एंड यू कैन सी दैट द कॉमेडियन इज स्माइलिंग लाफिंग। व्हाट नॉनसेंस इज दैट सर? सर ये शर्मनाक है। दैट आई डोंट नो वेदर हिज नेम इज मोरे और नॉट, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये क्लिप देखी, और निहायत ही घटिया थी। वो लड़के को तो जो भी हुआ सो ठीक ही हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग कितनी घटिया रही होगी या खुद सच सकते। और कोई लाइन नहीं क्रॉस करता है। आप जो बोल रहे थे ना कि थिन लाइन होती है, लोग क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पर भी आपने तमाम कॉमेडी शोज देखे होंगे, आपने किसको बदतमीजी करते हुए देखा? मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने बहुत सैकड़ों कॉमेडी शो
0: सर देखे। मैं यहाँ पे एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। यहाँ पे बदतमीजी डिपेंड करता है कि कौन इसको किस वे में ले रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ये भी जानता हूँ कि जो पहले के स्टैंड अप कॉमिक्स होते थे, पहले के जो जोक्स होते थे, काफ़ी सीनियर जो स्टैंड अप कॉमिक्स होते थे, उनके जोक्स होते थे टिपिकल वाइफ बैशिंग जोक्स। क्या आप अग्री करते हो? आपने सुने ऐसे जोक्स?
2: मैंने बहुत सुने हैं सर। वाइफ बैशिंग अकेले नहीं होते थे, वो सोशल सेटायर होता था मोस्टली,
0: बट मोस्टली उसमें विलन वाइफ होती थी या वाइफ के अराउंड काफी बैशिंग होते थे, जोक्स होते थे, जो मुझे लगता है हम हर कोई उसके ऊपर हंसे भी है। हम काफी लोगों ने पब्लिक सेटिंग में वो जोक्स परफॉर्म भी किए, दोस्तों में थोड़ा यू नो टांग खींचाई के लिए ऐसे किए भी है। नाउ आज के दिन में वो भी इनअप्रोप्रिएट हो गए हैं। मैं आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम भी लर्न कर रहे हैं ना ये चीज़ कि भाई कुछ चीजें जो
2: बिल्कुल लर्न कर रहे हैं। लेकिन जब एक कॉमेडियन अपने माता पिता के साथ संबंध की बात करता है,
0: नहीं ये तो वो नहीं चल रहा है, ये तो वो नहीं चल रहा है, ये तो वो हो गया, वो तो पुराना हो गया।
2: हाँ अभी जो हुआ है
0: ये तो अलग केस है।
2: इस आदमी ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया कि फर्स्ट डेट पर उसने उस लड़की के साथ क्या किया,
0: नहीं नहीं उसने बस बिरयानी खाई, उसने वो बोला कि 370 की बिरयानी उसने कुछ खाई है और वो अभी बिरयानी को वसूल कर गया, समथिंग ऐसा ऑन दोज लाइंस ऐसा कुछ तो भी था।
2: नहीं सर और भी था।
0: अच्छा
2: आप पूरी क्लिप देखिए।
0: मुझे मैं नहीं, वो डिलीट हो गई ना क्लिप अभी।
2: अच्छा बहुत ही घृणित क्लिप थी।
0: अच्छा
2: बिल्कुल घिनौनी। उस आदमी को जो भी सजा दी जाए वो कम है। मेरा कहना यह है कि उसके पेरेंट्स को भी सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा लड़का पाला कैसे।
0: अरे बाप रे,
2: क्या उसको अपनी एक दी।
0: अच्छा
2: और जो कॉमेडियन है ही ऑफ कोर्स बी बैंड, ही हैज नो बिजनेस पासिंग आउट माइक्रोफोन टू पीपल एंड नॉट कटिंग इट ऑफ इफ दे आर एक्सीडिंग द लिमिट, जब वो लाइन पार कर रहे हैं।
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयर करने के लिए आपके थॉट्स, थैंक यू। अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आए हैं, कोई भी एक मुझे दूसरे साइड से नहीं आया है कोई थॉट कोई ओपिनियन। अगर आप शेयर करना चाहो, हमारे साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने ज्वाइन किया अभी। हाय
3: हाय,
0: आप आपका नाम कहना Hi. चाहोगे यहाँ पे?
3: श्योर, मैं अभय। आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, अभी जो क्लिप डिलीट हुई है वो मैंने नहीं देखी है, बट बिकॉज इट इज स्टैंड अप कॉमेडियन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ इट। मैं सिर्फ ये and there is no for or against kind of a thing, it's like again my opinion ki like art form hota hai na, jo it is a subjective medium, people can choose to curse not to curse, the idea is to make people laugh, and also any art form is a reflection of the society that we are living in. Very very recent example like violence and stuff, pehle film mein nahi hota tha itna violence, right, jo abhi web series mein aur movies mein dikhaya ja raha hai, and the extent of violence has increased manifold because of OTT ki bhi audience is like 18 plus bolke ya 16 plus bolke dikha rahe hai wo cheez, but still people have seen movies like Dhurandhar plus like 2 jo revenge, and they have like enjoyed. I've seen elderly people who actually despise violence, and then they've seen it because there is a certain angle to it. So मुझे लगता है कि over a period of time people have understood कि भाई it is entertainment. You look at from the lens of either entertainment or it's a reflection of the society, whichever it is. तो मतलब उस perspective से मैं देखता हूँ उसको कि उसको इतना personally हम लोग सब चीजें ले लेते हैं. That's the only thing I would say. I don't know सही गलत तो obviously individual पे होता है.
0: और देखो अवे आप अगर स्टैंड अप कॉमिक हो और स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो तो आप तो ओपिनियन मत ही रखो क्योंकि ओपिनियन रखने में ही तो प्रॉब्लम है ना. ओपिनियन रखते हैं तो तब जाके हमारे ऊपर मतलब यहाँ पे तो फिर भी ठीक है लेकिन कैंसल कल्चर इज बिकॉज ऑफ ओपिनियंस बिकॉज यू हैव ओपिनियंस दैट्स व्हाई यू गेट कैंसल्ड. बट या इट्स द आयरनी बिकॉज स्टैंड अप कॉमिक्स नीड टू हैव ओपिनियंस सो या दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ.
3: और दूसरा ये भी है मैं थोड़ा मतलब एज अ कॉमिक व्हाट आई हैव डन माय सेल्फ इज दैट आई हैव क्यूरेटेड बेस्ड ऑन द ऑडियंस दैट आई एम परफॉर्मिंग फॉर. सो वो चीज डेफिनेटली मैं करता हूँ थोड़ा कि आई नो आई एम इन द रूम आई एम एंटरिंग इन द काइंड ऑफ प्लेस दैट आई एम इन एंड आई एम स्लाइटली कॉन्शियस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई प्रेजेंट दैट्स द ओनली बिट आई कैन थिंक ऑफ कि जो थोड़ा बैलेंस करता है.
0: एंड वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे. Wouldn't you agree?
3: Yes.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Okay. Perfect, Arabai. Thanks so much for sharing, man. Thank you. Well, आपके भी अगर कोई thoughts हैं, आप 5599 पे यहाँ पे message करके share कर सकते हो. मेरे को लगता है best है ना art form में singing best है, जो हमारे केतन भाई करते हैं. हाँ केतन. Singing में मेरे को नहीं लगता किसी कोई offend होता रहेगा. कोई offend होता है क्या singing करने में?
4: यार अभी तक तो हुआ नहीं लेकिन ऑब्वियसली ऑफेंड उसमें भी होता है अगर आप गलत तरीके से गा रहे हो या फिर क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं किसी को अगर पुराने गाने पसंद है या फिर किसी को नए गाने पसंद है और उनको उस तरीके से नहीं गा के कुछ अपना ही क्रिएट किया तो वहाँ पे हमें भी बैकलैश सुनने को मिलता है. ना यार मज़ा नहीं आया यार तूने पूरे गाने की बात क्योंकि आजकल देखो ना वो रिमेक्स आ रहे हैं गानों में उसमें भी अलग ओपिनियन है.
0: उसमें बैन तो नहीं होंगे ना तुम ज्यादा से ज्यादा तुमको बोलेंगे कि यार क्या गा रहे हो यार.
4: हाँ मतलब ये कि हाँ ऑप्शन तो है हाँ इतना लेकिन वहां पे तब होगा जब हम गाने को पूरा ही
0: पैरोडी बना के
4: यो टाइप कर रहे हैं.
0: That's right.
4: तब हो सकता है
0: जी. तो चलो और भी बातें करेंगे आपके साथ. थैंक्स केतन फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन. हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन

You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Throwback की बारी आ गई है यहाँ पे और आपके साथ और भी बातें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ मैं और ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन थ्रोबैक के बाद आपको एक और गाना सुनाऊंगा और आज वो एक एल्बम का गाना रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कि कुछ प्ले के टिकट्स है, कुछ कॉन्सर्ट के टिकट्स है एंड यस हॉकी भी चल रहा है तो उसके भी टिकट्स जीतने का मौका आपको यहाँ पे मिल सकता है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है और पार्ट कैसे ले सकते हैं, आप नंबर सेव कर लीजिए 5599, ये हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म का नंबर है, इस पर आपको हम जब कहेंगे तब आपने मैसेज करना है एंड पार्टिसिपेट करना है। बट इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया को जाके आप फॉलो कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेज को हम 104.2 FM और इस पेज पे जाके भी आप जीत सकते हैं कुछ कंपटीशन के टिकट्स, कुछ टिकट्स आप जीत सकते हो कंपटीशन में पार्ट लेके। बट आपको बता दूं कि बलून डॉग एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन हो रहा है हमारी सुपर सिटी में, जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, ये इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of June और इसका डबल पास जीतने का मौका आपको मिल रहा है हमारे फेसबुक पेज पे। सेट इन 21st सेंचुरी ऑकलैंड, ये एक जो प्ले है ये इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला। सो रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला से ये इंस्पायर्ड है लेकिन सेट इन ऑकलैंड 21st सेंचुरी। इट्स अबाउट

You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Abhijit aur Shreya Ghoshal ki awaaz mein sun rahe the aap ye bahut hi pyara sa gana. Well, coming up next, ye jo gana hai, is gaane ko काफी लोगों ने बहुत पसंद किया है. अगर आप 90s में पले बड़े हो तो इस गाने के साथ आपकी एक अलग ही याद जुड़ी है. काफी समय बाद मैं सुन रहा हूँ इस गाने को खुद, एंड आई होप आपको भी मजा आ जाए ये गाना सुनकर. शान की आवाज में, उन्हीं की एल्बम का ये गाना. इस गाने ने शान को शान बनाया एक्चुअली.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Beautiful day in our super city today. Feels like 14 right now. Overnight temperature is going to be as low as 6 degrees. Aaj subah kuch kuch jagahon pe feels like 1 degree bhi tha. Yes, we are into winter. 5:12 pe aaj hoga sunset. Bright beautiful day aaj ka raha. Kal bhi aisa hi din rehne wala hai.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 4:02, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rusby. Sandy's away today, तो आज मैं ही रहूंगा आपके साथ यहाँ पे 7 बजे तक. और मेरे को आज ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए एक नया कुछ अलग सा थीम भी लेकर आना है. लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स यार, तो आपकी मदद की जरूरत है मुझे. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लेकर आऊंगा आपके लिए. यहाँ पे कॉल करना जरूर और पार्टिसिपेट करना. 0800 004866 इज द नंबर जहाँ पे आप कॉल करके आपकी बातें यहाँ पे शेयर कर सकते हो. और आज से एक नया सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए. एक नए एक्सपर्ट को हम लेकर आने वाले हैं हमारे शो में, जिनसे रूबरू आपसे बात भी कराएंगे, मतलब ऑन एयर थ्रू रेडियो आपसे बात कराएंगे और जानेंगे इनके बारे में. सब कुछ होगा आज, लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का भी मौका आपको मिलेगा. तो बस साथ देते रहिए, ध्यान देते रहिए, सुनते रहिए. हम ध्यान रास्ते पे दीजिए, मतलब गानों पे भी दीजिए, लेकिन रास्ते पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो, घर से अगर आप सुन रहे हो तो बस एंजॉय कीजिए. स्टार्टिंग ऑफ दिस आवर, इट्स दिलजीत दोसांझ विद हिज हिट सॉन्ग कुफर.

Da dum da dum da dum da.

अनुष्का सांघवी की आवाज और सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। इरफान खान की मूवी, बहुत ही लवली ये मूवी थी, हिंदी मीडियम 2017 की मूवी, उसका ये गाना आप सुन रहे थे। वेल, न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी कुछ अभी बाहर आया है। एक तो एक जगह, दोनों मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दो पीस ऑफ आर्टिकल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। एक है अराउंड लेबर का नया प्रपोजल, उन्होंने कहा है कि $20 अ वीक, बस इतना ही आपका खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन में, $20 का कैप लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी करंटली $50 का कैप है, शायद $50 के ऊपर अगर आपका मतलब $50 से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पर वीक। एंड अब लेबर ये कह रहे हैं कि ये 1 जुलाई 2027 से ऑकलैंड के लिए $20 कर देंगे इस कैप को। वेल, नेशनल के साइड से काफ़ी इसके अगेंस्ट विरोध भी आया है कि भाई ये तो इसका पैसा उसको दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। काफ़ी फैंसीफुल इज़ द वर्ड दैट नेशनल इज़ यूज्ड। लेबर का प्लान काफ़ी फैंसीफुल है और इसमें इसको सस्टेन करना शायद डिफ़िकल्ट हो। बट या इट साउंड्स वेरी कूल या फॉर कॉमन पीपल एटलीस्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज उनको लग रहा है कि यार काफ़ी महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड $20 का अगर कैप लग जाता है तो आई थिंक दिस वुड बी क्वाइट रीजनेबल फॉर अ लॉट ऑफ अस। बट हाउएवर, इसके जो इम्प्लीकेशन है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टैक्स मनी दैट्स गेटिंग यूटिलाइज समवेयर और द अदर, क्योंकि बसेस ऑपरेट करना सस्ता तो नहीं है, महंगा ही है। तो अगर यहाँ से नहीं तो वहाँ से पैसा निचोड़ तो लेंगे ही। बट टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कंजेशन, यस, कंजेशन का जो चार्ज है ये लगना शुरू हो सकता है, अभी नहीं, कुछ साल लगेंगे इसके लिए, बड़ा 2028 के बाद शायद ये कंजेशन चार्ज के ऊपर भी हम शायद कंजेशन चार्ज भी पे करना शुरू कर दें। कंजेशन चार्ज ये होता है जहाँ पे जो पीक टाइमिंग्स होते हैं वो पीक टाइमिंग्स पे अगर आप मोटरवे यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, टोल कह सकते हो आप उसे या कुछ भी कंजेशन चार्ज कह सकते हो। बट या दैट वुड बी चार्ज ड्यूरिंग पीक टाइम्स ऑन कार्स। बट वो कैसे होगा चार्ज, क्या होगा, इसके डिटेल्स आई थिंक आने वाले टाइम में और पता चलेंगे। बट या खर्चे ही बढ़ रहे हर जगह से, बट पता नहीं चल रहा है कि आमदनी कब बढ़ने वाली ये सब के अराउंड। बढ़िया, आमदनी और खर्चों की अगर बात करें और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, फाइनेंस की अगर बात करें, तो थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे साथ हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट यहाँ पे ज्वाइन इन करने वाले हैं, जिनसे हम थोड़ी और बातें करेंगे। बट अभी के लिए सुनते रहिए हम।

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Drive show जारी है आपके लिए और drive show में आज super से ऊपर में हमारे साथ हमारे expert हमें join in कर रहे हैं. We have Sunil Chandra from Squirrel. Hi Sunil, how are you doing?
1: नमस्कार रुस्बे, I'm fine और सभी listeners को भी मेरा नमस्कार.
0: क्या बात है. तो सुनील जी आप हमारे एक्सपर्ट हैं अभी, तो अभी हम आपके हवाले होने वाले हैं. आपको हम हर फोर्टनाइटली यहाँ पे पूछेंगे कुछ सवाल, मॉर्गेज रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, काफ़ी यू नो जार्गन्स यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो इन सारों को थोड़ी यू नो बस्ट करने के लिए और इन सारों पे क्लैरिटी लाने के लिए हम आपसे बातें करेंगे.
1: जी श्योर.
0: Thank you so much for you know joining us. So Sunil, आज you know I want to understand कि ये refixing और refinancing ये दोनों में फर्क क्या होता है?
1: देखिए जो ये refixing और refinance हैं, ये दोनों home loan management के important parts होते हैं, लेकिन दोनों का meaning different होता है. Refix का मतलब होता है कि जब आप fixed rate टर्म खत्म होती है बैंक के साथ, सेम बैंक के साथ, और आप उसी बैंक के साथ रिन्यू करते हैं एक नए इंटरेस्ट रेट पे और नए फिक्स टर्म पे. और अब रिफाइनेंस की तरफ आते हैं. रिफाइनेंस का मतलब होता है कि जब आप अपना होम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं. कस्टमर्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है या बेटर कैशबैक या बेटर होम लोन फीचर्स. नाउ आपने कैशबैक के बारे में भी पूछा है, तो अब बात करते हैं कि कैशबैक क्या है. देखिए कैशबैक दोनों इंस्टेंसेस में मिलता है, रिफिक्स और रिफाइनेंस में, राइट? इसलिए बोरोअर्स को ये समझना जरूरी है कि कैशबैक की अपॉर्चुनिटी दोनों सिचुएशंस में हो सकती है.
0: अच्छा, कैशबैक रिफिक्सिंग में भी हो सकता है और रिफाइनेंसिंग दोनों में कैशबैक मिल सकता है.
1: जी
0: ओके.
1: लेकिन रिफाइनेंसिंग में ये ज्यादा कॉमन है, पर रिफिक्सिंग में बैंक केस बाय केस कैशबैक देते हैं.
0: जी ठीक है.
1: और जो बेस्ट एडवाइस मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ ये है कि जब आपका लोन रिन्यूअल के करीब हो, अर्ली रिव्यू करें, दोनों ऑप्शंस को कंसिडर करें, और रीफिक्स भी और रीफाइनेंस भी ये आप अपने बैंक से पूछें कि रीफिक्स में आपको क्या कैशबैक देगा, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, और तब आपको बेस्ट ओवरऑल आउटकम मिलेगी.
0: राइट ओके. सो आप एडवाइस करते हो कि अगर कोई अभी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे अगर उनका अभी जो लोन है वो रीफिक्स की तरफ आ रहा है, मतलब उनका जो फिक्स पीरियड है वो अगर ख़त्म हो रहा है या अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मोस्टली बैंक्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है शायद, तो आप मंथ इन एडवांस मे बी और मंथ और कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस वो अगर आपको कॉन्टैक्ट कर ले तो शायद उनका उसमें फ़ायदा हो सकता है.
1: ज़रूर. और क्योंकि अर्ली ऑन टू इट तो आपको पता लगता है कि मार्केट में ऑप्शंस क्या हैं, फिर देन यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और लिसनर्स के लिए एक ये अपडेट है कि 30th जून तक मोस्ट ऑफ द बैंक 1% कैशबैक कर रहे हैं रीफाइनेंस पे. तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, हमें कॉल कीजिए और देखिए कि आप लोग क्वालिफाई करते हैं या नहीं.
0: That's awesome, Sunil. So, how do we get in touch with you? अगर किसी को आपको contact करना है, what is the easiest way to get in touch with you?
1: देखिए जो मेरा number है, mobile number, वो है 0275337745 और मेरा email है sunil@squirrel.co.nz. ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी website squirrel.co.nz पे भी जा सकते हैं.
0: That's awesome, Sunil. Thank you so much for joining us. आपसे हम in 2 weeks फिर से बात करेंगे और हमारे listeners को भी हम मौका देंगे, हम आपके लिए कोई सवाल अगर हो तो वो ज़रूर हम तक पहुँचाएंगे. And then we'll check that out with you next fortnight.
1: That's great. बहुत बहुत धन्यवाद रूस भाई, फिर मुलाकात होगी और नमस्कार सबको.
0: थैंक यू सुनील, थैंक यू. ये थे सुनील चंद्रा फ्रॉम स्क्विरल. अगर आपको भी कांटेक्ट करना है इन्हें और फ़ायदा उठाना है एंड गेट सम डील्स, तो गेट इन टच विद सुनील फ्रॉम स्क्विरल. आप इनको कॉल कर सकते हो सीधा डायरेक्टली ऑन 0275337745 या आप squirrel.co.nz ये वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स.
2: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Puri planning se aaye hain, 100% tumko subah yahan se le jayenge. रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैं
5: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
4: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए आप सुन रहे हैं हम अरिजीत सिंह अमायरा गिल की आवाज में आप सुन रहे थे बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये गाना। वैसे अगर रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि ट्रक की लाइट ऑन है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है फिर भी ट्रक की लाइट ऑन है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स है वो मौन कर रहे हैं फॉर जिमी। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दूसरे ट्रक के साथ और उसमें जो ड्राइवर थे ट्रक के उनका नाम जिमी, उनकी मौत हुई। और बहुत ही फन किस्म के इंसान थे ये, और इनकी याद में अब जो ट्रकिंग कम्युनिटी है वो सब एकजुट जुड़ी है और वो अपनी जो लाइट्स है उनको ऑन रखने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर अपीलिंग फॉर कि यू नो जस्ट इन मेमोरी ऑफ जिमी अपनी लाइट्स ऑन रखिए ट्रक की। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ ट्रक ड्राइवर्स डू लिसन टू अस, क्या आपको मालूम है इस चीज़ के बारे में? क्योंकि ये मैं इसके बारे में मैंने स्टफ पे अभी आर्टिकल पढ़ा है एंड आई रियली वॉज क्वाइट टच्ड रीडिंग दिस कि कैसे ट्रक कम्युनिटी साथ आ रही है, एकजुट हो रही है और लाइट फ्लैश कर रही है। क्रिकेट में काफ़ी बार ऐसा होता है जहाँ पे इफ़ समबडी पासेस अवे जो क्लोज है टू द स्पोर्ट, तो जो सारे प्लेयर्स हैं वो अपने आर्म्स पे एक ब्लैक बैंड टाई करते हैं एज अ मोमेंट, लाइक एज अ मेमोरी काइंड ऑफ अ थिंग कि या यू नो वी एक्नॉलेज दैट समवंस पास। मोर्निंग होता है ये इनका, ब्लैक बैंड एक होता है। And now the trucking community I hear or I see here is that वो lights on रखने वाले हैं। क्या इसके ऊपर अगर और कोई details अगर आप share करना चाहो तो ज़रूर share कीजिए 0800-004-866। Every day is a learning day for us। तो हमें बताइए इसके बारे में कि क्या ऐसा होता है। And अगर आपके industry में कुछ ऐसे norms होते हैं जो आप करते हो for mourning a loss, तो आप क्या करते हो? लाइक व्हाट इज इट दैट हैपेंस? जैसे क्रिकेट में होता है एक ब्लैक बैंड आप आर्म पे लगाते हो, अब मैंने ये ट्रक का सुना। वैसे अगर आपकी कोई ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस टू नो कि क्या होता क्या है और क्या अलग अलग चीज़ें होती है ना अराउंड। अभी के लिए आपको थ्रोबैक का एक बहुत ही शानदार गाना सुनाने वाला हूँ एंड देन उसके बाद कुछ और गाने, कुछ और बातें।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Throwback. थ्रोबैक से पहले आपके लिए मैं एक कंपटीशन यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और ये है अबाउट राहत फतेह अली खान जो ऑकलैंड आ रहे हैं फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। इनके टाइमलेस हिट्स आप इंजॉय कर सकते हैं एंड इनकी सोल स्टरिंग कवाली, इतनी पावरफुल वॉइस है। और जो लास्ट टाइम का जो शो हुआ था उसने तो धूम ही मचाई थी। इस बार फिर ये आ रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट अरीना में ऑन द 25th of July, प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन। इसके जो टिकट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे dryticketscom पे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है टू विन अ डबल पास। आपको यहाँ पे हमें मैसेज करके बताना है 5599 पे, राहत फतेह अली खान का ऐसा कौन सा गाना है जो आपको आपके किसी स्पेशल की याद दिलाता है। एंड इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर बचपन का फ्रेंड।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Salam Namaste का ये बहुत ही प्यारा गाना आप सुन रहे थे शान और गायत्री आयर की आवाज में. यार ये मूवी पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आती है. अभी भी मुझे लगता है कि ये मूवी ऐसे फन वॉच है, लाइक यू कैन वॉच एनी टाइम एनी वे. कुछ देर पहले मैंने आपको सवाल पूछा था, राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको डबल पास जीतने हैं तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 5599 पे मैसेज करके. कौन सा ऐसा गाना है जो आपको याद दिलाता है किसी की, कोई भी हो सकता है वो. और यहाँ पे हमें कुछ गाने आए हैं. एफआज ने लिखा है सुरीली अखियों वाली. अरे वाह क्या बात है, उनको इनकी बीवी की याद आती होगी ये गाना सुन के 100%. और निखिल ने गाए रश के कमर. ओहो मेरे रश के कमर, ये भी बहुत ही बढ़िया गाने. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस. आई थिंक ये गाने जो होते हैं राहत फतेह अली खान के गाने, वो ऐसे गाने हैं जो जहन में बस जाते हैं. देर जस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सम ग्रेट लिरिक्स, एंड जो उनकी आवाज़ होती है वो तो अलग ही लेवल पे ले जाते गाने को. और इनका कॉन्सर्ट अगर आपको लाइव सुनने मिले तो क्या ही बात है. dryTickets.com पे आप जाके इसके टिकट्स चेकआउट कर सकते हैं. बट ऑन अदर नोट, हमारे पास एक ऑकलैंड में नया एक स्टैंड अप शो भी होने वाला है, कॉमेडी शो होने वाला है. स्टैंड अप नहीं कहते इसको, शायद कॉमेडी एंटरटेनर शो है ये. गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर, स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया. सिद्धार्थ रंदेरिया इज कमिंग बैक टू ऑकलैंड, और उनका जो गुज्जू भाई प्रोडक्शंस है वो लेकर आ रहे हैं एक और एक नया शो. ये ब्रांड न्यू कॉमेडी इनका शो है, जहाँ पे ये अब फंस गए हैं एक अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में, जिससे काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और लाफ आउट लाउड मोमेंट्स सिचुएशंस क्रिएट हुई है. फिल्ड विथ विटी डायलॉग्स, रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स एंड क्लासिक गुजराती ह्यूमर, ये एक जो शो है ये कंप्लीट फैमिली शो है जो पूरी फैमिली साथ में बैठकर एंजॉय कर सकती है. और आ रहे हैं गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर. लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया इज गोइंग टू बी हियर ऑन फ्राइडे 3rd of July 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. और इसके टिकट्स अगर आपको लेने हैं तो premierTickets.co.nz पे आप जाके इसके टिकट्स ले सकते हैं. फ्राइडे 3rd July, याद रखना 7:30 PM एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. सिद्धार्थ रंदेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस यहाँ पे लेकर आ रहे हैं गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर. जरूर इसको आप चेकआउट कीजिए और इसके टिकट्स बुक कर लीजिए फटाफट बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट.
1: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड.

0: करण दरेश इनकी आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना हाँ जी। वेल हॉकी हो रहा है, मतलब हॉकी का गेम ये जो है इसका विमेंस नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में हो रहा है 15 जून से लेकर 21 जून, एंड हम बहुत ही प्राउड है टू बी एसोसिएटेड विद दिस इवेंट एंड टू गेट बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स विमेन, जैसे वो डिफेंड करने वाले हैं इनका टाइटल ऑन होम सॉइल। एक बहुत ही इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको विटनेस करने का विमेंस हॉकी, और अगर आपको इसकी टिकट्स जीतनी है तो अभी मौका है आपके पास। हॉकी लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू कैन गेट अ डबल पास फॉर द गेम। बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है हॉकी, और अगर आपको आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है टू द स्पोर्ट्स, देन आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट देम इनटू स्पोर्ट्स इज टू मेक देम वॉच इट फर्स्ट, और देखना मतलब उसमें फील आएगा आपको कि उनको मज़ा आ रहा है देखने में, कैसे लग रहा है, आर दे इंटरेस्टेड। सो या हॉकी 5599 पर लिखकर भेजिए, इसके डबल पास जीतने का मौका आपको मिल रहा है। और अगर आपको टिकट्स लेने हैं इसके लिए तो hockeynz.flickit.co.nz पे आपको इसके टिकट्स भी मिल जाएंगे। इट्स अ रियली फास्ट पेस स्पोर्ट जो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, और जो टेक्निकलिटीज़ है ये जब आप उसको लाइव देखोगे तो उसमें एक अलग ही मज़ा रहेगा। सो या डेफिनेटली डू चेक आउट द टिकट्स hockeynz.flickit.co.nz। बट अभी के लिए हॉकी लिखकर भेजिए HOCKEY 25599 आपके नाम के साथ, एंड यूल बी इन अ ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर दिस कप।
1: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
0: Well, उसका तो कोई गारंटी नहीं है कि हम संस्कारी है कि नहीं, लेकिन आज एक गारंटी है आपके साथ। आज एक गेम यहाँ पे खेलने वाला हूँ मैं जिसमें आपका साथ चाहिए, वो है
2: सिचुएशनशिप।
0: ये इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज, इट इज बेसिकली आपको एक सिचुएशन हम देंगे और इस सिचुएशन के अराउंड आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन। सो या इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन और अ फनी सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन, बट आप क्या करोगे ऐसे केस में ये आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है 0800-004-866 इस नंबर पे, बस कुछ मैसेजेस के बाद।
4: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
5: Accurate traffic.
6: Kitchen Mania trade prices this month.
7: Fine overnight for Auckland, a low of 6 degrees. On the northern, it's heavy over the bridge to Tristram Ave. We're getting reports of a crash at Albany just by the off-ramp heading north. The northwestern, heavy from the city to Te Ata Tū. On the southern, it's slow northbound from Princes Street to Green Lane and southbound Remuera to Sylvia Park. Very heavy on the southwestern from Wiri to Onehunga.
6: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
8: Fuel ke dam rose बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
10: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
11: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
12: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Lowest prices are just the beginning.
13: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
14: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
13: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
14: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
15: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
16: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. वैसे आज आपके साथ यहाँ पे हम ये खेलते हैं. सिचुएशनशिप में होता यह है कि हम आपको एक सिचुएशन में डालते हैं और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है कि ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया या आप क्या करोगे. आज का जो सिचुएशन है, मुझे लगता है ये सिचुएशन में हम काफ़ी लोग काफ़ी बार फंसे हैं. सो द सिचुएशन इज सच, जहाँ पे आपने किसी को कुछ बहाना दिया है कहीं नहीं जाने का. सो लेट्स इमेजिन, आपके फ्रेंड्स ने आपको इनवाइट किया है कहीं डिनर पे. आपने उनको बोला कि यार नहीं, आज तो मैं बीमार हूँ, या मुझे होमवर्क करना है, या स्टडी करना है, या जो भी असाइनमेंट करना है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगी. लेकिन फिर आप बाहर जाते हो रेस्टोरेंट में किसी और दोस्त के साथ, एंड एज लक में भी आपके सामने ही आपके वो दोस्त आ जाते हैं जिनको आपने कल्टी दी थी. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? 0800 004866. नाउ दिस सिचुएशन कैन बी फिट इन इनटू डिफरेंट मल्टीपल्स, मतलब आप अलग सिचुएशन में डाल सकते हो. आपने आपके ऑफिस पे कुछ बोला है और आप कहीं और गए हो और आपके बॉस आपको देख लिया, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है. अगर आपके पास कोई कहानी है इसके अराउंड जो आपको ऐसे लग रहा कि यार ये ना, ये चीज़ इसने कही ना, मुझे ये चीज़ याद आ गई, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद आ गई इस सिचुएशन वाली, आप यहाँ पर कॉल करके शेयर कर सकते हो 0800 004866. एंड लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू, आपको यहाँ पर कॉल करके आपका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको नहीं पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप अनोनिमस रह के शेयर कर सकते हैं. ठीक है, 0800 004866. गिव अस अ कॉल एंड शेयर के ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसो तो आप क्या बहाना दोगे, या आप क्या करोगे, आप क्या रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करोगे. आपने आपके दोस्त को एक आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया था डिनर के लिए, आपने उनको कल्टी दे दी, बोला कि नहीं यार मैं बीमार हूँ, या जो भी आपने कोई रीज़न दिया, लेकिन फिर आप बाहर निकले और आपने बाहर उसी दोस्त को देख लिया, व्हाट वुड यू डू? दिस इज़ आवर सिचुएशन फॉर टुडे. 0800 004866 इस नंबर पे आप कॉल करके शेयर कर सकते हो. अगर आप थोड़े मतलब हेजिटेंट हो तो 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मैसेज भी करके हमें यहाँ पे बता सकते हो. बट या आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट यू कैन बी अनोनिमस, यू कैन बी अनोनिमस एंड यू कैन गिव अस अ कॉल एंड यू कैन शेयर योर स्टोरी. एक छोटा सा गाना आपको सुना रहा हूँ, बट गाना सुनते सुनते अगर कुछ याद आ गया तो कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 004866 पे.
18: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
19: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
20: Now,
18: brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

आदव असलम और सुमेधा कर्माहे के आवाज में आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना। सिचुएशनशिप में हमें कुछ कॉल्स आए लेकिन ऑफ एयर ही बात हुई उनसे और उन्होंने काफ़ी लोगों ने कुछ किस्से से शेयर किए। एक्चुअली मैं एक मैंने किस्सा जो शेयर किया था वो था अराउंड आपने किसी को कहा है कि आप उनको नहीं मिल सकते लेकिन फिर आप उन्हें बाहर कहीं दिख जाते हो उसी टाइम पे जब उन्होंने आपको पूछा था कि यार अपने को तो मिलना था लेकिन तू बिज़ी था लेकिन तू अभी तो यहाँ पे। तो ऐसे वाले किस्से, बट इसमें एक और एक ट्विस्ट वाला किस्सा जो अभी ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी एक अनोनिमस लिसनर के साथ, उन्होंने कहा कि उनके साथ ये फ़ोन के लिए फ़ोन के अराउंड हुआ है जहाँ पे उनको किसी का फ़ोन नहीं आंसर करना था एंड मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने ये किया होगा। तो उन्होंने वो फ़ोन इग्नोर किया बट देन फिर अननोन नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने अननोन नंबर वाला फ़ोन उठा लिया एंड देन या इट वॉज बेसिकली लुक फेस नो लाफ, मतलब यू नो पता नहीं क्या करना है कि अब क्या बोले। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी ना जहाँ पे आपने किसी का फ़ोन नहीं उठाया जिसका आपके पास नंबर सेव्ड है बट देन फिर अननोन नंबर जब आता है तब आपको ऐसा अलग से अंदर से ऐसे चूल होती है कि अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है यार, ये मुझे जानना है कौन है। एंड इसलिए अभी मुझे लग रहा है ये नया फीचर भी शायद काफ़ी स्मार्टफोन्स में आ गया है ना जहाँ पे एक कॉल असिस्ट एक AI जनरेटेड वो आपसे मतलब वो पहले बात करता है इंसान के साथ, जानता है कि क्या पर्पस है क्या नहीं और फिर आपको एक मैसेज आता है और फिर आपको ऑप्शन देते वो आंसर करने का कॉल। सो या लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट हैव कम थ्रू टू हेल्प आउट पीपल इन सच ट्रिकी सिचुएशंस। बट अगर आपके भी ऐसे कोई किस्से हैं तो 5599 पे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं।

चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021

0: into a holiday. Turn supermarket checkouts into holiday check-ins with Everyday Rewards. Turn drives into flights by earning points on car hire with Avis. And turn short stays into staying longer when you earn points with Qantas Hotels. Become a Qantas frequent flyer today and start earning Qantas points towards your next holiday. Join for free at Qantas.com. T's and C's apply.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
4: Auckland, taiyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert, along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
5: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with Everyday Rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
6: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
7: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
8: Power Drive at 5.
9: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
10: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए Power Drive at 5 में हम थोड़ी इधर उधर की बातें भी लेकर आते हैं and काफी drug related matter बाहर आ रहा है. पुलिस currently raids मार रही है काफी जगहों पे. Search warrants across Northland और Auckland इन्होंने issue out कर लिए हैं because जो methamphetamine है methamphetamine उसके around काफ़ी सारी तहकीकात हो रही है. वो होप कर रहे हैं कि ये जो नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स है इनको ये ब्रेक थ्रू कर सके और ये जो भी ड्रग्स हैं इनको बरामद कर सके. सो या अगर आप भी देख रहे हो पुलिस काफ़ी अराउंड योर प्लेस देन मे बी देर इज़ सम इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन बैकग्राउंड में. मेरे को आज भी पुलिस को देखकर बहुत डर लगता है. मतलब मैं जब पुलिस को देखता हूँ उनकी गाड़ी पता नहीं मेरे दिल में धक धक हो जाता है शुरू यार. दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट नो आई विल एवर बी एबल टू गेट ओवर. बट क्या आपको भी ऐसा होता है मतलब सडनली जैसे पुलिस अगर आपको दिख गई या उनके सायरन कभी कभार तो ना वो ऐसे एकदम पास में आके सायरन बजा देते यार तो एकदम ही ऐसा लगता है कि ओहो ऐसे दचकना टाइप हो जाता है. आपके साथ अगर ऐसा कुछ अगर हुआ है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए यार. मैं अकेला तो नहीं हूँ ना जिसके साथ ऐसा हो रहा है. आई एम प्री श्योर आपके साथ भी हो रहा है. 4599 पे मैसेज करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं.
11: Let's go.
12: Straight from the heart.
13: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा.
14: Poo by poo, Fugardi poo. You like me and I like you too. Poo by poo, Fugardi poo. You like me and I like you too. Poo by poo, Fugardi poo. You like me.

0: वाटत बॉम्ब सोडा आडवे रॉकेट काय फुल जडी से तुने भरेले पॉकेट अरे बारा बन मेरे जायसा बन येले नाना का बॉम्ब जाके उडा दे घर
1: Bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. You like

0: Papa ni main mein ja diya.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
2: Arey Ram, MashaAllah, Inshallah, kya baat hai? Aap tashreef le gaye, mulaqat to hui aap se.
1: Hum. Throwback.
3: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. वैसे आज ट्रेंड मेकर्स में मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और मुझे काफी मैसेजेस भी आए, कुछ ग्रेट सजेशंस आए. सोम, आपने बहुत एक बढ़िया सजेशन भेजा है कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है और शुरू हो रहा है बहुत जल्दी, तो एक ऐसा सेगमेंट भी होना चाहिए जहाँ पे हम सारे गेम्स के रिलेटेड सॉन्ग्स प्ले करें. हमने एक बार आई थिंक पिछले महीने में ऐसा किया था अराउंड स्पोर्ट्स, हमने किया था कि पूरे सारे स्पोर्टी सॉन्ग्स, सॉन्ग्स फ्रॉम स्पोर्ट्स मूवीज. आज लेकिन मुझे एक मिल गया है हमारे ट्रेंड मेकर्स के लिए टॉपिक, एंड टुनाइट इज गोइंग टू बी अ पार्टी नाइट. इट इज़ वेनसडे, हम्प डे, मिड वीक. एक ज़माना होता था जहाँ पे ऑकलैंड में वेनसडेज को पार्टीज होती थी, स्टूडेंट नाइट्स कहते थे. अब वो ज़माना कोविड के साथ चला गया, बट एनीवे आज हम पर हम लेकर आएंगे ये पार्टी नाइट अगेन, क्योंकि आज 6 से 7 के बीच हम आपको सुनाने वाले हैं मीका सिंह हिट्स, क्योंकि आज मीका सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन द 10th of June. सो अगर आप भी मीका सिंह के साथ अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज पार्टी होने वाली है 6 से 7 के बीच, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी बैक टू बैक मीका सिंह के गाने ओनली ऑन हम टुनाइट. वेल, आज बताइए मुझे, आज अगर आपका भी खास दिन है. वैसे आज मेरे डैड का बर्थडे है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम सारे पार्टी हिट्स प्ले करने वाले हैं 6 से 7 के बीच ट्रेंड मेकर्स में. सुनिएगा जरूर 6 से 7 के बीच मीका सिंह हिट्स ओनली ऑन हम. दिल

0: sets from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: Good evening, you're listening to Trend Makers. Only on Humpling Bollywood's biggest hits, 104.2 FM. Roa app ke zariye aap Trend Makers ya hum sun sakte hai actually. Aur Trend Makers aapke liye 6 se 7 ke beech hum lekar aate hai, jahan pe ek particular theme lekar hum aate hai. तो कभी कोई आर्टिस्ट शाउट आउट होता है, कभी कोई थीम होता है, कभी कोई मूवी रिलेटेड थीम होता है. बट आज का जो थीम है वो है एक शाउट आउट टू एन आर्टिस्ट जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड दैट इज नन अदर देन मीका सिंह. मीका सिंह का आज बर्थडे है, 10th of June. और आज मीका सिंह के साथ साथ एक्चुअली और भी काफ़ी पर्सनैलिटीज का बर्थडे है, सो उनके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन आपको मैं बता दूँ, मीका सिंह के बैक टू बैक जो हिट सॉन्ग्स हैं वो आपको इस घंटे सुनने मिलने वाले हैं. और मैंने प्लेलिस्ट जो तैयार की है, आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि एक से एक गाने हैं. और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार मीका सिंह ने जो गाने गाए हैं ना, वो कोई भी पार्टी में आप जाओ, अगर मीका सिंह का गाना नहीं बजा तो वो पार्टी अधूरी है. मीका सिंह के गाने तो बजने ही मांगते हैं. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये पहला गाना ही सुन लीजिए. वेल, आज की पार्टी तो ज़रूर मीका सिंह की तरफ से ही है, लेकिन हम शाउट आउट दे रहे हैं आज मीका सिंह को, बिकॉज ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. सो लेट्स गेट इन टू दिस मीका सिंह स्पेशल आवर.

ट्रेंड मेकर्स में आज मीका सिंह स्पेशल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। वैसे मीका सिंह काफी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक शो में आए थे, वो एक रियलिटी बेस्ड शो में, और वहां पे उन्होंने ब्लेम किया, मजाक में उन्होंने ब्लेम किया दलेर मेहंदी को, कि दलेर मेहंदी के कारण वो आज भी सिंगल है, क्योंकि अपेरेंटली बहुत पुरानी बात है ये। और मीका सिंह उस टाइम पे एक बहुत ही कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। सो उनके लैंडलाइन पे फ़ोन आया, उनकी उस टाइम की जो गर्लफ्रेंड थी उनका, और फ़ोन उठाया मीका सिंह ने नहीं, दलेर मेहंदी ने, और पता नहीं क्या बात हुई उनकी उस टाइम पे फ़ोन पे, कि उस दिन के बाद उस लड़की ने मीका सिंह से कभी बात ही नहीं की। तो वो मजाक में तो उन्होंने दलेर मेहंदी को ब्लेम कर लिया, बट फिर जब दलेर मेहंदी से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने इसको झटकार दिया और बोला कि नहीं नहीं, वो तो उसकी खुद की लापरवाही थी जिसके कारण वो लड़की चली गई, हमने कुछ नहीं ऐसा किया। सो या दैट इज़ वन स्टोरी दैट आई डिडंट नो अबाउट मीका सिंह, बट आज उनके बर्थडे के मौके पे उनके बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको हम सुना रहे हैं। तो ये जो गाना है, ये गाना मुझे लग रहा है कि कोई भी पार्टी हो जहाँ लड़के सारे, अगर आपको लड़कों को डांस फ्लोर पे लेकर आना है तो ये गाना आपने ज़रूर प्ले करना चाहिए। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, लिसन टू इट।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
3: Jen didn't think she needed a DVS system.
4: Oh, I've got insulation in that.
3: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
4: Ah, yeah.
3: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: Sleepyhead Sleepy Z Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: Interesting facts about Mika Singh आज मैं आपके साथ share करूंगा क्योंकि ये hour है special for Mika Singh. उनका आज birthday है. वैसे क्या आपको पता था कि Mika Singh actually में एक musical child prodigy रहे हैं. इसका मतलब है कि वो बचपन से ही म्यूज़िक के साथ काफ़ी एसोसिएटेड रहे हैं. उनके पिता एक्चुअली एक बहुत ही जाने माने कीर्तन प्लेयर थे और वो कीर्तन प्ले करते थे. लेकिन मीका सिंह ने स्टार्ट ऑफ किया नॉट एज अ सिंगर बट एज अ म्यूजिशियन. उन्होंने तबला प्ले करना शुरू किया एट द एज ऑफ 8 साल के थे जब उन्होंने तबला प्ले करना शुरू किया. उन्होंने हारमोनियम को मास्टर किया बाय एज ऑफ 12 और उन्होंने गिटार भी एक्सटेंसिवली उन्होंने ट्रेन किया गिटार सीखने में बाय एज 14. सो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स तो उन्होंने सीखे ही बट फिर उसके बाद उनका सपना था कि उनको एक बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र बनना था और रहा उनको ले गई कि वो सिंगर बन गए. वेल और भी कुछ गाने ऐसे हैं जो जिन पे मीका सिंह का एक्चुअली में हाथ था लेकिन हमें पता नहीं था इसके बारे में क्योंकि वो पॉपुलर होने से पहले उन्होंने उस पर काम किया था. कौन से दो गाने उसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं बस थोड़ी देर में. सुनते रहिए हम.
2: आई

आप सुन रहे हैं हम्बलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। वैसे मीका सिंह ने काफी कमाल कमाल गाने तो गाए ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मीका सिंह वॉज एक्चुअली द वन जिन्होंने लिखा था और कंपोज किया था उनके भाई का बिगेस्ट हिट, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स, दलेर मेहंदी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, दर्दी रब रब कर दी रब, वो जो गाना था वो एक्चुअली में जो ग्लोबल भांगड़ा हैंथम बना था दलेर मेहंदी का गाना था, लेकिन वो एक्चुअली में मीका सिंह ने इस गाने को लिखा था और इसको कंपोज भी किया था। सो या मीका सिंह काफ़ी बैकग्राउंड में रहे थे, लेकिन डेफिनेटली पोटेंशियल तो था ही उनका। किसी को पता नहीं था कि उस टाइम पे वो सिंगर बनेंगे इतने बड़े, इतने मशहूर। बट या दलेर मेहंदी का जो पॉपुलर गाना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये गाना सुनो, दर्दी रब रब कर दी, दलेर मेहंदी का गाना, याद करना कि मीका सिंह ने इस गाने को लिखा था और कंपोज किया था। इनकी पैदाइश एक्चुअली में हुई थी वेस्ट बंगाल में, मीका सिंह पैदा हुए थे वेस्ट बंगाल में, एंड उसके बाद बिहार में वो उनका काफ़ी स्कूलिंग और एजुकेशन हुआ था, और फिर उसके बाद लाइक ही इज़ बीन अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, बट हमेशा से वो म्यूज़िक के साथ उनका नाता काफ़ी क्लोज वाला रहा था। गाड़ी में अगर आप है अभी और गाड़ी या गाड़ी पे जाने का सोच रहे हैं, मतलब आप ड्राइव पे जब भी जाने का सोचते हो, तो ये गाना मुझे लगता है ज़रूर बजता है मीका सिंह की आवाज़ में आपके लिए। दिस इज़ लॉन्ग ड्राइव।

0: की कोई. स्लीपी हेड स्लीपी इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली 799 ऑन सेल नाउ. हम एक्यूरेट ट्रैफिक.
1: सी थ्राइव एट फील्ड डेज.
2: फाइन ओवरनाइट फॉर ऑकलैंड अ लो ऑफ 6 डिग्रीज. वी हैव गॉट रिपोर्ट्स ऑफ अ क्रैश ऑन द साउदर्न अफेक्टिंग नॉर्थबाउंड ट्रैफिक जस्ट पास्ट मार्केट रोड. हिटिंग नॉर्थ इट्स बीन हीवी फ्रॉम हाईब्रुक टू ग्रीन लेन. ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न हीवी फ्रॉम द सिटी टू वाटरव्यू. द साउथ वेस्टर्न स्लो फ्रॉम विडी टू मंगरेर ब्रिज. एंड ऑन द नॉर्दर्न हीवी हिटिंग टू द हार्बर ब्रिज कमिंग बैक इनटू द सिटी पास्ट नॉर्थ कोट पॉइंट.
1: Thrive Streamlines admin for Kiwi businesses who want to run smarter, faster and more efficiently.
3: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek

0: फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह।
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
5: Let's go! 3, 2, 1.
6: Trend makers.

0: Sleepyhead Sleepy Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: आप सुन रहे हैं हम Blink Bollywood's Biggest Hits. वैसे मीका सिंह के स्पेशल गाने आपको आज सुना रहे क्योंकि उनका आज बर्थडे है. इनके साथ साथ आज सुंदर पिचाई का भी बर्थडे है. इनको भी काफी लोग जानते हैं भाई. ये तो बहुत ही नाम में है और गूगल के ये CEO है. हमारे करता धरता ही आप समझ लो क्योंकि हर एक चीज आजकल अभी गूगल के थ्रू ही तो होती है. मतलब गूगल ने हमें इतना सराउंड करके रखा है कि कैलेंडर से लेकर ईमेल्स, फोटोज़, मैप्स, हर एक चीज़ में हम गूगल का ही तो यूज़ करते हैं. स्टोरेज भी पकड़ लो, अभी आजकल तो सब गूगल ड्राइव पे ही जा रहा है. सो या आज सुंदर पिचाई का भी बर्थडे है, CEO ऑफ गूगल. और ये 2015 से CEO रहे हैं इन गूगल के. 10 जून आज ही इनकी इनका बर्थ हुआ था 1972 में. और ये एक्चुअली में एक बहुत ही छोटे जगह से आते हैं. मतलब मदुराई में पैदा हुए थे एंड देन ही वेंट अपॉन बिकमिंग द CEO ऑफ गूगल. व्हाट अ बिग फीट. सो या काफ़ी रोमांचक दिन था आज का. काफ़ी बढ़िया गाने आपको सुनाए, कुछ बात टॉपिक्स पे बात भी की आपके साथ हार्ट टू हार्ट. एंड वी एंडेड अप विथ मीका सिंह के पार्टी हिट्स. और भी कुछ गाने आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, बट इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिए और या संभाल के रहिए. बाय.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Beating pump prices is easier than ever for seniors, students, kids, community service card holders and others. Auckland Transport has 7 different discounts to make getting around more affordable. See if you can save on travel by searching AT Fare Discounts.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा एना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
8: हम टाइम चेक Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. The centre responsible for the government's collective response to family and sexual violence faces losing a third of its workforce in a restructure. The board overseeing the Centre for Family Violence and Sexual Violence Prevention is proposing to reduce the numbers from 78 to 52. And almost 100 frontline health workers will likely need to reapply for their jobs in a restructure at hospitals in Waikato, Bay of Plenty, Taranaki and Tairawhiti. A US government agency has warned oil stockpiles in the world's largest economies are heading towards their lowest levels in more than two decades. In sport, the Super Rugby Pacific semis on Saturday, one change to the Hurricanes, it's on the wing. Fehi Finianganofor is back from injury. Several changes to the Blues, including Bowden Barrett, who's over that quad injury. He'll start at fullback, and Finlay Christie slots in at halfback. And 44-year-old American tennis great Serena Williams still to decide on whether to play at Wimbledon after making a winning comeback in doubles at the Queen's Club Championships. It's been nearly 4 years since her last competitive singles match.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best. Hamari good brands bhi
8: hai. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
11: It is Wednesday, 10th June. Welcome everyone. Night Cafe में मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए. आपका स्वागत है. और 12 तक तो मैं आपका साथ देता हूँ हमेशा. पूरा Monday to Thursday, 8 to midnight हमारा साथ रहता है क्योंकि Night Cafe लेकर आते हैं. लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अलग लेकर आते हैं हम 8 to 9 के बीच में. कल आपने सुना Coke Studio Reloaded, मंडे को सुना No Logic Monday और आज Night Cafe Midweek Masala आप सुनेंगे. Without further ado, शुरू करते हैं आपके लिए Night Cafe Midweek Masala.
8: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है Midweek Masala.
11: नाइट कैफे मिडवीक मसाला में आपका स्वागत है, जिसमें बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं, लेटेस्ट मसालेदार गॉसिप लेकर आते हैं, विद ग्रेवी इनफेक्ट आपको सर्व करते हैं. मतलब इतना मज़ेदार डिश बनाकर आपके सामने वो न्यूज़ हम लेकर आते हैं जो आप इन्जॉय करते हैं सुनना. आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में, उनके आने वाली फिल्मों के बारे में, क्या कुछ अभी ड्रामा हो रहे हैं बॉलीवुड में, इस पर जानकारी. आज न्यूज़ में मैं आपको बताऊँगा धुरंधर 2 क्रॉसेस 1098 करोड़. दैट्स अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट. मृणाल ठाकुर ने शी वॉज सरप्राइज बाय सन ऑफ सरदार 2 कास्टिंग. और रणबीर कपूर को नाम दिया गया है अमंग्स टाइम्स इन्फ्लुएंशियल पीपल. कार्तिक आर्यन्स नागजिला डिलेड. और आहन पांडे और अनित पड्डा रियोनाइट हो रहे हैं. अक्षय कुमार ने असरानी को ट्रिब्यूट पे किया है. और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक फैमिली मोमेंट शेयर किया है. और सलमान खान का एडवर्टीजमेंट्स गो वायरल, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. जितना भी समय हमारे पास होता है उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा. फिलहाल आपको सुनाते हैं कुछ प्यारे गाने और दो गानों के बाद मिलते हैं विद लेटेस्ट बॉलीवुड खबरें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं एंड वेलकम टू द शो.

0: मसाला मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें. धुरंधर 2 ने क्रॉस किया है 1098 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है फिल्म. वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है ऑफ दिस ईयर. रणवीर सिंह लीड रोल में है और अभी तो इनका वॉइस को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग कलेक्शन सिर्फ यही दिखाता है कि रणवीर सिंह कितना बड़ा स्टार है, आदित्य धार कितना बड़ा डायरेक्टर है और इस फिल्म की स्टोरी लाइन कितना मजबूत है जो इन दिनों लोग पसंद कर रहे हैं, अभी के ऑडियंस पसंद कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग कलेक्शन के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर सक्सेस रहा है फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड एंड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि इससे बाकी लोग भी सीखेंगे कि फिल्म अगर हो तो ऐसी होनी चाहिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ कुछ और प्यारे गाने आपके नाम.
1: डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर

0: Night Cafe.
1: Only favorite songs हम लेकर आते हैं one after another only on हम playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए जारी है Night Cafe Midweek Masala जिसमें Bollywood खबरें आप तक हम लेकर आते हैं. मृणाल ठाकुर ने रिवील किया है कि उनको पता नहीं था कि उनका कोस्टा कौन रहेगा इनिशियली और ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस इन्होंने डिस्क्राइब किया है और कहा गया है कि फिल्म एक सीक्वल है टू अ पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज सन ऑफ सरदार आपने देखा होगा पहले जिसमें अजय देवगन के साथ और भी स्टार्स थे और काफ़ी न्यू पेयरिंग के लिए फैंस ईगा है टू सी ऑन स्क्रीन कितना केमिस्ट्री और कितना कॉमेडी होता है और काफ़ी ऑनलाइन डिस्कशन भी मृणाल ठाकुर के स्टेटमेंट से आया है. रणबीर कपूर को टाइम्स इन्फ्लुएंशियल पीपल का नाम दिया गया है, खिताब दिया गया है. कहा गया है कि ही वॉज इंक्लूडेड इन टाइम्स इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट और ही वॉज द ओनली इंडियन एक्टर फीचर्ड. और इस रिकॉग्निशन से ये बात सामने आता है इनके रिसेंट अचीवमेंट्स बहुत हुए हैं और ग्लोबल ऑनर फैंस ने सेलिब्रेट किया और ये न्यूज़ अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी बॉलीवुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी आपके साथ हम शेयर करेंगे.

Masala. You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe Midweek Masala जारी है जिसमें Bollywood News आपके लिए हम लेकर आते हैं. कार्तिक आर्यन's most awaited नागजेला को delay कर दिया गया है. Postpone in fact हुआ है ये. अब ये film 2027 में release होगी. कार्तिक आर्यन लीड रोल में नज़र आ रहे हैं और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि स्केड्यूलिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से ये फिल्म डिले हुई है और फैंस वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट ओवर द डिले एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनके फैंस बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिल्म इसी साल रिलीज़ होगी. आई एम नॉट श्योर नागजिला का क्या स्टोरी, लेकिन अभी काफ़ी नागिन पर सीरीज़ बन रहे हैं तो आई एम श्योर कुछ ऐसा ही ये मूवी शायद होने जा रहा है जिसमें आई एम शो एनिमेटेड सांपों का इस्तेमाल शायद किया जा सकता है. आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो. अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है इस फिल्म के बारे में तो आपके साथ हम शेयर करेंगे. अक्षय कुमार ने ट्रिब्यूट पे किया है टू असरानी, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Hum Night Cafe on Hum. Wednesday का तड़का midweek masala on Hum.
4: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है जिसमें बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। अक्षय कुमार ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है भूत बंगला एज अ ट्रिब्यूट टू वेटरन एक्टर असरानी और ये स्टेटमेंट रेजोनेटेड विद फैंस। काफ़ी ने इस जेस्चर को प्राइज किया है सेइंग इट वॉज अ वेरी स्वीट एंड थॉटफुल जेस्चर जो अक्षय कुमार की तरफ से आया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी ओवरऑल इस फिल्म को मिली है। अगर आपने देखी है तो हमें ज़रूर बताया कि आपको ये कैसा लगा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक फैमिली मोमेंट शेयर किया है जिससे द इंटरनेट इज गोइंग ऑल हार्ट्स। इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक ग्लिम्स शेयर किया है ऑफ हिज फैमिली लाइफ। फैंस ने अफेक्शनेटली कहा है कि कोल्ड हिम इनफेक्ट पुकी, और ये काफ़ी क्विकली वायरल हुआ ये जो कमेंट्स इनको मिल रहे थे। और सपोर्टर्स ने अप्रिशिएट किया है द कैंडिड मोमेंट, और ये बिकेम वन ऑफ द डेज ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट स्टोरीज बन चुका था सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए, जो इन दोनों अभी फिल्मी दुनिया से थोड़ा गायब से नज़र आ रहे हैं। लेकिन फॉर हिज ग्लिम्सेस ऑन सोशल मीडिया फैमिली लाइफ के बारे में या अपना लाइफ एंजॉय करते हुए जो फोटोज़ वगैरह आते हैं, ये इनके फैंस बहुत लाइक कर रहे हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। आज के लिए मिडवीक मसाला में इतना ही। अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन, मोर सॉन्ग्स फॉर यू।

0: Crispy on Rover, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Here at Bunnings, you can warm up any outdoor space this winter. Gas heaters are great for the backyard. It's a portable thing, so you can move it around, and we've got the fire pits, make it feel cosy and warm.
2: Secure your home with an Arlec 7-watt solar sensor LED floodlight, only $49.90. Get around a Glow Tambo steel fire pit, $98. And solid energy roundwood firewood is just $15.95.
1: Get your outdoor space winter ready for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
3: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है क्या आप तैयार हैं बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें गटरों को साफ रखें खुली चीजों को बांध लें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. ASB must pay a record $6.7 million for breaches of the anti-money laundering law. The penalty was imposed by the High Court following action taken by the Reserve Bank, which says ASB's transaction monitoring systems were inadequate for around 6 years. Police have been carrying out search warrants across Northland and Auckland as part of a major meth investigation. More detail will be revealed tomorrow. And South Island ski fields are delaying opening due to a lack of snow. Canterbury's Mount Hutt has pushed back its planned Friday opening. Further south, Cardrona has delayed its opening by a week to Friday week. The Remarkables will decide tomorrow if its scheduled opening this Saturday will go ahead. In sport, former England cricket captain Geoffrey Boycott is calling for the board to slap current skipper Ben Stokes with a suspension. Writing for The Telegraph, Boycott's view is that the issue goes directly to standards within the England setup. And in basketball, Tall Blacks coach Judd Flavel has recalled guard Ty Webster for next month's World Cup qualifiers in Auckland against Guam and the Philippines.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
5: Night Cafe on Hum.
0: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: Welcome back everyone, you're listening to Night Cafe और इस घंटे पर मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि I've got so much happening on this hour. 10th June आज है और Wednesday है, midweek है. जैसे midweek शुरू हो जाता है तो फिर weekend बहुत ही जल्दी नज़दीक आ जाती है और अच्छा लगता है कि you've finally passed Wednesday और Thursday and Friday फिर weekend आ जाएगा. वैसे इस घंटे पर आपके लिए सामाजिक सूचनाएँ भी रहेंगे, कुछ शोज जो होने जा रहे हैं, इस पर डबल पासेस जीतने का मौका किस तरह से आपको मिल सकता है, इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो आने वाले हैं इस पर जानकारी भी आपको दिया जाएगा. लेकिन अभी बैक टू बैक सॉन्ग्स में बहुत प्यारे गाने में लेकर आया हूँ. इस बार मैं आपको आर्टिस्ट के नाम नहीं शेयर करूँगा ताकि ये पूरा लिस्ट सरप्राइज रहे आपके लिए. आपको बस एक के बाद एक एंजॉय करना है जो प्यारे गाने में लेकर आया हूँ. क्रिश का साथ है.
7: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं हम पर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दी एफ आई एच हॉकी वीमेंस नेशनल नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में आ रहे हैं फ्रॉम 15th to 21st of June और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम. ये आपका चांस होगा टू बी बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन जब ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ऑन होम सॉइल. 8 कंट्रीज़ है, वर्ल्ड क्लास हॉकी होंगे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स होगा जो न्यूजीलैंड में आपने देखा है 4 years. अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मतलब जाना है इस इवेंट में तो आपको हमें सुनते रहना है क्योंकि आपका फेवरेट अनाउंसर आपको कॉल करने के लिए बोलेगा. फिर आपको हॉकी टेक्स्ट करना है 5599 पर फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास टू द गेम्स. और हमें स्टैंड्स को पैक करना है, वी हैव टू मेक सम नॉइज और हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन को सपोर्ट करना है. टिकट्स आप hockeynz.flicket.co.nz से ले सकते हैं. स्टिक विद हम और बी पार्ट ऑफ द एक्शन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
4: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: कहानी ऑफ इनडेलिबल होम्स।
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ, बोली बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Indian Ink Theatre Company presents Balloon Dog. Ye ek award-winning performer hai, Jacob Rajan, jo abhi stage par aapke liye lekar aayenge in the world premiere of Balloon Dog, jo ek deeply moving aur timely new production hai, jo Rabindranath Tagore ki kahani Kabuliwala se prabhavit hai. Aur 21st century mein iski setting hai is kahani ki, beautifully tender tale, jisme unexpected friendship between a 5-year-old girl aur ek lonely migrant worker ki बीच में होता है. और कहा गया है कि सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन के बाद इंडियन इंक्स लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस में ह्यूमर, हार्ट, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस और प्योर थिएट्रिकल मैजिक होने जा रहा है, जो बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा, जिसमें रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी देखने का मौका मिलेगा, करेज, कनेक्शन और सीइंग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांस. ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में होगा 3rd to 20th of June. तो आप ये मिस ना करें, दिस इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. टिकट्स के लिए iticket.co.nz आप विजिट करें.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Krish on your number one hump playing Bollywood's biggest hits. Auckland, the wait is over. Legendary Rahat Fateh Ali Khan Auckland mein perform karenge for one unforgettable night of music. Aur timeless hits, soul-stirring kawaliyan aur powerful voice mein jo audience ko captivate kar dega. Ye iske liye aapko pahunch jana hai the Trust Arena. 25th July ko ye show hoga. Presented by JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions aur Shahzada Production. Tickets, dry, DRY, tickets. tickets.com से आपको मिलेगा. डबल पास के लिए जैसे ही हमारे साथी आपको ऑन एयर कॉल करने के लिए बोलते हैं और डेडिकेट करें एक राहत फतेह अली खान जो आपके करंट लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है या ऐसा गाना जो आपको समवन स्पेशल की याद दिलाती है. द मोस्ट हार्टफेल और क्रिएटिव डेडिकेशंस को ड्रो में शामिल किया जाएगा टू विन ए डबल पास टू द कॉन्सर्ट. क्रिश के साथ है.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम पॉडकास्ट के बारे में बातें करें तो आपको बता दूं कि अनफिल्टर ड्राइव सैंडी और रुज़बे के साथ में WWE फॉर्मर सुपरस्टार शेंकी सिंह, ये एक 7-foot-tall रेसलर है जिन्होंने एक स्मॉल टाउन इन हरियाणा से ग्लोबल WWE स्टेज तक ये पहुंचे हैं. और पॉडकास्ट में इन्होंने काफ़ी बातों को शेयर किया है सैंडी और रुज़बे के साथ में, तो आप ये ज़रूर सुने इनका ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड होता है एंड व्हाट्स रियल brutal journey of getting into that from India, life behind the scenes or injuries, risks or physical toll of entertainment wrestling. साथ ही में सलमान खान के साथ में काम करना इसके लिए कैसा रहा, द ग्रेट खाली के साथ ट्रेन करना इनके लिए कैसा रहा, ये सभी कुछ के लिए आप 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव और ऑडियो और वीडियो ऑफ द एपिसोड का लिंक आपको मिल जाएगा. वीडियो प्रोडक्शन इंस्पायर्ड बाय मीडिया वर्क्स, इंस्पायर मीडिया वर्क्स दैट डू मार्केटिंग रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोज. आप केतन से बातें कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए. ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी ये भी पॉडकास्ट विजय और पूजा के साथ में होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो बिट्स और कॉन्वर्सेशंस, तो आप BF टेक्स करते हैं 5599 पर तो कैचअप ब्रेकफास्ट के लिए जो पॉडकास्ट है वो आपके पास लिंक आ जाएगा और सारे डिटेल्स भी आ जाएंगे आपके पास. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: शायद बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
8: Attention please! Just a reminder about our bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Night Cafe.
11: You're listening to Krish on your number one, hum playing Bollywood's biggest hits. आपके सपोर्ट की जरूरत है Glow Red for Thel NZ के लिए। ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन है बाय मुस्कान केयर ट्रस्ट NZ, which is shining a light on thalassemia and sickle cell anemia. ये conditions जो often invisible होते हैं लेकिन life long impact हो सकते हैं। काफ़ी patients regular blood transfusions पर rely करते हैं, often every 3 weeks simply to stay alive. तो हमारे community में आपकी जरूरत है क्योंकि आपको इनवाइट किया जा रहा है टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑन 20th June जो मनुकाउ एनजेड ब्लड सेंटर में होगा। और भी जानकारी के लिए या अपने डोनेशन को बुक करने के लिए आप www.muskancaretrust.org.nz विजिट कर सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक, और टुगेदर आप इस बहुत ही नोबल कोज में भाग ले पाएंगे। ग्लो रेड, डोनेट ब्लड एंड शेयर होप। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes. So eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.

0: Cafe on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. वेंसडे नाइट नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फाइनल आवर में एक बार फिर आपका स्वागत है और न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए बहुत ही जल्दी मैं पेश करूँगा. कुछ और सामाजिक सूचना है जो इस घंटे पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा. इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो. और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स है, बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके लिए हम लेकर आ रहे थे आज नाइट कैफे मिड वीक मसाला में. तो अगर इस घंटे पर टाइम मिलता है तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. जितने भी हमारे लिसनर्स अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स, आपको भी शामिल करते हैं और ऐसे ही हम का साथ आप हमेशा दीजिएगा और हम आपको हमेशा याद करेंगे. क्रिश का बहुत सारा प्यार आप तक पहुंचे, आप सभी तक पहुंचे और प्यारे गाने के साथ चलो शुरू करते हैं इस घंटे की और बैक टू बैक सॉन्ग्स में लेकर आया हूँ 30 मिनट्स के लिए.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You are listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Krish ka saath hai, aur bhi samajik sushna hai aapke liye. Shri Ram Mandir, 11 Brick Street, Henderson mein Paat Utsav hone ja raha hai, 11th Anniversary Celebrations ke uplaksh mein. Ye 10th to 14th June hoga, ki events mein, Wednesday ko, 10th June ko hoga Ganga aur Gau Puja, aur Tuesday, 11th June ko Ganesh aur Devi Yagna hoga yahaan par, 12th June ko Rudra Yagna hone ja raha hai yahaan par, और साथ ही में 13 जून को विष्णु यज्ञ और 14 जून को पूजा और अभिषेक यहाँ पर होगा और सभी दिनों पर महाप्रसाद भी दिया जाएगा. और भी जानकारी के लिए आप मंदिर के प्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं 09836464647 पर. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. क्या आप भी माता सीता का किरदार निभाना चाहते हैं ऑन स्टेज? तो अशोक से आज ही बातें करें, मास्टर अशोक से, 021-179-5459 पर. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ब्रिंग्स यू श्री राम लीला, सेव द डेट. 8 अगस्त को ये होने जा रहा है और डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होगा. और भी जानकारी कुछ दिनों में आपको हम देंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल. आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे रिदम एंड रोमांस, प्यारे गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए रहेंगे. तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे, कल भी आपको देना है. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट. गुड नाइट एवरीवन.

0: Night Flight on Hum.
1: Tere kit dhoom, tere kit dhoom, tere kit.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd जून तक सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी. टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय निसान्स अप टू 10 ईयर वारंटी. T's and C's अप्लाई.

ले लो इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन थप्पड़ मारो

0: हे, बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल रहा है।

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दू क्या?

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: रबी रे रली

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
4: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
3: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
5: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर too old for gold.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: ट्राइविजन एंटरटेनमेंट एंड आशिक होम्स लिमिटेड इन एसोसिएशन विद मेगा फाइनेंस मॉर्गेजेस एंड मोर एंड पीस ऑफ माइंड इंश्योरेंस प्रेजेंट्स द ग्रेट इंडियन कॉमेडी नाइट फीचरिंग द कपिल शर्मा शो स्टार्स कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज।
2: वाह वाह माशाल्लाह क्या बात है, कितना अच्छा डांस करते, तुम गोविंदा का कुछ लगता है क्या?
1: सैटरडे 18th जुलाई 7 PM एट विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz।
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
3: नाइट फ्लाइट ऑन हम।
4: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा।
5: Oh bhai phu, fugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, fugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, fugadi phu, you like me.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है. नाइट फ्लाइट.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
7: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
10: Playing Bollywood's biggest

सर, आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजयी बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में।

0: show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।

0: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
1: Indelible Homes, your building expert.
2: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open हैं for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमचे Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
3: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 6. Alarm bells are ringing about cuts to the family and sexual violence workforce. Consultation has begun on the axing of 26 roles from the centre, driving the government response to the issue. Dwayne Leo from the PSA says it's devastating.
5: This is not about efficiency, it's just strategic retreat dressed up as a restructure.
4: A collapsed rail bridge in Canterbury has sparked warnings about hidden risks across the network. An investigation found KiwiRail knew that Angitata River Bridge was vulnerable to flooding. TAKE Chief Investigator Louise Cook says it's a wake-up call.
6: There weren't really clear bridge-specific controls to match that risk.
4: A key transport link between the West Coast and Wellington has been given a lifeline for now. Origin Air Flights have been given funding to continue operations until August. But Buller Mayor Chris Russell says a long-term solution is still needed.
7: The flights have been cut back from 3 to 2 per week in the interim, but it would be good to see those flights return to at least 3 per week.
4: At least 11 children have reportedly been killed in Pakistani airstrikes against Afghanistan. Officials say they took out 26 Taliban fighters as well by targeting hideouts and safe havens. In sport, Joe Root has been named interim England captain for next week's second cricket test against the Black Caps. Regular skipper Ben Stokes and bowler Gus Atkinson have been dropped for breaking team curfew in a nightclub incident after the first test win at Lords. And Crusaders prop Fletcher Newell is back from a knee injury for tomorrow's Super Rugby semi-final against the Chiefs in Hamilton.
8: Yeah, feeling really confident, and it got for a whole week of training, so it should be good.
3: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
9: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
10: Suchit kiya jata hai ki Mumbai, India ke swargiye Dheeraj Lal ki patni, yani Nocho ke Gunesh Botadra, Amit Botadra, Jay Shri Ravani, aur Brisbane, Australia ki Hina Desai ki maa, नोचो की सरला बोताड्रा की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 2 बजे नोचो मेमोरियल पार्क 235 स्नैपर ओक रोड में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-181-9161 पर संपर्क कर सकते हैं. मुंबई इंडिया के स्वर्गीय धीरज लाल की पत्नी यानी नोचो के भुवनेश बोताड्रा, अमित बोताड्रा, जयश्री रवानी और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की हीना देसाई की मां नोचो की सरला बोताड्रा की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार आज 2 बजे नोचो मेमोरियल पार्क 235 स्नैपर ओक रोड में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-181-9161 पर संपर्क कर सकते हैं.
9: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
3: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: Almost 5 degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 7 degrees rahega. Aaj ek bar phir mausam saaf aur suhana rahega. Sunrise 7:29 AM par aur aaj ka sunset sham 5:12 par hone ko hai.
3: Breakfast show with Vijay and Pooja,
12: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
3: Breakfast catch up.
10: 4:30 हो रहे हैं, 6:00। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज बृहस्पतिवार है, 11 तारीख जून। आज की ये सुबह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
13: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
10: अ वेरी चिली स्टार्ट टू द डे, बहुत ठंड है सेंट्रल ऑकलैंड में, तो अभी अराउंड 5 degrees, लेस देन 5 degrees आप फील कर रहे हैं। और अगर आप आपकी फेवरेट जगह पर हैं फिलहाल,
13: आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट जगह,
10: हाँ,
13: ओह अच्छा, आई नो व्हिच प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट,
10: अराउंड हुनवा, अभी इट्स 0.5 degrees,
13: अच्छा
10: 0.5 degrees वहाँ आप फील कर रहे हैं। और अगर वैताकरे में इट्स 1.1 degree, और उसके अलावा मेनुकाउ इट्स अराउंड 4.7 degrees जो टेम्परेचर अभी आप फील कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हैमिल्टन में आप हैं राइट नाउ -1.5 degrees,
13: वाओ वेरी नाइस,
10: हैमिल्टन इज -1.5 degrees। और अगर आप सेंट्रल क्राइस्टचर्च में हैं -2.1 degrees, That's what the temperature looks like. अगर आप अलग अलग जगह पर हैं, Dunedin में it's 7.5 degrees, much better than the rest of the country.
13: Definitely, winter is here. हम ये at least ये अंदाज़ा में तभी लग चुका था कि इस साल का winter कैसा रहेगा, जब इस साल मई महीने में ही we started feeling the chill, you know, कि इतनी सर्दी है भाई, इतनी ठंडी है, यही हो रहा था। और ऐसे में दैट्स द वेदर वी गोना फील इन जून जुलाई, नॉर्मली जुलाई जब आता है तब जाकर ऐसी ठंडी जो ही आती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है ना, अभी जून से ही शुरू हो गया, सो इमेजिन व्हाट विल जुलाई बी लाइक। बट एनीवेज, जो भी है,
10: यू नो माउंट कुक में इट्स ऑलमोस्ट -4 degrees राइट नाउ।
13: ऑलमोस्ट -4 का क्या मतलब होता है?
10: -3.8,
13: अच्छा वैसे, ओके वेरी नाइस यार। सो देयर यू गो, विंटर इज डेफिनेटली हियर, इट्स नॉट जस्ट ऑफिशियली जो जून शुरू होते ही हो जाता है, बट जो टेम्परेचर्स हैं दे आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स आप फील भी कर सकते हैं, ज्यादा तो बताने की जरूरत है भी नहीं। बट एज वी ऑलवेज से, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक योर इम्यून बूस्टर शॉट्स एज वेल, जो आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट आज लेट इन द प्रोग्राम हम आपको एक सिंपल सा ऐसा इम्यून बूस्टर के बारे में बताएंगे भी, दैट यू कैन प्रिपेयर एट होम एंड टेक इट, क्योंकि आपको पता है कि विंटर के दौरान माई गॉड सबकी तबीयत कैसे फटाफट खराब होती रहती है, एंड इट्स वेरी ईजिली दूसरे को भी वो चीज़ पकड़ लेती है, फिर उनकी भी तबीयत खराब होती है। सो टेक इट इन द हाउस, ताकि इस पूरे सर्दी के सीजन में आप यू नो अच्छे से यू नो हेल्थी वेज, नो बीमारी एंड ऑल जो विंटर है ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
10: तो अब शुरू कर रहे हैं आज का ये बहुत ही खूबसूरत सफर हम आपके लिए, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM, और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।

0: Sunnyside Up.
1: सुलामिने टू हैं छह बजकर आज अगर देखें जिंदगी बड़ी तेजी से भागती निकलती जा रही है एंड वी ऑफन क्या होता है कि हम स्ट्रगल करते हैं टू कीप अप विद द टाइम और अपनी सारी जो जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, थकावट हो जाती है। यही हाल एक जूनियर कॉपी राइटर का था। एक बहुत ही फास्ट पेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो काम कर रहे थे, एकदम लगे हुए थे, भाग रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ एंड अचानक अपने डेस्क पर शी एक्सीडेंटली नॉक्ड एक बहुत ही हैवी सेरेमिक मग था
2: उनके डेस्क पे, चाय वगैरह कॉफी वगैरह पीते हैं
1: एंड उसने अपने डेस्क से उसको गलती से नीचे गिरा दिया एंड इट जस्ट शैटर्ड टू पीसेस। ये सिर्फ मग नहीं था, इट वॉज अ डीप सेंटिमेंटल पीस हैंडमेड बाय हर ग्रैंडमदर जो रिसेंटली गुजर गई थी एंड जब उसने देखा कि उनका हाथ लगकर ये गिर गया एंड शी वॉज जस्ट डेवस्टेटेड एंड देन अब साफ तो करना था, शी वॉज ट्राइंग टू स्वीप अप द पीसेस और दूसरी तरफ सारे लोग देख रहे थे। उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, उनको जाना जाता था दैट ही इज रियली ब्लंट, नो नॉनसेंस, जो भी होगा
2: सीधा सीधा बोल दे,
1: एकदम अपफ्रंट जो है कि बोलते थे, हु यूजुअली टॉक्ड अबाउट डेडलाइंस ओनली एंड दैट पर्सन एक्चुअली वॉक्ड ओवर जो सबसे बड़ा टूटा हुआ टुकड़ा था उसे उठाया और जेब में रख लिया। Instead of telling her to clean it up and get back to work, he returned after lunch with a small epoxy kit mixed with gold powder. वो जाकर उसके डेस्क पर बैठे 20 मिनट्स तक और अपनी एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग उन्होंने मिस की, helping her piece the ceramic back together using the traditional kitsugi method. उन्होंने
2: kitsugi क्या होता है?
1: वो एक तरीका होता है ना जिसके जरिए चीजों को जोड़ा जाता है।
2: okay.
1: तो उसके जरिए जो क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग मिस की और ही वेंट एंड बॉट एवरीथिंग और उसके बाद लड़की के साथ मिलकर वो सारा का सारा जो टुकड़ा था एक साथ मिलकर धीरे धीरे ही हेल्प्ड हर पुट थिंग्स टुगेदर और उसके बाद उन्होंने बताया लड़की से कहा, थिंग्स दैट हैव अ हिस्ट्री आर ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग when they are broken and put back together. take rest of the afternoon off.
2: That is so sweet. Who thought ki jinke personality ke bare mein logo ka ye andaaza hai ki ye bade strict hai, bade straightforward hai, aur basically people start thinking ki they don't think from their heart. They are more like practical thinkers hote wo na, emotional ho ke cheez ke bare mein nahi sochte wo. wahi shakhs unke saath baith kar उनके लिए जो बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करती है जो चीज़ उसको फिक्स कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको ये भी बता रहे हैं कि आप बाकी का दिन छुट्टी ले लो, जाओ घर। इमेजिन
1: और वो मग जो है उसे एक साथ जोड़ने में भी मे बी इट डिड नॉट कम टुगेदर एज
2: द वे इट वाज,
1: इट वाज, लेकिन द गर्ल हैड that memory back na, instead of throwing it away, फेंकने के बजाय उनके पास कुछ तो था उनकी दादी की।
2: Exactly, and फिर वो भी एक चीज है कि it's something that people who have experienced such things वही understand कर सकते हैं कि कभी कभी कोई आपकी लाइफ में जो बहुत जरूरी हो और वो अगर आपको कोई तोहफा दे तो उससे आपका लगाव कितना होता है, कैसा होता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा हो जाए कि वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है तो आपकी भावनाएं उस पर्टिकुलर चीज के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है और जब उस चीज को किसी तरह से कोई नुकसान हो या कुछ यू नो टूट फूट जाए तो उसके बाद आपकी क्या हालत होती है तो वो भी आप समझ सकते हैं। इन सच केस इफ समवन इज देयर आउट देयर यू नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ट्राइंग टू हेल्प यू फील उस इमोशन को फील करते हुए इसे डील करने में, तो इट्स अ बिग डील।
1: तो ऐसी कहानियां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: हे देखो हम आ गए।
5: लेडीज एंड
0: gentlemen.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
4: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan the.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
5: Nissan Big Deals. Sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat. Plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

0: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colours, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Save up to 70% from tomorrow in Dansk Møbler's Ultimate Warehouse Sale. Massive savings of up to 70%. Only for 3 days and only at Dansk Møbler. Hunters Park Drive, Three Kings.
4: Dansk Møbler. Furniture for living.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands nahi hai.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
8: सुबह के मुख्य समाचारों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस आज ईरान पर फिर से अटैक्स शुरू करेगा, जिसके पीछे उन्होंने वो खत्म करने की टॉक्स में धीमी प्रोग्रेस और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने का हवाला दिया है। ट्रंप के मुताबिक डील के लिए ईरान को बस एक पेपर साइन करना है, जबकि इस गैप को भरने के लिए एक कतारी डेलीगेशन तेहरान में ईरानियन नेगोशिएटर्स से मिल रहा है। भारत ने ओमान के कोस्ट के पास एक कमर्शियल वेसल पर हुए अटैक की कड़ी निंदा की है, जिसमें सवार 24 इंडियन क्रू मेंबर्स में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 3 अभी भी मिसिंग हैं। इस बड़े डेवलपमेंट में फॉरेन मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी नागराज नायडू ने यूएस के टॉप डिप्लोमेट को समन करके इस अटैक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जारी किया है। न्यू दिल्ली ने इस रीजन में शिपिंग पर हो रहे हमलों को बहुत चिंताजनक बताया है और इसे पूरी तरह से चल रहे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट कहा है। फिजी में गवर्नमेंट एमपी और नेशनल फेडरेशन पार्टी लीडर प्रोफेसर बिमान प्रसाद ने माना कि सरकार और सिविल सर्विस के साइज को बेहतर मैनेज किया जा सकता था और अब इसका रिव्यू करने का सही वक्त है। हालांकि अभी उनका मेन फोकस इकोनॉमी चलाने और जॉब्स बचाने पर है। उन्होंने बताया कि फिजी पिछले 30 से 40 साल से फिस्कल मैनेजमेंट के चैलेंजेस झेल रहा है और हालांकि डेट टू जीडीपी रेशियो पिछले 3 साल में कम हुआ था, ग्लोबल सर्कमस्टांसिस की वजह से इस साल इसके बढ़ने की आशंका है। प्रसाद ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले रिफॉर्म्स पर जोर दिया, जबकि दूसरी तरफ फॉर्मर इकोनॉमी मिनिस्टर अय्याज सैयद खय्यूम ने एक पैनल में सरकार के ऑपरेटिंग खर्चे कम करने और आम और मार्जिनलाइज्ड फिजियन को टारगेटेड रिलीफ देने की सलाह दी है। आज सुबह कुछ बहुत ही जबरदस्त इंटरनेशनल फुटबॉल फ्रेंडलीज खेले जाएंगे। सुबह 7:45 पोर्चुगल नाइजीरिया से खेलेगा, 8:00 इंग्लैंड और कोस्टारिका का मैच खेला जाएगा, दिन में 12:00 एक और जबरदस्त मैच बोलिविया और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
5: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड।
9: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
10: मैं लाऊं अपना ए गेम।
5: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: You know, Sachet Tandon Parampara or Nikita Gandhi, ये ऐसे कलाकार हैं शायद जिनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता, बट दे आर ऑल अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट.
1: आई थिंक जब से इन्होंने अपना इंडिविजुअल म्यूजिक जो है ये भी करना शुरू किया है, लाइक दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड देन रिलीजिंग इट खुद का म्यूजिक ऑन द यूट्यूब चैनल इज वेल, इट इज रियली वर्क्ड वंडर्स फॉर देम. और ऐसे बहुत से गाने हैं जो इन्होंने कंपोज किए हैं या गाए हैं विच हैज बीन सो पॉपुलर, लेकिन लोगों को शायद तब तक इनके बारे में नहीं पता चला जब तक कि वो पर्टिकुलर गाना जो पॉपुलर ना हुआ हो.
0: इवन आई एब्सोल्युटली लव जैस्मिन सैंडलेस.
1: हाँ, वो मुझे भी बहुत
0: पसंद उनके है. गाने जो है आई जस्ट यू नो इवन बहुत साल पहले वन ऑफ हर सॉन्ग्स something about a party, koi ek song tha that she sang that I loved.
1: Okay, yeah. That's interesting. But mujhe na unki gaayaki ke saath saath I really love her personality. She's such a lively person, you know. Bahut se interviews unke maine dekhe, unko Hindi utni achhi nahi aati hai, but she sings so beautifully and now she's even trying to speak in Hindi. And
0: where is she from? Aapko pata hai?
1: I think she's from, I can find out, but I think she's from America or Canada, I don't know.
0: Okay.
1: हाँ, but I'll try and find out. I can let you know. हाँ,
0: जब तक आप पता लगाती तब तक मैं आपको बताऊं कि जो पहला Fortune India Interbrand Most Valuable Celebrities लिस्ट है इंडिया के, ये रिलीज हो चुका है. और इस लिस्ट में मालूम है सबसे वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन है?
1: कौन है?
0: विराट कोहली.
1: ओह, really?
0: विराट कोहली का ब्रांड इसका वैल्यू 3,542 करोड़ बताया गया है.
1: ये nice.
0: लिस्ट रिलीज किया गया है फॉर्च्यून इंडिया द्वारा इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड, जो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूज को मेजर करता है. 10 मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटीज के लिस्ट में अगर देखें, विराट कोहली, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस, MS धोनी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन.
1: वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट आई वुड से. और विराट कोहली तो भाई हर ओर बस छाए हुए हैं ये.
0: या तो ये इनका शाहरुख खान जो है इन ये सेकंड है. इनका ब्रांड वैल्यू 3017 करोड़ बताया गया है. प्रियंका चोपड़ा जोनस 2507 करोड़ इनका वैल्यू. MS धोनी 2141 करोड़. रणवीर सिंह 2077 करोड़. अक्षय कुमार 2064 करोड़. अमिताभ बच्चन 1933 करोड़. सचिन तेंदुलकर 1676 करोड़. आलिया भट्ट शी इज द ओनली वुमन इन द टॉप 10 चार्ट अपार्ट फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा जोनस, नाइन्थ पर हैं 1606 करोड़. नंबर 10 पर अल्लू अर्जुन 1522 करोड़. इनका ब्रांड वैल्यू जो है ये मेजर किया गया है.
1: वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई मस्ट से कि शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इज फ्रॉम द 70s जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. शाहरुख खान इज फ्रॉम द 90s जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू सी इन दिस लिस्ट अपार्ट फ्रॉम द जो स्पोर्ट्स पीपल है उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट एनी वन हु बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री उन्होंने कहीं ना कहीं 2000 में ही शुरुआत की है. बट दीज पीपल जो 70s या 90s से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, दे स्टिल सो रेलेवेंट कि उनका ब्रांड वैल्यू जो है ये इतना बड़ा है.
0: अक्षय कुमार
1: आल्सो, या दे पार्ट ऑफ दिस टॉप 10 लिस्ट, यू नो. एंड शाहरुख खान बीइंग ऑन सेकंड पोजीशन, इट्स डेफिनेटली समथिंग वर्थ यू नो वर्थ की ही इज शाहरुख खान, ही इज दैट बिग कि इतने सालों बाद भी हिज ब्रांड वैल्यू इज सो बिग. सो देयर यू गो. और भी इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम बॉलीवुड. बाय द वे, धमाल 4, मुझे धमाल जो है जब आई थी बहुत पसंद आई थी. एंड आई थिंक धमाल आने के बाद जावेद जाफरी एंड अरशद वारसी आदि मानव, इनका जो कैरेक्टर है ये बहुत पॉपुलर हुआ था. दीज टू ब्रदर्स वर एब्सोल्युटली लव्ड. एंड उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए. बट आई थिंक जो फर्स्ट धमाल थी वो बेस्ट थी मेरे लिए.
0: अच्छा.
1: और हाँ, उसके बाद अभी धमाल 4 आने वाली है. सो टोटल धमाल आई थी लास्ट जिसमें माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर एंड ऑल वर देयर. अब टोटल धमाल जो है ये के बाद धमाल 4 आने वाली है. इसका रिलीज डेट जो है कंफर्म हो चुका है जिससे 10th ऑफ जुलाई को रिलीज किया जाएगा अगले महीने.
0: नॉट फार अवे.
1: या संजय मिश्रा और अजय देवगन भी है इसमें बाय द वे, जिनके साथ रवि किशन जो है ये भी दिखने वाले हैं. एंड अब धमाल से हटकर, कॉमेडी से हटकर, YRF ki spy ki duniya mein agar hum jaye to YRF ka spy universe jahan par they have spoken about a lot of movies jaise wo hai aur ek tha tiger hai aur pathan ka franchise hai aur uske sath ab alpha ये भी जुड़ जाएगा एंड अल्फा हैड बीन अनाउंस्ड काफी सालों पहले जहां पर अल्फा के बारे में बात हुई थी आलिया भट्ट इसमें दिखेंगी फॉर श्योर लेकिन इनके साथ शार्वरी वाघ जो है ये भी नजर आने वाली है कल इसका एक 2 मिनट का टीजर जो है ये रिलीज हुआ और इसमें बॉबी डियोल अपेरेंटली ये भी दिखे हैं एंड ही इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं बताना नहीं चाहूंगी आप जाकर देख लो टीजर एंड देन यू विल नो और अपेरेंटली अल्फा इज रिलीजिंग ऑन द 3rd of July
2: For show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Traffic.
5: See Thrive at Field Days.
6: Good morning, cloudy patches and a high of 16. On the northern, 48 from Silverdale with heavy patches from Snow Planet to Oniwa. It's taking 27 from Constellation Drive. On the northwestern, it's slow at St Luke's, 29 from Massey. On the southern, it's 29 from Monaco, 56 from Drury. And the southwestern is free-flowing at the moment. The run to the airport is taking 25 minutes.
5: Thrive streamlines admin for Kiwi businesses who want to run smarter, faster and more efficiently.
7: Professional Financials has साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
9: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
10: It's discount day at Gull today from 7 a.m. Fill up and save a whopping 16 cents off per litre. 16 cents? But get in quick because the birds are circling and hungry for savings. Gull. Fuel savings for all Kiwis. Terms and conditions apply.
11: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly bogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
12: True Midas! Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower!

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 18 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7 बजने में और 18 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट. बॉबी मान जी हर सुबह की तरह आज भी हमें याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. राम राम जय श्री कृष्ण. हैप्पी थर्सडे एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर मटा मटा आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. मैंडी थैंक यू सो मच आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. विमलेश और प्रिया आपने भी सुबह सुबह हमें याद किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस दिन की शुभकामनाएं आपको. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. होप You guys have an awesome day ahead. Enjoy Komal. You also have a wonderful, great day.
3: तो चलिए आप सबके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. सुबह सुबह समय निकाल कर हमें विश करने के लिए भी थैंक यू सो मच. एंड जस्ट अ वाइल अगो हम जैस्मिन सैंडल्स के बारे में बातें कर रहे थे तो आपने पूछा था कि ये कहाँ की है ओरिजिनली. तो मैंने बोला था शी माइट बी फ्रॉम कनाडा अमेरिका पर पता नहीं था एग्जैक्टली कहाँ. सो अपेरेंटली इनकी पैदाइश है जलंधर की इंडिया की.
2: okay.
3: लेकिन ये पली बड़ी है कैलिफोर्निया में अमेरिका में. सो देयर यू गो दैट्स हाउ शी केम फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया. और अमेरिकन सिटीजनशिप है बाय द वे इनके पास और इंडिया में ये फिलहाल काम कर रही है एंड शी इज बीइंग लव्ड बाय एवरीवन फॉर म्यूजिक. अभी फिलहाल के लिए एक सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये जो सवाल है इसका जवाब आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर. इट्स वेरी इजी. बस देखना ये है कि आप में से कितने लोग इसका सही सही जवाब जो है ये दे पाते हैं. सवाल हमारा ये है कि ऐसा क्या है जो हमेशा आपके आगे होता है या आपसे आगे होता है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. व्हाट इज ऑलवेज अहेड ऑफ यू बट कैन नेवर बी सीन.
2: व्हाट इज अहेड ऑफ अस बट वी कैन नॉट सी इट.
3: हाँ, ऐसा क्या है जो आपके आगे होता है आपके सामने होता है या आपसे आगे होता है एंड आप फिर भी इसे देख नहीं सकते. ऐसा क्या है इसे इनफैक्ट कोई दुनिया में कोई नहीं देख सकता बेसिकली. तो कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमें दिखता है बट सबको नहीं. आई डोंट नो अबाउट दैट बट लेट्स सी इफ वी कैन गिव द करेक्ट आंसर. BF स्पेस आपका आंसर आपका नाम 5599 पे फटाफट हमारे पास भेज दो.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Join Skinny, get $30 happier.
3: Good morning, cloudy patches and a high of 16. On the northern, 48 from Silverdale with heavy patches from Snow Planet to Onewa. It's taking 27 from Constellation Drive. On the northwestern, it's slow at St Luke's, 29 from Massey. On the southern, it's 29 from Monaco, 56 from Drury. And the southwestern is free-flowing at the moment. The run to the airport is taking 25 minutes.
2: Switch to Skinny and get $30 credit. Available on $27 plus plans. Terms apply.
4: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
5: Thanks, driver.
4: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
6: Thank you, driver.
4: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
5: Thank you, driver.
4: And 50% off for community service card holders.
7: Thanks, driver.
4: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fare Discounts.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
9: विंटर के लिए तैयार हो जाओ विद माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन विद ग्रेट डील्स अक्रॉस हीटिंग आउटडोर गेयर और होम एसेंशियल्स प्लस स्पेंड $20 इन स्टोर एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन 5 grand सिर्फ जून 30th तक T's and C's apply.
10: The temperatures are falling, and for today only, so are the prices at Barisco's one-day price drop. All Zip electric blankets, 60% off, plus

0: अभी तो सिर्फ 9 ही मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। 9 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और आज का हमारा व्हाट्स योर टेक अभी से ही हम आपको बता रहे हैं। 8 बजे के बाद हालांकि ये होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: ओके, आई थिंक कोई तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड है। सो व्हाट्स योर टेक बेसिकली जहां पर हम आपको एक टॉपिक के बारे में बताते हैं एंड देन वी आस्क फॉर योर व्यूज ऑन दैट टॉपिक। तो ये आपके लिए रहेगा जिसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना है। फिलहाल हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है जिसके आंसर्स आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर। क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा है, हमने पूछा है कि ऐसा क्या है जो आपके सामने है, आपसे आगे है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। अपने आंसर्स आप हमारे पास भेज सकते हैं। ये 6338 इन्होंने टाइम लिखकर भेजा है, तो टाइम आई डोंट रियली नो अबाउट दैट टाइम। हाँ, फ्यूचर में टाइम क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर देखना आई डोंट नो, आई थिंक ये नहीं है राइट आंसर फॉर दिस।
0: एनीवेज, रोनल हैं, प्रीतेश हैं, गोविंद हैं, अपने आंसर्स भेजे। गोविंद ने तो दो दो जवाब भेजे, एक सीरियस वाला और एक
1: मजाक
0: वाला। उन्होंने कहा है कि बीवी और बीवी की सोच हमारे सामने होती है, बीवी की सोच दिखती नहीं है भाई,
1: किसी को नहीं दिख सकती, एंड दैट्स द गुड पार्ट। राइट नाउ आप अपने अपने आंसर्स हमारे पास भेज सकते हैं 7 बजे वाले खबरों के बाद। विल सी कि आप में से कितने लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं। सवाल एक बार फिर से, व्हाट इज ऑलवेज अहेड ऑफ यू बट कैन नेवर बी सीन, ऐसा क्या है जो आपके बिल्कुल सामने है, आपसे आगे है, लेकिन आप कभी भी इसे देख नहीं सकते।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 5 degrees सेंट्रल ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं और अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर्स हैं. इट्स वेरी वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग. आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 7 डिग्रीज होने वाला है. अ फाइन डे ऑकलैंड के लिए. सनराइज 7:29 AM पर, सनसेट 5:12 PM पर होगा.
0: विद विजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
0: Morning Madness.
1: 3 मिनट हुए हैं 7:07. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस. अगर आप कुछ देर से हमारे साथ शामिल हुए हैं ऑन द शो, आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में. थैंक यू फॉर योर लवली कंपनी 104.2 FM पर या फिर रोवा पर.
3: थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके समय के लिए. और पिछले घंटे जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ इट्स टाइम टू हैव अ लुक कि आप में से कितने लोगों ने इसके सही और कितने लोगों ने गलत आंसर्स जो है ये भेजे हैं. तो सवाल हमने पूछा था कि ऐसा क्या है दैट इज ऑलवेज अहेड ऑफ यू बट कैन नेवर बी सीन. आपसे आगे है, आपके आगे है पर आप कभी उसे देख नहीं सकते. सो इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं जरूर हमारे पास. गोविंद के बाद मुनेश ने अपना जवाब भेजा है नाम यानी नेम लिखकर. टैश का जवाब आया है और नंदिनी ने एक जवाब दिया और किसी और ने जवाब दिया लेकिन नाम नहीं लिखा है. सो नोज ये नंदिनी और साथ में किसी और ने भी कहा है और बाकी सबका एक ही जवाब है. इन्होंने कहा है भविष्य, फ्यूचर. सो दैट इज द करेक्ट आंसर.
1: ओके,
3: फ्यूचर बिल्कुल सामने होता है, आगे होता है, हमसे आगे होता है लेकिन हम देख थोड़ी ना सकते. फिर मैंने देखो बाद बाद में ये बात भी कही थी कि कई लोग ऐसा क्लेम भी करते कि वो देख सकते हैं.
1: हाँ वो भी है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि
3: भविष्य देख
1: कुछ सकते लोग तो बता भी देते हैं कि
3: आपके भविष्य में क्या होगा.
1: हाँ एग्जैक्टली. और वैसे फीफा वर्ल्ड कप ये भी शुरू होने को है. बहुत सारी चीज़ें जो है ये हो रही हैं और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं ये भी आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड टीमों के बारे में डिटेल्स वगैरह जो है ये भी हम देते रहेंगे. अपडेट्स वगैरह जो है ये बारी बारी से आपके लिए होंगी. इसी घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे भी हम विश करने वाले हैं. अगर मैसेजेस नहीं भेजे हैं आपने, अभी भी टाइम है आपके पास.
3: बिल्कुल, आप हमारे पास 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट वुड बी लाइक द इजीएस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे आपका मैसेज हम तक पहुंच जाए. और जैसे ही आपका मैसेज हमें मिल जाएगा तो वैसे ही हम आपको जब विश करने का समय होगा तो विश करेंगे. रिमेम्बर 5599 इस पर आप अपने मैसेजेस हमें जरूर सेंड कर सकते हैं. बाय द वे लेटर दिस आवर हम आपके लिए आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म ये भी लेकर आने वाले हैं. आज एक बार फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है. कल आई वॉज वेरी डाउटफुल एंड बहुत से लोगों ने फटाफट अपने आंसर्स भेज दिए थे. जॉन सीना दैट वॉज द करेक्ट आंसर. दैट्स वाई आज हम एक नई आवाज लेकर आए हैं, एक नई सेलिब्रिटी को लेकर आए हैं. पर क्या आप इनकी आवाज पहचान पाएंगे या नहीं ये सोचने वाली बात है. सो लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट कि ये जो सेलिब्रिटी है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में ये कौन है. एंड इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम विद अस हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि थोड़े देर बाद आपके लिए हम इनकी आवाज जरूर लेकर आएंगे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: हर सुबह आप इंतजार करते हैं अपने राशि वाइब्स का. सो हियर इट इज. मेष यानी एरीज, आज कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है. मैरिड लाइफ कपल अगर आप हैं तो आपका बहुत ही सुखद होगा. आज मेहनत का फल मिलेगा. थकावट कुछ महसूस करेंगे लेकिन पैसे भी आज आपको मिलेंगे, इससे आप काफी खुश होंगे.
3: और इसके अलावा आज वृष ने टोरस आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है फुल ऑफ सरप्राइजेस. तैयार रहिएगा टू बी सरप्राइज्ड. तैयार रहिएगा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए जो आपके होश उड़ा दे बेसिकली. और साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा. भूले बिसरे साथियों से आज जो मुलाकात होगी ये आपको हमेशा याद रहेगी, बिकॉज यू स्पेंड सम अमेजिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड यूड यू नो रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर डे.
2: मिथुन यानी जेमिनी, ट्रेवल आपका अच्छा जाएगा, कोई रिस्क ना ले. आज खुद के मेहनत से ही आपको उन्नति के कुछ मौके मिलेंगे, प्लान्स आपके पूरे होंगे.
3: एंड कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, चीजों को संभाल कर रखे, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो और आर्ग्यूमेंट से जितना आप दूर रहे उतना आपके लिए आज के लिए अच्छा है. अपनी चीजों को आप अगर संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, बिकॉज अगर ये गुम हो गए या चोरी हो गए तो इससे आपका नुकसान भी है और आपको परेशानी भी होगी.
2: सिंह यानी लियो, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, इनकम बढ़ेगा, घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए. और आज अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो अपने एम्प्लॉयज पर खास नजर बनाए रखें. फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बस ठीक ठाक ही रहेगा आज.
3: ओके. और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज कन्या यानी वर्गो आपके लिए बताया गया है कि नौकरी के मामले में आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे, इनफैक्ट हैप्पी रहेंगे. पूरा दिन आज आपको बहुत सारा हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. और जीवन साथी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए. आज के दिन कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे, किसी तरह की मुश्किल में झंझट में आप ना पड़े, ये सलाह आज आपको दी जा रही है.
2: तुला यानी लिब्रा, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, समझदारी से अगर आप काम करते हैं, अच्छी तरह से प्रोज एंड कॉन्स जो है उस पर ध्यान देते हैं तो सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं. ट्रेवल आज आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए बेहतर होगा उसे आप पोस्टपोन कर दें. बिजनेस से आपको फायदा होगा.
3: वृश्चिक ने की स्कॉर्पियो, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा बीतेगा. इनफैक्ट कुछ ऐसे डिसीजंस आप और आपके जो साथी हैं ये मिलकर लेंगे जो भविष्य में आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है. और पॉजिटिव विचारों से आज आपका मन भरा रहेगा एंड दीज पॉजिटिव थॉट्स आज आपको पूरा दिन अच्छा अच्छा फील कराएंगे. वैसे आपके लिए ये कहा गया है कि अभी फिलहाल जो यू नो टाइम है आपके लिए ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है इन इन इन इन अ वे, जहाँ पर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, पैसे से कुछ डील करने के बारे में सोच रहे हैं, सो हो सकता है यू वांट टू गेट दिस डन एज क्विकली एज पॉसिबल. पर सलाह तो यही है कि फिलहाल के लिए अगर आप ये ना करें इसमें आपका फायदा है.
2: धन यानी सेजिटेरियस, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, फाइनेंशियली आप प्रोग्रेस करेंगे, अचानक कहीं से पैसे आज आपको मिल सकते हैं, हो सके किसी तरह का रिस्क ना लें, बच्चों से आज काफी मदद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए कहा गया है, प्रसन्नता रहेगी हर ओर और आप आज ऐसा एक यू नो प्रस्ताव आपको मिलेगा जो पूरे जीवन भर आपको इसका फायदा होगा, आपको इससे खुशी ही खुशी जो है ये महसूस होगी. और दूसरी ओर आपके लिए कहा गया है पिक्की, परिवार की समस्याओं को अनदेखा ना करें क्योंकि जितना आप इसे अनदेखा करेंगे वो समय के साथ उतना बड़ा होता जाएगा.
2: और उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, बिजनेस अच्छा चलेगा, आज पेशेंस के साथ अपने काम को करें तो सक्सेस मिलेगा, किसी एंटरटेनिंग इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं, क्रिएटिव कामों में आज आपको सक्सेस मिलेगा.
3: मीन यानी पाइसेस आपके लिए कहा गया है कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और अगर कोई भी फैसला आप ले रहे हैं एज अ स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड तो थोड़ा सलाह मशवरा कर ले अपने आसपास के लोगों से या फिर समवन यू ट्रस्ट इन रिगार्ड्स विद कि वो आपको राइट डिसीजन जो है ये देंगे व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ. तो इन सारी चीज़ों पर आपको बात करनी ज़रूरी है आज के लिए. और साथ में आपके लिए कहा गया है कि बस अपनी बातों पर, बात करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना आप शुरू कर दें क्योंकि अगर आप जिस तरीके से बात करते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छे खासे रिश्ते आपके जो है ये आज बिगड़ सकते हैं.
2: So this way your Rashi Vibes. थोड़ी देर बाद celebrity alarm खेलेंगे.
0: Bollywood का असली blockbuster.
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: Playing Bollywood's biggest hits. keep calm because Punjabi swag is on.
4: Hey, hey.

0: Streaming on Rover.
1: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobile when you want it. Even on game day. Choose your discount day each week only in the Mobile NZ app. Let's go. For a limited time only, T&Cs apply.
2: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
7: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan. Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
8: Show with Vijay and Pooja,
9: brought to you by Fortune.

0: कल सेलिब्रिटी अलार्म में आपको पता नहीं था कि कौन है, और हमको लगा था कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट दो तीन लोगों ने ही गलत जवाब दिए थे। ऑल द रेस्ट ऑफ द आंसर्स दैट केम थ्रू यस्टरडे वे इनफैक्ट करेक्ट। सो अब वक्त है कि आज जो है, वैसे आपको एनी आइडिया कल कौन थे?
1: ऑफ कोर्स जब मैसेजेस वगैरह जो है कि आए, तो लोगों ने ज्यादातर यही कहा कि इट वाज क्या नाम है उनका, अब जॉन सीना एंड क्रिस हेम्सवर्थ, ये दो जवाब जो है ये ज्यादा आए थे। बट आई थिंक जॉन सीना वाज द मोस्ट नंबर ऑफ आंसर्स जो हमारे पास लोगों ने भेजा था। बट एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया कि ये कौन हो सकते हैं। मुझे थोड़ी डिफिकल्टी जरूर हुई, एंड बाद में जब लोगों ने अपने अपने आंसर्स भेजने शुरू किए, एंड व्हाइल वी वर डूइंग द शो एंड आई वाज रीडिंग द मैसेजेस, तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज तो मैं मार खा गई, एंड वही हुआ।
0: तो कल जॉन सीना थे, बताइए आज के हमारे ये सेलिब्रिटी कौन है?
2: मेरा बस यही मैसेज है कि पहले तो अपने आप की सुनो कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या करना चाहता हूँ। आज के टाइम में बिल्कुल मुझे पता है कि जो मोबाइल आ गया है वो बहुत इजी कर दी है लाइफ।
0: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी। एनी
1: आईडिया? आई हैव नो आईडिया ये कौन है आज। फिर आप कहाँ से ढूंढ के लाए इनको यार?
0: बहुत दूर से मैं इनको ढूंढ के लेकर आया, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया।
1: वो पता चल गया। और आई थिंक जो भी ये बोल रहे थे, जितना ये बोल रहे थे उस हिसाब से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बिलोंग्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट नो कौन है ये।
0: या दिस पर्सन इज फ्रॉम द स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी।
1: ओके, देन उतना मेरे को पता चला द वे ही वाज स्पीकिंग, बट मुझे नहीं पता ये कौन है।
0: तो अच्छी तरह से ये आवाज एक बार फिर आप सुन लें।
2: मेरा बस यही मैसेज है कि पहले तो अपने आप की सुनो कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या करना चाहता हूँ। आज के टाइम में बिल्कुल मुझे पता है कि जो मोबाइल आ गया है वो बहुत इजी कर दी है लाइफ।
0: तो अब अपना जवाब हमारे पास आप भेजिए, सबसे पहले BF, उसके बाद अपना जवाब और अपना नाम कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है।
3: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना A game।
4: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams।

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, हेल्थ न्यूजीलैंड ने सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड के हॉस्पिटल्स में एक सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चर का ऐलान किया है, जिसमें पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक 96 एग्जिस्टिंग और 30 वैकेंट रोल्स को खत्म करके 108 नए रोल्स बनाए जाएंगे, जिससे नेट 17 जॉब्स का नुकसान होगा। यूनियन ने इस बदलाव पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे स्टाफ पर काम का बोझ बढ़ेगा और पेशेंट केयर पर असर पड़ सकता है, जबकि हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि इससे पेशेंट फेसिंग क्लिनिकल स्टाफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये ऑपरेशनल लीडरशिप को मजबूत करेगा। कंज्यूमर न्यूजीलैंड के नए सर्वे के मुताबिक 82% लोग फूड बजट के बोझ तले दबे हैं और उनका कहना है कि सुपरमार्केट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। कंज्यूमर न्यूजीलैंड की हेड जेमा रस्मसन ने बताया कि फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, फिर भी न्यूजीलैंड के लगभग 67% लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि सरकार की पॉलिसीज खाने को अफोर्डेबल बना पाएगी। सर्वे के अनुसार हर 3 में से 1 न्यूजीलैंडर के पास अपनी पसंद का खाना खाने के पैसे नहीं हैं और लगभग आधी आबादी का कहना है कि उन्हें मजबूरी में ऐसा खाना पड़ रहा है जो उनका प्रेफरेंस नहीं है। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां जो हैं ये अच्छी तरह से पूरी हुई हैं। कल न्यूजीलैंड की जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट से हुई और कैप्टन मेली कर्क का कहना है कि अब उनकी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत करने वाली है। फिलहाल आज एक बार फिर कई इंटरनेशनल फुटबॉल फ्रेंडलीज जो है ये खेले जाएंगे। अभी से तकरीबन 15 मिनटों बाद पोर्चुगल नाइजीरिया से खेलेगा। 9 बजे इंग्लैंड की भिड़ंत कोस्टारिका से होगी और दिन में 12 बजे बोलीविया और अल्जीरिया का मैच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
4: Bag and Chemist, worth checking first.
5: Good morning. Cloudy patches and a high of 16. On the northern, it's 55 from Silverdale to the city, 40 from Constellation Drive. It's heavy between Constellation and Onewa. On the northwestern, 37 from Massey with heavy patches all the way into the city. On the southern, 49 from Monaco. It's 1 hour and 12 minutes from Drury. And the run to the airport is taking 29 minutes.
4: Auckland, this weekend, save $20 when you spend $99 in-store at Bag and Chemist.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: Still pretending a hoodie is enough? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now, with great deals on puffers, merino, fleece, rainwear and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods।
2: Bollywood.
14: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: The Breakfast Show.

0: बर्थडे, चलो लाइन में आ जाओ।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू,
2: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज 11th ऑफ जून, सबसे पहले हैप्पी 18th बर्थडे अभिकेश प्रताप। प्यार आशीर्वाद फ्रेंड्स और परिवार वालों से आज आपको मिल रहा है यहाँ न्यूजीलैंड में एंड अब्रॉड। माँ है एविता, पापा एंड्रू हैं, भैया आरव हैं और अन्य जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी आज आपको याद कर रहे हैं और इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको दे रहे हैं। Happy birthday to my daughter Kartika Narayan. Papa hain Roop, mummy hain Kushma, behan Rashita hain aur tamam jitne bhi parivar wale hain sabhi aaj aapko best wishes de rahe hain. Hamari or se bhi ye din aapko anek bar shubh aur mubarak ho. A very very happy birthday. Aapke saath ek aur message hai, wishing my husband Ronald a happy birthday. Lots of love. Wife hain aapki Shimal, beti hain Kyra. We love you. और आज अन्य जितने भी आपके परिवार वाले हैं रोनाल्ड, सभी आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रायका रुतिका कुमार, 4 साल की आज आप हो रही हैं, आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके पेरेंट्स हैं, आपके जितने भी परिवार वाले हैं रायका, आपके इस दिन पर आपको याद कर रहे हैं, प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको। मॉर्निंग मैडनेस में अभी 24 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 बजे के बाद आज व्हाट्स योर टेक भी हम जानेंगे आपसे। वी लुक फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन टुडे। और क्या होगा आज हमारा टॉपिक, ये थोड़ी देर बाद ज़रूर पता चलेगा, लेकिन वक्त बहुत कम होगा आज, इसीलिए जल्दी से आपको कॉल करना होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए सिर्फ 4 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है। लविका है माउंट ईडन से, अंकिर है, साथ में मोनिका है और हितेश। आप 4 लोगों ने ही अपने आंसर्स जो है ये भेजे। मोनिका, आपका आंसर गलत हो गया, आपने विराट कोहली कहा, वो सेलिब्रिटी जो है विराट कोहली नहीं थे बट नीरज चोपड़ा। आज नीरज चोपड़ा की आवाज़ जो है ये हमने आपके लिए पेश की। एंड थैंक यू सो मच आप सभी की कोशिशों के लिए।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai. Only on Hum playing Bollywood's biggest hits. Thodi der baad news and sports update bhi hum aapke liye lekar aayenge.
1: You know, recently I was doing some research for something personal. मतलब कुछ चीजें जो ये करने के लिए. But I came across something really interesting. तो मैंने सोचा कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ I keep it to myself. Because I was looking for some information in regards with this. लेकिन मैं आप सबके साथ भी इसे share कर सकती हूँ. And it could be quite helpful अगर आप भी ऐसा कुछ experience कर रहे हैं तो. So what actually happened is कि हाल फिलहाल मैंने ये notice किया है कि मुझे बात करने में थोड़ी problem हो रही है. Problem in a way that I stutter a lot at times. किसी एक particular शब्द को बोलने में और फिर कभी कभी ऐसे you know this is what happens like करना like trying to think of a word लेकिन वो word बोला नहीं जा रहा है. Word pronounce करने में problem हो रही है और कभी कभी ये भी हो रहा है कि I apart from stuttering I repeat a word over and over again. ये भी चीज़ हो रही है. तो मैंने सोचा कि आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग. मुझे नहीं अभी एक्चुअली पता कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है. पर मैंने सोचा कि स्पीच क्लैरिटी के लिए कुछ रिसर्च वगैरह करते कि कैसे आप अपने स्पीच को क्लियर कर सकते. बिकॉज प्रोफेशन ही ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से बात नहीं करोगे तो आपको उसका असर दिखेगा. एज इन यूड सी इट इन द रिजल्ट्स. पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू यू. आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी. कुछ लोग आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे कि आप कैसे बात कर रहे हो. यू नो वही बात बार बार हम क्यों कर रहे हो इन स्टफ लाइक दैट. तो इसके दो चीजें जो है ये मुझे पता चली हैं जो आप भी अपने स्पीच क्लैरिटी के लिए कर सकते हैं. स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं टू साउंड मोर क्लियर एंड टू साउंड मोर स्मार्टर जब आप बातें कर रहे हैं. सम ऑफ द एक्सपर्ट्स हैव एक्चुअली डन यू नो वीडियोज ऑन दिस. आपको थियोरी बेसिकली कर वो दिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ यू कैन टॉक. This is how you're supposed to talk to help you with certain words, speech clarity को लेकर और बातें करते समय अपने आप को ज्यादा बेहतरीन तरीके से present करने के लिए. So एक बहुत ही interesting तरीका है जो जब हमने I don't know about you जब मैंने radio में शुरू किया था तो ये तरीका जो है I was doing it and it actually helped. वो है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना. Focusing on your expressions. Focusing on the tone कि आप कोई एक certain चीज किस tone से बोल रहे हो.
0: Yeah.
1: और अपने आप को जब आप देख कर बातें कर रहे हो तो when you speaking on radio it actually helps you.
0: अच्छा.
1: Right? It actually helps you because आपके सामने कोई नहीं होता है. आप बातें तो खुद से ही कर रहे हो ना वे. और उस हिसाब से आप कैसे अपनी आवाज को पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों को लिए enticing बना रहे हो उसमें ये बहुत काम आता है. दूसरी चीज जब बातें करते समय हम शब्द की तलाश कर रहे हैं like दिमाग में सोच रहे कि अगला वर्ड क्या हो या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कैसे बोले. अगर हम बहुत ज्यादा एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं एक वर्ड हमारा फेवरेट वर्ड सा बन जाता है उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर हम बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करते हैं तो उसकी जगह पर पोज लेना जरूरी है. इफ यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ वर्ड बट वर्ड दिमाग में आ नहीं रहा है टेक अ पोज एंड देन कंटिन्यू. तो ये एक तरीका होता है टू मेक यू साउंड मोर स्मार्टर. Now this is for speech clarity. कि अगर आप stutter कर रहे हैं या फिर कुछ शब्द pronounce करने में आपको problem हो रही है या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपको वो तरीका अपने आप बारे में बदलना है more clearly बातें करनी है. So take a pencil और pencil जैसे आपके हाथ में आ जाए तो keep it in between your lips. Basically put it in your mouth, right? Okay. और इसे मुंह में रखने के बाद आपको बातें करनी है.
0: Right? अच्छा.
1: Keep the pencil in your mouth or a pen and then you talk. But when you're talking, you try and emphasize on the words that you're talking.
0: Okay.
1: So, कोई भी word जगह जो आप बोल रहे हो उस पर आप emphasize करो. For example, if I want to say radio, this is how I say it now without the pencil. I put the pencil in my mouth and I say radio.
0: Okay.
1: So, do you get the point?
0: I get the point.
1: If you want to say apple, this is how I say apple normally. Put the pencil in your mouth and say apple. So it actually helps you to speak more clearly. और ये प्रैक्टिस बाय द वे पता है कौन करती है?
0: नहीं मुझे नहीं पता.
1: एक बहुत ही जानी मानी सेलिब्रिटी है बहुत खूबसूरत अदाकारा है ये और इनका कहना है कि जब ये इंडस्ट्री में आई थी तो इनको अपने स्पीच क्लैरिटी को लेकर अपनी आवाज को लेकर अपनी बात करने के तरीकों को लेकर खुद इनको एक
0: इनसिक्योरिटी थी.
1: हाँ इनसिक्योरिटी थी फीलिंग थी कि अच्छी नहीं है.
0: कैटरीना
1: नो
0: Then?
1: And then she came across this particular
0: therapy
1: या जहाँ पर speech clarity के लिए पेंसिल मुंह में रखकर बातें करने से यू स्पीक मोर क्लियरली और आपके वर्ड्स जो है और यू नो साउंड करते हैं और अच्छे से और बेहतरीन से. And she started doing that and now she feels that it has worked wonders for her and she is none other than Deepika Padukone.
0: Okay, so आपको भी अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी है ट्राई आउट करके देखें. शुरू शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा शायद या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हेल्प यू.
1: यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट और इसे जब मौका मिले जहां मौका मिले ऐसे पेंसिल अपने पास रखो आप और इसे ट्राई करते रहो.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: फाइव एंड हाफ डिग्रीज टेम्परेचर अभी आप फील कर रहे हैं आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 7 डिग्रीज रहेगा. फाइन डे, सुबह के वक्त फ्रॉस्टी कंडीशंस आप एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट शाम 5:12 पर होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: तो आज का ट्रेंड पेट्रोल जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, इट्स समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. और ये बेसिकली फिलहाल यहाँ केवल न्यूजीलैंड में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम अक्रॉस दिस, बट अपेरेंटली एक रेटिंग जो है सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये रिलीज हुई है द ग्लोबल पीस इंडेक्स द्वारा, GPI द्वारा. और इसे रिलीज होने के बाद बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, न्यूजीलैंड को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रैंक जो है ये मिला है इस नंबर पर, इस लिस्टिंग पर. अब अपेरेंटली ये कहा गया है कि ये जो देश है हमारा न्यूजीलैंड हैज बीन रेटेड द सेकंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ ईयरली स्टडी, जहां पर 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ पीसफुलनेस जो है इन्हें रेट किया जाता है. न्यूजीलैंड जबकि सेकंड पोजीशन पर है इस साल 2026 में, पिछले साल ये थर्ड पोजीशन पर था 2025 में.
1: okay.
3: तो एक साल में एक पोजीशन आगे आ गया है. बेसिकली इस स्टडी में पता चला है कि 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो इंडिकेटर्स लाइक सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और डिग्री ऑफ यू नो बेसिकली मिलिट्राइजेशन जो इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए कि किसी एक देश में कितने कितना पीसफुल है कोई एक देश, उस हिसाब से ये लिस्ट तैयार होती है. तो उसमें इस सारी चीजों को, इन सारी चीजों को इवेल्युएट करते हुए न्यूजीलैंड नंबर 2 पर पहुंचा है.
1: That's interesting. And I also feel generally अन्य countries, see हर एक countries के अपने खुद के problems जो है ये होते हैं, issues जो है जिनका सामना करना पड़ता है. But global scale पर New Zealand जो है दुनिया भर में ये काफ़ी popular है कि ये बहुत ही peaceful place है, ये बहुत ही peaceful country है. और जेनेरिक टर्म्स में अगर देखें तो इट इज़ लाइक दैट ना. बाकी कंट्रीज में आप जितने शायद इश्यूज का सामना करेंगे, यहाँ पर शायद आपको नहीं करना पड़े,
3: उतना नहीं करना पड़ेगा. आई मीन वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें या फिर यू नो वो जैसी चीज़ें जो है ये आपको कहीं ना कहीं इस देश में शायद उतना नहीं एक्सपीरियंस करने को मिला है. एंड इट्स अ गुड थिंग. इट्स जस्ट कि कभी कभार हम ऑफकोर्स कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं जो शायद हमें अच्छी नहीं लगती है एज द रेसिडेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. पर प्रॉब्लम हर एक देश में होता है, हर एक देश में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है जो शायद अच्छा नहीं है उनके बारे में. बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें सबसे कम रैंकिंग जो है ये मिली है. अपेरेंटली इस लिस्ट में हमने कहा था ना 163 जो कंट्रीज है ये इसमें है लिस्ट में. दिस पर्टिकुलर पोजिशन 163rd पोजिशन रशिया को मिला है, सबसे अनसेफ कंट्री बताई गई है. सेकेंड पर है सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ये 161st पोजिशन पर है, और 160th पोजिशन पर है यूक्रेन. सो ये मैंने आपको बॉटम ऑफ द लिस्ट से बताया जी. न्यूजीलैंड के बारे में बता दिया ना, नंबर 2 पर है. नंबर 5 पर है आयरलैंड, और नंबर 4 पर है स्लोवानिया, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 1 पर है आइसलैंड. आइसलैंड हैज बीन विनिंग दिस लाइक फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. सो एंड आई थिंक फिनलैंड हैज बीन नेम्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अगेन दिस ईयर. सो देयर यू गो, न्यूजीलैंड हैज बीन नेम्ड सेकंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट्स समथिंग रियली गुड, समथिंग वर्थ सेलिब्रेटिंग और टॉकिंग अबाउट. बाय द वे हमारे जो पड़ोसी देश है ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ न्यूजीलैंड का हमेशा किसी न किसी तरह का कॉम्पिटिशन चलता ही रहता है, वो दरअसल 20th पोजिशन पर है इसी लिस्ट पे.
1: तो ऐसे और भी कई खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं थोड़ी देर बाद. व्हाट्स योर टेक?

0: हम पर फिलहाल अभी 9 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर और थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप टेक आपके लिए हम लेकर आएंगे और आज जो हमारा इशू होगा ये हम पहले से आपको बता रहे हैं और इस को मैं जब बता रहा हूँ जस्ट रिक्वेस्ट यू नो अनबायस्ड होकर बहुत ध्यान से आप उसे सुने और उसके बाद जैसे ही लाइन्स हम आपके लिए खोलें आप हमें कॉल कर सकेंगे क्योंकि आज टाइम कम होगा हमारे पास. थोड़ी देर बाद लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से भी हमारी बातें होंगी. तो एज यू नो प्रोग्राम करने से पहले अक्सर हम रिसर्च किया करते हैं अ डे इन एडवांस और टू डेज इन एडवांस एंड वी कम अक्रॉस थिंग्स दैट वी रीड. और रेडिट पर मैं कुछ कल पढ़ रहा था एंड जो मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल रीड दिस आउट टू यू एंड उसके बाद पूछेंगे आपसे व्हाट्स योर टेक. सो हैव अ लिसन. किसी ने जाकर इनका नाम जो है ये रिवील नहीं किया गया है और रेडिट पर इन्होंने जाकर शेयर किया अपना बैकग्राउंड जो है ये इन्होंने दिया. उन्होंने कहा आई होल्ड अ डिसेंट जॉब एंड पुट माई सेल्फ थ्रू यूनिवर्सिटी वाय नाइट क्लासेस एंड बैंक लोन्स. माई मदर वॉज हैवली अगेंस्ट मी गेटिंग अ डिग्री क्लेमिंग डिग्री होल्डर्स आर जॉबलेस. डिस्पाइट हर लैक ऑफ सपोर्ट I earn a degree level salary. I currently give her 15% of my take-home pay and fully cover her Netflix and a very expensive medical insurance policy. My mother, widowed since 2007, she has refused to work since 1995. She is uneducated, she speaks no English, and claims the world is full of bad people, using this fear to justify not working. She has lived off my late father's insurance payout. Originally, the money was split 50% to her and 50% between my brother and me. But out of trust, both my brother and I gave her our shares. She spent my portion buying me a motorcycle. My elder brother eventually cut contact with her completely due to her heavy favoritism towards me. My girlfriend, we've been together since 2019. She is a low-income foreign worker who speaks very basic English, and she rarely asks for anything and earns under $2,000 a month. The situation, inka situation abhi kya hai? My girlfriend and I are discussing marriage, and my mother is pressuring us to have a baby. I told her flatly that a baby is not financially viable right now unless the money comes from somewhere, specifically a reduction in the monthly allowance I give her. I told my mother she needs to stop treating me as a lifetime meal ticket and find her own income. I suggested she rent out my bedroom once I move out, but she flatly refused due to fear of strangers. She also refuses to seek any part-time work, citing her lack of English and bad people. Ab conflict kya hai? When I held my ground on the financial boundaries, things escalated. She scolded me for refusing to care for her. She brings up how tough her early life was working unpaid for my grandmother. When I flipped her own logic back on her, she claimed she should never have given birth to me and invoked religious curses. She constantly uses my girlfriend as a punching bag. She claims my girlfriend changed me. She will con me of everything and leave the country, and looks down on her job, saying my girlfriend is lucky a university graduate wants her. She is fiercely against me giving my future wife an allowance and against my girlfriend sending money back to her own parents. I told her that while I am indebted to her to a point, she has been free riding for nearly 2 decades and it is enough. Aage likha hai, I've been putting my foot down, cutting her allowance to build my own life and telling her she needs to figure out her own income. तो ये इन्होंने रेडिट पर जाकर लिखा और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने यू नो हम सभी के मन में अलग अलग तरह के ख्याल जो हैं ये डेफिनेटली आ रहे होंगे, और यही मैंने सोचा कि आपसे भी पूछूंगा कि ये सुनने के बाद आपके मन में क्या आया है। हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में, हर एक कल्चरल बैकग्राउंड में इन चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाता है। आपको सुनने में ये कैसा लगा? 0800 00 HUM, 0800 00 4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें बस दो ही मिनट में कॉल कर सकेंगे।
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: What kind of businesses run on business fiber? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fiber.
2: Bunnings has lowest prices nailed.
3: 3-pack of Damprid Moisture Absorber hanging bags, perfect for keeping wardrobes fresh, just $17.99. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
4: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: Show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 17:30 हो रहे हैं, 8:00, and hopefully अभी तक आपको सोचने का मौका मिल गया हो और लाइंस अब हम आपके लिए खोल रहे हैं. 0800 00 4866 पर. सबसे पहले गुड मॉर्निंग परविंदर.
14: गुड मॉर्निंग,
13: कैसी हैं आप?
14: बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
13: मैं भी ठीक हूँ. बताइए, आपने सुना जो कुछ भी था?
14: बस एक क्वेश्चन पूछना है. इसमें आप मतलब क्वेश्चन क्या है कि आप ये जानना चाहते हो कि हमें कैसा फील हुआ सुन के?
13: या
14: हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है?
13: जी, कैसा कैसा फील हुआ ये सुनने के बाद आपको? क्या आया आपके मन में?
14: मेरे मन में ये आया कि दोनों साइड की स्टोरी होते हैं ना, वो तो उसने अपना साइड डाला है. पर सुनने में मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं आई कि होते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे.
13: ओके,
14: अगर वो मतलब बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, वो अपना फ्यूचर सिक्योरिटी ट्रीट करते हैं. जो कि बहुत ही जनरेशन से होता आ रहा है इंडिया में. तो समवेयर आई थिंक चलो हाँ ठीक भी है, क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं, है ना. बट फिर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों के लिए फेयर नहीं होता, क्योंकि बच्चे कैन नॉट डिसाइड कि वो दुनिया में आना चाहते हैं कि नहीं, है ना. वो तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. तो बच्चों के ऊपर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखो, जरूरी है, ये है वो है, है ना. जैसे यहाँ पे मैंने देखा है जो यहाँ का कल्चर है ना, पेरेंट्स अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी खुद बना के, मतलब दे हैव इन माइंड कि उनको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना.
13: जी जी जी तो
14: क्योंकि देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल भी करते हैं लाइफ में कितना, जबकि इंडिया में जो बच्चे हैं वो कितनी उम्र तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं.
13: Exactly.
14: और यहाँ पे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं स्ट्रगल करना. मतलब जैसे मैं स्कूल में हूँ ना, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना टू सपोर्ट फैमिली, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये बच्चे हैं इनको एंजॉय करना चाहिए अपना ये टाइम.
13: थैंक यू.
14: मैं अपने डैड का एग्जांपल दूँ, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत रिजिड है. अमीश डैड है ना वो.
13: ओके.
14: तो ही विल नॉट मूव फ्रॉम हिज ग्राउंड नो मैटर व्हाट. जो भी उनको नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ही विल कट टाइज फ्रॉम हिम कि मैं नहीं बात करूंगा इससे, ये मेरी बात नहीं मानती या सुनते.
13: ओके.
14: उन्होंने हमसे अपने नॉड टाई ऑफ कर दिए हैं, वो हमसे बात नहीं करते. क्यों? क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी थी, सब कुछ अकॉर्डिंगली प्लान किया था. मेरे डैड कहते शादी की डेट चेंज करो शादी से 15 दिन पहले. मेरे भाई ने पूछा कि क्या हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि आप कैटरिंग ये वो हॉल सब इंडिया में तो 6 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है अगर आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस चाहिए तो. स्पेशली जो दिसंबर जनवरी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत शादियां होती है. मेरे भाई ने बोला कि गिव मी अ वैलिड रीजन कि क्या है ना, देन वी विल डिस्कस विद द अदर फैमिली, क्योंकि दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा ना. डैडी बोलते बस मैं बिजी हूँ उस दिन, जस्ट टू सी कि मेरा भाई डेट चेंज करेगा कि नहीं करेगा.
13: अच्छा.
14: है ना, तो मेरा भाई बोलता कि आपको जो भी काम है मैं आपको लेके जाऊंगा, वी विल फिनिश ऑफ द वर्क एंड देन वील गो फॉर वेडिंग. डैडी बोलते नहीं मैं तो सारा दिन बिजी हूँ ऐसे ना. तो मेरे भाई ने बोला कि आपने उस दिन वो अर्जेंट काम रखा ही क्यों, ये बुक ये डेट तो 6 महीने पहले से बुक है ना.
13: Interesting.
14: तो मेरे डैडी ने हमसे बात करनी छोड़ दी. इट्स बीन लाइक मोर देन 15 इयर्स वो सेपरेट रहते हैं, बात नहीं करते. पोता भी नहीं देखा है अभी तक, मेरी शादी में नहीं आए हैं, उनको पता भी नहीं है कि मेरा बेटा हुआ है.
13: That's sad. Okay. Principles कुछ लोगों के अलग होते हैं. Thank you, Parvinder, for sharing your experience and opening up to share what you have basically gone through. तो lines आपके लिए खुले हुए हैं. And रोशनी एंड सपना, आपने कहा कि क्या, if I could repeat the topic, it's not a topic, रोशनी एंड सपना, it's something जो किसी ने जाकर रेडिट पर शेयर किया था, जिन्होंने कहा कि अपनी माँ के बारे में उन्होंने बताया था कि उनकी माँ जो है वो हैवीली अगेंस्ट थी ऑफ दैट पर्सन गेटिंग ए डिग्री. वो हासिल उन्होंने कर ली, अच्छी सैलरी है उनकी, वो अपनी सैलरी का 15% जो है ये अपनी माँ को देते हैं, उनका नेटफ्लिक्स जो है फुली कवर करते हैं और उनका इंश्योरेंस कवर जो है उसकी भी देखभाल करते हैं और लाइफ में आगे बढ़कर तमाम चीज़ें हुई और माँ चाहती हैं कि वो और उनकी गर्लफ्रेंड अब बच्चा कर लें. लेकिन उन्होंने बताया कि जब तक वो एक्सपेंसेस कम नहीं करेंगे, अपनी माँ को नौकरी ढूंढने के लिए कह रहे हैं, माँ मना कर रही है, वो सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बातें हो रही हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
6: मॉर्निंग विजय जी, कैसे हैं जी?
13: ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो?
6: बहुत बढ़िया सर, थैंक यू. To be honest, बड़ा हैवी टॉपिक है ये.
13: I know, सुबह के लिए.
6: Sad for the person. हाँ जी.
13: सुबह के लिए हैवी है.
6: Really sad for the person जो इसके थ्रू जा रहा है. Like you know, he is being very honest. जो उसने लिखा है, it seems very honest. And he had his own struggles. I'm not saying कि उसकी मदर के अपने struggles नहीं होंगे. Definitely होंगे. And as Indian culture, हमारे kind of होता है कि अपने parents की care करते हैं, क्योंकि when we are young, they provide us everything, right from education to you know, कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप हाई स्कूल तक, अपना हायर एजुकेशन तक जाते हैं, it is all funded. तो कीवी कल्चर के मुकाबले इंडियन कल्चर तो, और कई हद तक मैंने देखा चाइनीज, तो काफी एशियन कंट्रीज का कल्चर सिमिलर है जिसमें हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं. बट मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा कि हमारी सर्कमस्टांसिस में हमारे पेरेंट्स ने अपने आप को भी उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट किया था कि हमें बुढ़ापे में जाके, इवन दो दे लिव विद अस, देयर ओन फंडिंग की दे नॉट डिपेंडेंट. और कह सकते हैं कि हम फॉर्चुनेट है कि हम न्यूजीलैंड में अगर रहते हैं तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है हर एंगल से, एज पीपल का, उनको घर से लेके उनकी पेंशन है, खाने पीने का, सबका ध्यान रखा जाता है. बट अगर आपने हाई लेवल की लाइफ और अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको थोड़ा सा अपना खुद करना पड़ेगा. बट एक बेसिक मैनिटी के हिसाब से तो गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर यू, सो विच इज अमेजिंग. मैं सॉरी इस टॉपिक पर ज्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा. मेरी खुद की ओपिनियन तो यही है कि यू नो वी शुड बी इंडिपेंडेंट, कि हमें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े. तो चाहे जो भी कल्चर है वी शुड बी प्रिपेयर्ड. कि हमेशा मेरे डैड कहते थे कि मेरा हाथ उठे तो देने के लिए उठे, कोई मांगने के लिए ना उठे. तो फ्रॉम वेरी यंग एज दैट वाज काइंड ऑफ बिल्ट अप इन द फैमिली. तो एंड आज तक वो प्रिंसिपल लिव्स इन अ फैमिली.
13: दैट्स अमेजिंग. दैट्स
6: माय एक्सपीरियंस.
13: थैंक यू सो मच भाई, आपके भी कॉल के लिए, आपके टाइम के लिए. आई नो सुबह के लिए टॉपिक थोड़ा हैवी हो जाता है, बट यू नो कहीं ना कहीं अगर जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो डिस्कस कर ही हम लेते हैं. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अक्सर खुलकर ऐसे चीज़ों के बारे में बातें भी नहीं होती. एक मैसेज जो है ये हमारे पास आया है वो भी देख लेते हैं. और इन्होंने लिखा है, आई वोंट कॉल सो आई डोंट एंड अप क्राइंग, but Reddit story is so relatable. Both my husband's mother and mine think of us as an ATM machine. We support both each month, but still hear so much from them regarding money. We refused to renovate the house due to affordability. My husband had to hear so much from his sister and mother. And with my mother, I don't know what she does. She gets my father's pension, plus I send $2,000 every month, and still combined $45,000 isn't enough. We are struggling too with mortgage expenses, but no one understands or listens. Even though we both won't take any extreme step of leaving them or stop spending any money, but a little support goes a long way. I can totally relate to that person, but only because of parents' age and love, we won't leave them ever. Ye kisi ne message kiya hai. Ek aur message aaya hai hamare paas. Times have changed, and with time, parents' thinking should change as well. With all due respect to parents, if they do not understand your plans in life and want to hold on to their principles, then we should not waste time feeding their ego. Life is short to stress on parents' ego. Better just move on. ये एरन ने हमारे पास मैसेज किया है. एरन थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस या अपना जो व्यू है ये हमारे साथ शेयर करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास टाइम नहीं है और कॉल्स लेने के लिए, बट वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. आप आपने ये कहानी सुनने के बाद जो भी फील किया वो आप हमें 5599 पर टेक्स्ट करके ज़रूर बता सकते हैं.
10: Hollywood's most wanted.
12: Kundi ghad gao. Ya seedha andar aao.
15: Main laau apna A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और निकाह था एवरी थर्सडे को की तरह आज भी हम बातें करेंगे लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोल से। तो गुरु आ गए हैं लाइंस पर। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया गुरु। आज एक चीज जिसके बारे में मैंने सुना कुछ बातें जो है ये होती हुई, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपसे पूछूंगा एंड मे बी यू कुड हेल्प आउट। जो जिन लोगों के पास खुद का घर होता है और उनको किसी पर्सनल काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कैन दे गेट अ पर्सनल लोन या फिर उनके अपने अपना जो घर का मॉर्गेज है या जो भी है उस पर टॉप अप करना पड़ता है? अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन जो है वो मेरे को फील हुआ वहाँ पर कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ डज इट एक्चुअली प्ले आउट। तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ समझा सकते हैं आज?
1: जो विजय भाई, बेसिकली जो पर्सनल लोन है और होम लोन है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो होम लोन है, इट इज बीन सिक्योर्ड अगेंस्ट योर हाउस, और अगर आपके पास होम लोन है तो डेफिनेटली अगर बैंक अलाउ करता है तो उसके ऊपर टॉप अप किया जा सकता है, और उस टॉप अप में आपको 20,000, 50,000, 100,000 जितना भी आपको लोन चाहिए, अगर वहां पे वो उसकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो दैट कैन बी डन। इन टर्म्स ऑफ लोन फॉर होम, पूरा प्रोसेस लगता है जिसमें इट इज लाइक अ होम लोन एप्लीकेशन, जिसमें आपकी पूरी स्क्रूटिनाइजेशन थ्रू द बैंक एज ए नॉर्मल होम लोन एप्लीकेशन होती है। इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन, अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें सिक्योरिटी अटैच नहीं होती है, सो देयर इज नो सिक्योरिटी अटैच्ड। एंड आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन कि बेसिकली हमारे पास घर है लेकिन हमें पैसा जो है बहुत जल्दी चाहिए, विद इन टू या थ्री डेज हमें वो पैसा चाहिए, बिकॉज वी नीड टू डू गेट दिस एक्शन। सो उस केस में बैंक से इतना फास्ट अप्रूवल लेना, बेसिकली बिकॉज आपकी पहले एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, हम देखेंगे उसको, प्रोसेस करेंगे एंड पुट इट थ्रू टू द बैंक। सो इट जो उसका पर्पस होता है कि फास्ट निकलने का, कि एक दो दिन में निकलेगा पर्सनल लोन, वो वहां से बैंक के टॉपअप पे नहीं निकल सकता। तो नॉर्मली होता क्या कि पर्सनल लोन देन इट कैन बी डन सेपरेटली, आपको वो पैसा 20,000, 50,000 कैन बी गिवन। नाउ दैट मनी वंस यू रिसीव इट, यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन फॉर द होम लोन फॉर द टॉप अप, बिकॉज उसमें फिर आप ये जो आपने पैसा उठाया होगा 20,000, 50,000, आपका जब बैंक से पैसा आ जाएगा तो देन वी पे दिस ऑफ पर्सनल लोन, सो इट इज काइंड ऑफ गेटिंग टेम्परेली, यहाँ से हमने पैसा उठाया बट लेकिन एक बार हमारी होम लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, देन वी कैन पिक दैट मनी एंड पे दिस पर्सनल लोन ऑफ। और उसका रीजन ये है कि बेसिकली पर्सनल लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा हाई रेट पे चलता है एज कम्पेयर टू द होम लोन। तो होम लोन जो अभी है आज की डेट में, लेट्स से कि 5-6% पे चल रहे हैं, बिटवीन डिपेंडिंग ऑन कि हम कहाँ पे बैठे हुए, तो बिटवीन 5-6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बट लेकिन जो होम पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट, अगर आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है तो इट स्टार्ट फ्रॉम 8%, बट अगर आपका प्रोफाइल खराब होता जा रहा है या कुछ ना कुछ उसमें आपने ज्यादा आपके क्रेडिट चेक्स हुए हैं या फिर आपकी कुछ पेमेंट्स मिस हो रखी हैं, तो वो 8% जो स्टार्टिंग है, इट कैन गो इवन अप टू 30%, राइट? मतलब आपको पैसा मिल जाएगा बट लेकिन हो सकता है अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा बैड है तो पैसा तो मिल जाएगा बट लेकिन स्टिल वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है दे विल बी चार्जिंग यू अ लॉट। नाउ अगर डिपेंडिंग ऑन कि हमने कहां पे कितने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, बट स्टिल इट इज गोना बी हायर देन व्हाट द होम लोन रेट वुड बी। सो इन दोस केसेस पर्सनल लोन यू कैन गेट अनसिक्योर्ड, एजेंटली गेट इट डन एंड डस्टेड कि आपको क्या काम करना है, बट इन द मीन टाइम स्टिल कॉन्टिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ, अगर आपको होम लोन में रिक्वायरमेंट अलाउ करती है टॉप अप लेने की, तो वी शुड गेट दैट मनी सो दैट वी कैन देन पे दिस ऑफ पर्सनल लोन। सो इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ दैट पर्सनल लोन। सो आई होप आई हैव क्लियर माई सेल्फ, बट पर्सनल लोन इज टोटली सेपरेट विच इज अनसिक्योर्ड एंड होम लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द होम, बट इट हैज टू गो थ्रू द होल होम लोन एप्लीकेशन। Personal loan also has to go through the process of the application, but is more faster and concise.
0: Okay. So, agar koi hai jisko help chahiye aapse, how can they get in touch with you?
1: सिंपल लॉजिक लगाना है या विजय भाई लॉजिक फाइनेंस, अगर आप लॉजिक फाइनेंस सर्च करोगे यू विल गेट थ्रू टू मी और माय बिजनेस पार्टनर कमल बेसिकली. और अगर आपको मेरे से ही बात करनी है तो देयर इज एन 0800 नंबर व्हिच इज अ फ्री नंबर, 0800 लॉजिक जी. अगर आप 0800 लॉजिक जी टाइप करते हैं व्हिच कम्स टू मी व्हिच इज 0800 564 424, 0800 564 424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. अब नेक्स्ट वीक आपसे कुछ और बातें जरूर करेंगे.
1: श्योर विजय भाई, थैंक यू. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
4: Good morning. A bit of cloud today and a high of 16. On the northern, it's 51 from Silverdale with heavy patches from Snow Planet to Oniwa. 38 from Constellation Drive. On the northwestern, it's 43 from Massey. We have a crash on State Highway 18 heading eastbound between Brigham Creek Road and Squadron Drive. On the southern, 50 from Monaco. On the southwestern, heavy patches citybound between Monaco and Mount Rossville.
3: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
5: Nissan Big Deals, sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat, plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
6: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hai. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho, to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
7: Okay, listen up, team. Don't forget your bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz book and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
8: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है. क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें. गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें. अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है. तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें. अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
0: For show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर
1: Accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: Morning, cloudy patches and a high of 16. On the northern, it's 44 from Silverdale, 32 from Constellation Drive. On the northwestern, 33 from Massey. A crash on State Highway 18 heading eastbound between Brigham Creek Road and Squadron Drive is blocking the right-hand lane. On the southern, it's 52 from Monaco and 57 from Drury. And the southwestern, heavy patches, city-bound.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
4: TradeDepot.co.nz.
5: Trade Depot launches new products with massive deals this week only. Soundbar with Bluetooth, $99. Bar fridge, just $99. Corded steam mop, just $99. Pizza oven, just $99. Save hundreds on small appliances. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
4: TradeDepot.co.nz.
6: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
7: Winter ke liye taiyar ho jao with Mitre 10 Mega Westgate or Henderson with great deals across heating, outdoor gear or home essentials. Plus, spend $20 in-store, enter online and go in the draw to win 5 grand. Sirf June 30th tak, T's and C's apply.
8: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं Only on Hum playing Bollywood's biggest hits और ये है रश आवर. वैसे रश आवर में आपके लिए हम काफी अपडेट्स वगैरह लेकर आते रहते हैं. ये एक और एक अपडेट है, एक जरूरी खबर है आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी भी है जो खास आपके नाम हम करना चाहते हैं. अगर आप भी एक बहुत बड़े फैन हैं हॉकी के या फिर यू लव टू सी एंड सपोर्ट ऑल दी स्पोर्ट्स, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप को एक्सपीरियंस करने का. नॉर्थ हार्बर में ये होगा 15 से लेकर 21st ऑफ जून तक, यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे से ये शुरू होने वाला है और आप इसका हिस्सा जो है ये बन सकते हैं. नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर संडे तक ये चलता रहेगा इन द नॉर्थ हार्बर. और इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, जहाँ पर जाने माने बहुत से कमाल की जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने उनकी हॉकी टीम जो है यहाँ पर आ रही है वर्ल्ड क्लास हॉकी लेकर, तो आप भी न्यूजीलैंड की जो हॉकी टीम है इन्हें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं. वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड, आ रहे हैं न्यूजीलैंड FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप के तहत. ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स रहेगा जो न्यूजीलैंड में होने जा रहा है. सो व्हाई वुडंट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग, समथिंग सो बिग. टिकट्स जरूर ले लीजिए hockeynz.flicket.co.nz विजिट करते हुए. hockeynz.flicket.co.nz आपको विजिट करना है और यहाँ से अपने लिए टिकट्स आपको ग्रैब करने हैं टू शो यू सपोर्ट टू बी देयर फॉर वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन. लेकिन अगर आप टिकट्स जीतना चाहते हैं तो अभी चलिए हम आपको इसके लिए मौका दे रहे हैं.
12: आपको बस हॉकी लिखना है, अपना नाम लिखना है और 5599 पर हमारे पास भेजना है. हॉकी लिखे, अच्छा ऐसा करते हैं हॉकी लिखे और ये बताएं

पूल बी न्यूजीलैंड, चिली, कोरिया और फ्रांस की टीमें। नेक्स्ट वीक मंडे को 10:45 AM इंडिया वर्सेस USA होगा, जिसके बाद जापान यूरोगवे से खेलेगा। 3:45 PM चिली वर्सेस फ्रांस और शाम को 6 बजे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वर्सेस कोरिया मैच जो है ये खेला जाएगा। सो डबल पासेस जीतने के मौके, जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस 5599 पर आप हमें भेज दें।

0: accurate traffic.
1: Switch to AMI car insurance.
2: Cloudy patches and a high of 16 today. On the northern, 44 from Silverdale, it's 32 from Constellation. On the northwestern, 33 from Massey. We have a crash on State Highway 18 heading eastbound between Brigham Creek Road and Squadron Drive. The right-hand lane is blocked. On the southern, 52 from Monaco. On the southwestern, we have a breakdown northbound between Queenstown and Hillsborough Road with the northbound lane 2 blocked.
1: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
3: The temperatures are falling, and for today only, so are the prices at Briscoe's one-day price drop. All Zip electric blankets, 60% off, plus shop huge 60% off winter deals today only. Open late at Briscoe's. See online for T's and store hours.
4: Snooze and save at the Beds R Us winter sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Ma, ek chapati aur dena. Haan, ek chapati mujhe bhi.
6: Jab Kashish desi ghee se khana banega to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana grass fed danedar cow ghee. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: हाँ, एक चपाती मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
8: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
9: हम टाइम चेक।
10: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
9: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. More details about an operation into alleged meth manufacturing in Auckland and Whangarei will be revealed later this morning. Police were executing search warrants yesterday as part of Operation Phoenix. A media stand-up is planned for around 11 a.m. Alarm bells are ringing about cuts to the family and sexual violence workforce. Consultation has begun on the axing of 26 roles from the centre, driving the government response to the issue. Dwayne Leo from the PSA says it's devastating.
12: This is not about efficiency, it's just strategic retreat dressed up as a restructure.
11: Climate scientists warn recent coastal flooding in Wellington may become more regular. A study found a one-in-a-century event is now happening twice yearly. Professor James Renwick says it has huge implications.
13: Well, what are we going to do? Sea walls may be appropriate, but ultimately we have to think about moving large parts of the downtown area and low-lying suburbs.
11: Protests are continuing in several areas of Northern Ireland after homes and cars were torched in Belfast. The first night of violence followed the arrest of an asylum seeker over a stabbing. Masked rioters have been seen launching bricks, wheelie bins and traffic cones towards police in Belfast, and another crowd has been driven back by water cannons. In sport, FIFA President Gianni Infantino is calling on fans to be kind to Iran at the World Cup. The Middle Eastern country is at war with the US and face the All Whites in their upcoming opening game on Tuesday in Los Angeles.
14: And what Iran plays, the stadium will be full, and I hope there will be a positive atmosphere because this is football.
11: Football updates brought to you by Hisense. And the Rabbitohs and Broncos will pay tribute to Jai Arrow in tonight's NRL match. The 30-year-old played for both clubs and recently retired after being diagnosed with motor neuron disease.
9: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800
0: 1800 462626।
10: 7 degrees हो चुका है ऑकलैंड में टेम्परेचर। सेंट्रल ऑकलैंड में पर्टिकुलरली आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 7 degrees रहेगा। और फाइन डे, सनसेट शाम 5:12 पर आज होगा।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
16: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
17: What's going on? क्या बकते हो?
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: अभी क्या बकते हो मैं आज आपको याद होगा कुछ दिन पहले से काफी बातें हो रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में।
19: Yes. और सीजेपी
10: जो है हैज बीन ट्रेंडिंग। बहुत सारी बातें जो है इसके बारे में अभी तक की गई हैं। और उसके बाद अभी कल या बीते दिनों में जो हुआ है उसने तो सभी के होश उड़ा दिए।
19: कैसे क्या हो गया?
10: अब आई है एक नई पार्टी और इस पार्टी का नाम है खरगोश जनता पार्टी।
19: What?
10: खरगोश।
19: अच्छा, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम खरगोश क्यों रखा?
10: अभी वो छोड़ो, किन्होंने इस पार्टी को अनाउंस किया है?
19: किन्होंने?
10: एल्विश यादव।
19: तो ये मजाक मजाक में किया होगा यार, सच में नहीं
10: भाई। एकदम हिंदुस्तान टाइम्स पर रिपोर्ट आई है कि एल्विश यादव ने अनाउंस किया है हिज ओन फिक्शनल पॉलिटिकल फ्रंट ऑन एक्स कॉल्ड खरगोश जनता पार्टी। और एल्विश यादव ने खरगोश जनता पार्टी को लॉन्च किया है एक सेटायरिकल पॉलिटिकल आउटफिट दैट्स अपीयर्स टू बी अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू कॉकरोच जनता पार्टी। अब भाई कमाल है क्या, ये एक अब अलग लेवल पर ही जा रहा है कि
19: या बट इन्होंने वही मैं बोल रही मजाक मजाक में किया है ना। तो एल्विश का हमें पता है कि वो किस अंदाज, आई मीन हमें पर्सनली नहीं पता है पर उनका अंदाज जो है लोगों को पता है, जो उनको जानते हैं उनको पता है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं वर्ल्ड्स गोइंग ऑन में कुछ और भी खबरें, आज का डेली राउंड अप, इसके लिए भी हमारे साथ रहिएगा। कुछ अपडेट्स आपके साथ हमने जरूर शेयर करने हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम न्यूजीलैंड। और ऑन दी अदर हैंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल, एक बहुत ही बेहतरीन मौका है हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होकर आज इनाम जीतने का। एंड दिस अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, किसके लिए आप इनाम जीत सकते हैं, अगर आपको जानना है तो बस हमारे साथ बने रहिएगा।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: व्हाट्स अप ऑकलैंड शुरू करने से पहले एक मैसेज कुछ देर से हमारे पास आया है. आज का हमारा व्हाट्स अप टेक जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि यू हैड अ ग्रेट डिस्कशन दिस मॉर्निंग. पर्सनली आई डू नॉट फुली अग्री विद द अदर पर्सपेक्टिव. इन माय व्यू लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए प्रिविलेज. दे सेक्रीफाइस्ड सो मच फॉर अस, ऑफन पुटिंग देयर ओन ड्रीम्स, वांट्स एंड नीड्स असाइड. सो ये इन्होंने हमारे पास भेजा है. थैंक यू सो मच. आपके
4: उनका मैसेज जो ये आया है फिसी, उन्होंने पहले पूरा मैसेज भेजा है, देन देयर इज द सेम मैसेज का
3: अच्छा हां
4: आधा पोर्शन आया है. राइट, सो इन माय व्यू लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स इज अ रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रिविलेज. दे सैक्रिफाइस्ड सो मच फॉर अस, ऑफन पुटिंग देयर ओन ड्रीम्स, वांट्स एंड नीड्स असाइड टू एंश्योर वी हैड फूड ऑन द टेबल, एन एजुकेशन एंड अ बेटर फ्यूचर. मेनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर्स वी फेस टुडे, mortgages, bills and other commitments are choices we make in our own lives. That doesn't mean our parents should be left to struggle on their own. In countries like New Zealand, senior citizens receive support because they have spent their lives contributing through taxes and hard work. For me, if my parents spent years caring for me, the least I can do is help them where I can. Whether that's paying for their insurance, Netflix or simply being there when they need support. It may not be everyone's responsibility, but I see it as a privilege to give back to those who gave us everything. Ye Akku ka message aaya hai.
3: Ah, thank you so much Akku aapke message ke liye. And yeah, aaj ka topic thoda heavy tha, but thank you everyone for your contribution. Ab kya ho raha hai hamari community mein? Muskan Care Trust New Zealand ka jo international sickle awareness blood donation drive hai, ye rahega Manukau New Zealand Blood Center mein 20th of June ko. Aap jaakar jo hai rakt daan kar sakte hain, kisi ki zindagi bachane mein apni ahem bhumika nibha sakte hain. Aur details ke liye aap Muskan Care Trust New Zealand ka Facebook page या muskancaretrust.org.nz विजिट कर सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको हम याद दिला रहे हैं अबाउट दिस वेरी अमेजिंग प्रोग्राम जो सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन ये लेकर आ रहे हैं. वीकली फ्री मेडिटेशन सेशंस हो रहे हैं. नॉर्मली मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन के बारे में समझने के लिए भी अगर आप कोई क्लासेस वगैरह लेते, यू नीड टू पे, बट हियर दे आर डूइंग इट फॉर फ्री. और ये मेडिटेशन क्लासेस जो है ओपन टू एवरीवन, रिगार्डलेस आपका कितना भी एक्सपीरियंस है या नहीं है इस मामले में, एंड एंटायरली फ्री ऑफ चार्ज आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. द ओनली एम ऑफ सहाजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन इज कि वो मेंटल वेलबींग को जो है ये बढ़ा सके, सपोर्ट कर सके, स्ट्रेस आपके जीवन में कम कर सके, इनर पीस आपको मिले. सो चार डिफरेंट लोकेशंस पे ये हो रहे हैं. आउटरिम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे, यहाँ पर मंडेज को ये होता है 7:15 से 8:15 पीएम. मारिया को 022-303-9918 पर आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए. माउंट एल्बर्ट में अवरा का सी काउट्स हॉल, रेंज व्यू रोड मरीज, म्यूरे हॉल, हॉलबर्ग पार्क, माउंट एल्बर्ट, यहाँ पर ये होता है. और एवरी सैटरडे को 10 AM टू 12 PM. आरती को कॉल करें 022-404-8386 पर डिटेल्स के लिए. हाविक जो द ग्रीन रूम है, अर्क्स ब्रिज सेंटर, 35 अर्क्स ब्रिज रोड पर, यहाँ पर ये एवरी ट्यूजडेज को होता है 7 PM टू 8 PM के बीच. और डिटेल्स के लिए 022-566-9445 पर आप कॉल कर सकते हैं. नॉर्थ कोट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोट, यहाँ पर हर मंगलवार को एवरी ट्यूजडे को यह होता है 7 PM टू 8 PM. ओमकार को 022-107-4452 और मोहन को 022-657-7266 पर आप कॉल कर सकते हैं. इफ यू मिस्ड एनी ऑफ द नंबर्स एंड यूड लाइक अस टू रिपीट इट, आप वो भी मैं बता सकते हैं. डेफिनेटली वील डू दैट फॉर यू. अब आज थर्सडे है, द नेक्स्ट वन वुड बी दिस सैटरडे 10 AM टू 12 PM जो कि माउंट एल्बर्ट में होगा. इफ यू थिंक यू कैन मेक इट टू दैट वन, then definitely go for it.
3: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ इसी शनिवार को रहेगा श्री रामकृष्ण मंदिर पर 25 ऑनस्लो एव मेनुकाउ में. सुबह 7 बजे स्थापना पूजा होगी, 8 बजे से चालीसा पाठ आरंभ हो जाएगा अलग अलग मंडलियों के द्वारा. और आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं. आपके लिए यहाँ पर प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा.
4: और साथ ही साथ आपको हम याद दिला रहे हैं कि खास आपके लिए हो रहा है श्री राम मंदिर का जो पाठ उत्सव 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के तहत. और ये संडे 14th of June तक रहेगा, जिसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। आज थर्सडे है, आज शाम 3 बजे से गणेश और देवी यज्ञ होगा, जिसके बाद 7:30 PM से कल्चरल प्रोग्राम। कल फ्राइडे 12th of June को शाम 3 बजे से रुद्र यज्ञ होगा और 7:30 PM से कल्चरल प्रोग्राम। सो सैटरडे 13th June को यहाँ पर 9 AM से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और संडे जो अंतिम दिवस है 14 June को सुबह 8:30 AM से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या फिर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन, इन्हें आप जरूर संपर्क कर सकते हैं।
3: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला, ये होने जा रही है इसी वर्ष, जिसमें आप बहुत ही बड़े पैमाने पर श्री राम लीला जो है ये देख सकेंगे। और इस रामलीला में माता सीता का किरदार अगर आप निभाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मास्टर अशोक को ऑन 021-179-5459, याद रहे 021-179-5459 पर।
4: सो कुछ अमेजिंग इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में, और ये आप याद रखें कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, बहुत कमाल की चीज़ें, इनफैक्ट जिसका हिस्सा आप ज़रूर बन सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और अगर आपके आसपास या आपकी कम्युनिटी में भी ऐसा कुछ हो रहा है दैट यू'ड लाइक अदर्स टू नो ऑफ, जो कम्युनिटी के लिए खास रूप से हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर भेज दें। आप ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
3: वैसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, आपको बता दें कि लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया आ रहे हैं ऑकलैंड, और एक बहुत ही ज़बरदस्त रात ऑफ लाफ्टर एंड एंटरटेनमेंट लेकर विद गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर, ये होगा फ्राइडे 3rd July को। अब बहुत टाइम बाकी नहीं रह गया, अराउंड 3 weeks टू गो, फ्राइडे 3rd July को ये होने जा रहा है 7:30 PM से विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में। ये एक बिल्कुल नया कॉमेडी है जहां पर गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर, जिसकी वजह से काफ़ी हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। एकदम विटी डायलॉग्स और साथ में रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स आपके लिए विद क्लासिक गुजराती ह्यूमर, गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, सिद्धार्थ रंदेरिया का गुज्जू भाई प्रोडक्शंस। और टिकट्स अब आपके लिए अवेलेबल हैं, याद रहे आप टिकट्स इसके लिए ले सकते हैं premiertickets.co.nz विजिट करते हुए, जहां से जल्द अपने टिकट्स आप ले ले टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज।
4: तो रिमेंबर दिस इज समथिंग जिसका हिस्सा आप बेशक बन सकते हैं, ये नाम ही काफी है, जैसे ही ये नाम सिद्धार्थ रंदेरिया जो है ये बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इट्स डेफिनेटली अ बिग hilarious you know opportunity for you to witness.
3: तो जो नाम है टाइटल है इसका ना,
4: इवन दो एंटरटेनिंग है,
3: आई डोंट अंडरस्टैंड और स्पीक गुजराती अपार्ट फ्रॉम केमचो, लेकिन ये गुज्जू भाई
4: केमचो बोलना इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुजराती आ गई।
3: आ गई भाई 0.0001% आ गई।
4: नहीं, केमचो बोलने से गुजराती अगर सबको आ जाती तो पूरी दुनिया को आती है।
3: हाँ, तो नाम के बारे में ना कि गुज्जू भाई नहीं एक्सचेंज ऑफ, ये नाम जब आप सुनते हैं वो नेचुरली एक स्माइल यू फील।
4: तो इट्स समथिंग दैट यू नो कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो हिलेरियस है और कुछ तो ऐसा है दैट यू डेफिनेटली वुड वांट टू एक्सपीरियंस, एंड इफ यू एक्सपीरियंस इट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो रिमेंबर 3rd of July इज नॉट फार अवे, 3 weeks टाइम आई थिंक, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये रहेगा। premierTickets.co.nz विजिट करते हुए अपने टिकट्स जल्द से जल्द आप ले लें।
1: Show with Vijay and Pooja.
0: Hey, dekho maa gaye.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Happy is finding the sun and not moving all day long. Animates. We make happy happen.
8: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
9: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
11: मुझे भी।
10: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
12: Okay, everyone, I'm calling an important meeting for next Tuesday afternoon.
13: Sounds important.
12: It's bloody important. It's a bloody important meeting.
13: A bloody important meeting?
12: Bloody important. We're giving blood and plasma as a blood group.
13: Oh, I've always wanted to be in a group.
14: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
15: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
16: क्यों क्या हुआ
15: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
17: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 26 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और अब वक्त हुआ कुछ और इंटरेस्टिंग. घंटे की शुरुआत में ही आपने कहा था ना कि इनाम जीतने के मौके आपको मिलने वाले हैं.
3: बिल्कुल, हम आपको बेहतरीन मौके जो ये देते रहते हैं भाई विजेता बनने की, बिकॉज इतने सारी चीजें हो रही है. और आई पर्सनली फील ऑनेस्टली आई डिडंट रियलाइज कि आज थर्सडे है until and unless आज यू नो 8 बजे के बाद आई थिंक कुछ तो बात हो रही थी. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि यार आज थर्सडे हो गया एंड कल इज फ्राइडे, देन दिस वीक इज ऑल्सो गॉन. वो रियलाइजेशन नहीं होता है. लाइफ इतनी फास्ट यू नो रफ्तार से भाग रही है कि कब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है. एंड ऐसे में अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जस्ट टू यू नो टेक सम टाइम रिलैक्स एंड टू एंजॉय, देन व्हाई वुड यू से नो? आई मीन इट्स नॉट अ राइट थिंग टू से नो. सेंसिबल थिंग है ही नहीं है. इसीलिए आपको हम बहुत सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं टू वाइंड डाउन, टू रिलैक्स, टू एंजॉय. एंड वन सच अपॉर्चुनिटी 25th ऑफ जुलाई को आपको मिलेगा. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से. सो एट द ट्रस्ट अरेना ये होने वाला है 25th ऑफ जुलाई को, जहां पर द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं एक शो लेकर सुपर सिटी ऑकलैंड. सो न्यूजीलैंड के किसी भी कोने से फिलहाल अगर आप हमें सुन रहे हैं एंड यू आर अ राहत फैन, यू लव टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स, चाहे वो बॉलीवुड के गानों के थ्रू आप इनको जानते हैं, चाहे इनकी कवालियाँ आपने सुनी हैं, चाहे आपने इनके जो रेंडिशंस है ये सुने हैं नुसरत फतेह अली खान, या फिर आपने इनकी सूफी सॉन्ग्स जो है ये सुने हैं, जो भी आपने सुने हैं और जिस वजह से आप इनको पसंद करते हैं और उस वजह के लिए कह सकते हैं उतना काफ़ी है वो वजह आपके लिए कि आप आकर इनको 25th ऑफ जुलाई को देखें एट द ट्रस्ट अरेना. सो ग्रैब योर टिकट्स, dryTickets.com. रिमेंबर www.dryTickets.com. ये आपको विजिट करना है और इसे विजिट करते हुए आप ऑल द वे टू ट्रस्ट अरेना पहुंचते हुए ऑन द 25th ऑफ जुलाई राहत फतेह अली खान को एंजॉय कर सकते हैं.
2: और अभी वक्त है आपको एक डबल पास जीतने का मौका हम देना चाहेंगे. इफ यू वांट टू विन दिस डबल पास एंड बी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट, आपको कॉल करना है. रिमेंबर द नंबर टू कॉल इज 0800 00 HUM, 0800 00 4866. और आपको कॉल करके ऐसा कोई एक गाना बताना है राहत फतेह अली खान का दैट रिफ्लेक्ट्स योर करंट लाइफ सिचुएशन या किसी खास की याद आपको दिलाता है, तो उनका कोई एक गाना. और आज वो गाना नहीं बताना है ना. कल क्या गाना बताया था पूजा ने?
3: सनो एक पल चेन्ना है.
2: हाँ, लास्ट टू डेज से ब्रेकफास्ट में वही गाना
3: वो गाना आ रहा है. पर पहला जब कॉल आया था विच वाज ऑन ट्यूजडे, तब उन्होंने बताया था कि मेरे लिए, क्योंकि मेरे को चैन ही नहीं मिलता किसी चीज में. और जब वेंसडे को कॉल आया तो पूजा ने अपने पति के लिए डेडिकेट किया कि उनके बिना उनको चैन नहीं मिलता.
2: तो चलो
3: डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में था, पर हाँ आज हो सके तो कोई और गाना. लेट्स सी हाउ मेनी राहत सॉन्ग्स डू यू गाइस एक्चुअली नो ना.
2: या एग्जैक्टली 30 seconds का टाइम है आपके पास. लाइंस हम खोल चुके हैं 0800 00 4866. आपको पास चाहिए था. यू वांटेड टू वॉच उस्ताद राहत फतेह अली खान. इनके साथ आई थिंक लगभग 30 और मेंबर्स आ रहे हैं हु विल बी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. तो ये एक एक्स्ट्रावेगांसा होने जा रहा है और ये 25th ऑफ जुलाई को रहेगा एट द ट्रस्ट एरिना. कमाल है. आई थिंक ये टिकट डबल पास अभी तक
3: किसी को नहीं चाहिए.
2: अभी तक
3: नहीं चाहिए तो इट्स ओके, हम भाई रख लेंगे, हमारे काम आ जाएगा. क्या ही करें हम.
2: अभी तो गौरव हैं, कुणाल, तुषार, सुधीर, रेनू, एक और तुषार हैं, राजीव, पूजा हैं, एंथनी और केवल, इन सभी के नाम ड्रो में चले गए हैं. एंड आप में से किसी एक को ये मिल सकता है. लेट्स सी हूज ऑन द लाइंस दिस मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो,
4: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
3: बढ़िया जी, हम तो एकदम बढ़िया है. आप कैसे हो?
4: बढ़िया बढ़िया. बलजीत बोल रहा हूँ इधर से.
3: हाँ जी बलजीत, बताइए आप कौन सा गाना.
4: अभी जी वो गाना तो बस एक ही, वो इसलिए मेरे को ये वाला पसंद है क्योंकि नुसरत फतेह अली खान का मैं फैन हूँ. तो उन्होंने राहत फतेह अली खान ने उनका गाना गाया तो मैं दिल लगी बोल जानी पड़ेगी
3: जी.
4: सो दैट्स आई नो दिस सॉन्ग फ्रॉम माय टीनेज, सो आई बीन लिसनिंग टू ये वाले सॉन्ग को.
3: ओके,
2: और ये गाना सुनते हैं तो किसी की याद आती है आपको?
3: किसी की याद आती है आपको? या
4: याद तो किसी की नहीं आती, बट ये अच्छा लगता है गाना, थोड़ा रिलैक्सिंग है.
2: रिलैक्सिंग है, चलो अच्छा. कोई नहीं बलजीत, थैंक यू सो मच कॉल के लिए, आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं। नाउ अब कॉल्स आ रहे हैं बट यू हैव टू वेट एंड लिसन आउट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
6: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 22 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंडअप भी हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में,
1: तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है. लेकिन उससे पहले चलिए आपके लिए एक और एक अपडेट जो है ये हम लेकर आए हैं. दिस इज समथिंग विच वी कॉल अनदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. थिएटर, प्ले, ड्रामा, ये सारी चीजें इतनी एक्साइटिंग होती है और इसका पता आपको तब तक नहीं चल सकता जब तक आपने इसे एक्सपीरियंस ना किया हो. ऑफकोर्स द पीपल हु लव टू परफॉर्म स्टेज थिएटर, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है. बट एज एन ऑडियंस अगर कभी आपको मौका मिले टू सिट देयर एंड विटनेस, देन दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. एंड इफ यू ऑलरेडी नो कि कितना कमाल का होता है जब आप थिएटर्स में प्ले वगैरह जो ये जाकर देखते हैं, तो वो तो आपको पहले से पता है. सो डेफिनेटली चाहे ये आपका फर्स्ट टाइम होगा या फिर आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यू'ड लाइक टू ट्राई इट अगेन, दोनों मींस में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. क्योंकि इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं बलून डॉग. बलून डॉग की कमाल की बात यह है कि इसे परफॉर्म कर रहे हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन. बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है ये और ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड में बहुत फेमस है. वर्ल्ड वाइड इन्होंने न्यूजीलैंड को काफ़ी पॉपुलैरिटी दिखाई है और साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कह सकते हैं लिखते भी बड़ा कमाल के हैं. लेकिन ये जो कहानी है बलून डॉग की, इसका जो स्टेज पर वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है, एक डीपली मूविंग कहानी है एक नए प्रोडक्शन के साथ जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की बिलवड स्टोरी काबुलीवाला उससे इंस्पायर्ड है. सो दिस स्टोरी इज सेट इन द 21st सेंचुरी यही ऑकलैंड में और ये जो ब्यूटीफुल सी कहानी है आपको देखने को मिलेगी एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल और साथ में एक लोनली माइग्रेंट. जब वो हम बेसिकली एज एन इमिग्रेंट एज एन माइग्रेंट हम एक नए देश जाते हैं और हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती है, हम किसी को नहीं जानते हैं आसपास, तो सिचुएशन क्या होती है शायद हम में से कई लोग ये पर्सनली समझते हैं. लेकिन एक कहानी के रूप में इसे देखने का मौका आपको मिलेगा जहां पर जब इस 5 साल की बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट के बीच की दोस्ती जो है ये उनकी फैमिली तक पहुंचती है, उनके आंखें जो है एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ होते हैं जो कई लोगों के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है. द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफकोर्स द कनेक्शन जो एक दूसरे के साथ होता है विच इज बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड ऑफकोर्स सर्कमस्टांसिस. तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडियन इंक थिएटर कंपनी के लेटेस्ट प्रेजेंटेशन बलून डॉग से और ये 20th of June तक चलता रहेगा. आज 11th of June है, मतलब 9 more days to go, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप टिकट्स ग्रैब करें iticket.co.nz विजिट करते हुए इसके लिए. विच एवर डे यू प्रिफर आप उस दिन का टिकट लें एंड बलून डॉग जरूर जाकर वॉच करें. पर ऑन द अदर हैंड आपको हम पासेस जीतने का मौका भी दे रहे हैं.
0: डबल पास अगर आपको जीतना है, हमारा फेसबुक पेज आप विजिट करें, फीचर्ड फोल्डर में द बलून डॉग का पोस्टर आपको मिलेगा, उसे आप लाइक करें और उसके कमेंट सेक्शन में अपने किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को टैग कर दें. इट्स दैट सिंपल. रिमेंबर ये फीचर्ड फोल्डर में ही ऊपर आपको मिल जाएगा, क्लिक ऑन द पोस्ट, लाइक करें उसको एंड टैग अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर कमेंट सेक्शन में एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ. दैट्स वेरी सिंपल. 19 मिनट रह गए हैं अब 10 बजने में.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: I'm Sophie, and my partner recently injured his shoulder playing basketball. But he saw a physio, and she gave him a clear plan. She showed him exercises that were right for him, and how to use things around the house instead of weights. And it worked. He recovered in time for the birth of our twins, and he was able to hold them in each arm. It was pretty special.
2: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
3: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: Okay, listen up, team. We've got a bloody important game next week, so I expect everyone at training on Thursday. No exceptions.
10: Sorry, coach. We've got a bloody important meeting then.
9: What bloody important meeting?
10: We're giving blood and plasma. It's a blood group.
9: Oh, what didn't you say?
11: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
12: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mom without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: What's going on?
16: डेली राउंडअप में जो न्यूजीलैंड के सबसे एक्सपेंसिव सबर्ब्स हैं बाय मीडियन वैल्यू, ये रिवील हो चुका है. मिशन बे इज़ एट $2,202,901, क्वींसटाउन $2,249,958, रोमवेरा इन ऑकलैंड $2,275,365, वेस्टमियर ऑकलैंड में $2,279,939, पॉन्सनबी ऑकलैंड में $2,326,690, एप्सम इन ऑकलैंड $2,333,916, पानेल इन ऑकलैंड $2,427,266, नंबर थ्री पर कैल्विन हाइट्स इन क्वींसटाउन $2,478,128, नंबर टू पर सेंट मैरीज बे इन ऑकलैंड $2,872,149, और हर्न बे ऑकलैंड में इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सबर्ब इन द कंट्री, जहां पर एक घर का मीडियन प्राइस इज $3,029,577.
17: क्या बात है भाई, मीडियन प्राइस 3 मिलियन में. Very interesting. So this can actually help you make a decision as well. अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड आपका बजट कैसा है, क्या है, उस हिसाब से भी एरिया आप देख सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑकलैंड बेसिकली, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि ऑकलैंड के बाहर अगर आप रहते हैं, आपका सिनारियो सिचुएशन यू नो वहाँ पर कैसा है. फिलहाल एक खबर आ रही है ISB बैंक के बारे में. कहा गया है ISB बैंक हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू पे $6.731 million, द लार्जेस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पेनल्टी एवर, जो न्यूजीलैंड में इम्पोज किया गया है. Why was ASB fined? अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो penalty है, it followed after an investigation जो Reserve Bank of New Zealand ने किया था, जिससे ये पता चला कि ASB का anti-money laundering यानी कि AML system inadequate था for about 6 years. जो बैंक है इन्होंने एडमिट किया कि 7 ब्रीचेस हुए हैं ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग लॉज के, जिसमें फेलिंग टू प्रॉपरली मॉनिटर कस्टमर ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, इनएडिक्वेट चेक्स ऑन सम कस्टमर्स ये सामने आया है जिसमें फॉरेन ट्रस्ट्स इंक्लूडेड है, नॉट रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज क्विकली इनफ ये लिस्ट किया गया है, फेलिंग टू कैरी आउट एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस जहां पर रिक्वायर्ड था, और नॉट एंडिंग सर्टन बिजनेस रिलेशनशिप्स जबकि वो जरूरी था. ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स जो मॉनिटर हो रहे हैं, इट हेल्प्स बैंक्स डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी जो कि लिंक हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग से. और रिजर्व बैंक का कहना है कि ये जो फेलियर्स हुए हैं, इसका मतलब ये है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शायद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस किए हों विच नीडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और इससे फाइनेंशियल क्राइम जो है ये प्रिवेंट हो सकता. इस मामले में ISB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है विक्टोरिया शॉर्ट, इनका ये कहना है कि कोर्ट की फाइंडिंग्स को वो एक्सेप्ट करते हैं और इस मामले में उन्होंने माफी भी मांगी है. उनका ये कहना है कि ये जो बैंक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है फॉर द शॉर्टकमिंग्स, और वो आगे से चलकर जो ब्लैक लॉग्स है इन्हें मॉनिटर करेंगे, दैट वर क्लियर्ड एक्चुअली बाय फरवरी 2024. ISB ने इन्वेस्ट किया है हेवली इन न्यू टेक्नोलॉजी, स्टाफ ट्रेनिंग और लार्जर फाइनेंशियल क्राइम टीम एज वेल.

0: आज की पहली बात, कहते हैं कि रूप और रुपए का कभी अहंकार मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी दरवाजा पूछ कर नहीं आती।
1: बिल्कुल सही। और दूसरी बात,
0: लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:03 होने वाले हैं. व्हाइल आई स्पीक, एज आई स्पीक, आई कैन से दैट भाई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है. एंड आई नो ऐसी ठंड के मौसम में ना बस मन करता है चाय पीते रहो या कुछ अपने आप को किसी ना किसी तरीके से गर्म रखो. वैसे जब ठंड का तमाचा जब पड़ता है ना तो कोई भी एक्चुअली ये बात हमें समय के लिए कहनी चाहिए कि जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई भी फकीर हो तो वो भी बादशाह बन जाता है ना. डिपेंड्स आपकी लाइफ में क्या फेज चल रहा है, ये टाइम आपको बता देता है योर राजा और रंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. लेकिन एक बात और भी है इंपॉर्टेंट जाननी कि आपके लिए आज माय टाइम जब मैं लेकर आई हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ है. एक तो डबल पास के जो चांसेस हैं आपके लिए बतेरे हैं मेरे पास यहाँ पर. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. और अभी मैं थोड़ी देर बाद राहत फतह अली खान जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और आपकी कॉल का वेट करूंगी. कोई गाना याद कर लेना जब तक, हाँ, कि जो गाना आपको लगता है बड़े दिल से आपको छू जाता है, किसी तरह से आप उस गाने के साथ रिलेट करते हैं तो समझ लो कि मैंने आपको एक डबल पास दे दिया. ठीक है, मतलब आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया. भाई ये सब चीज़ें तो चलती रहती है क्योंकि जब आप हम सुनते हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और ये कमाल आपके लिए रोवा ऐप पर भी हम लेकर आ जाते हैं. तो यहाँ से स्ट्रेट अवे हम चलते हैं कशिश फूड्स की ओर. कशिश फूड्स जो आपके लिए लेकर आते हैं बेशुमार प्रोडक्ट्स और ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो बहुत ही रीजनेबल दामों पर आज भी मार्केट में कितने प्राइसेस बढ़ चुके हैं बट आप इनके दाम देखिए काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं. तो कशिश फूड्स की ओर से माय टाइम लेकर मैं कशिका हाजिर हूँ 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा और ये 10 से 12 बजे का जो एक सफ़र है आपके लिए मंडे टू फ्राइडे चलता है. गाना बजाती हूँ ये बताते हुए कि थोड़ा वार्म अप करने के लिए. ऑलराइट, वार्म अप इसलिए क्योंकि इतनी ठंड है तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ गर्माइश लाई जाए.
0: बजाओ क्या

0: Birds are dumb.
1: एक्सपर्ट अड्डा में खाली एक ही बात कहना चाहती हूँ दैट आपके साथ मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो आप रिलेट कर पाएंगे. बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, ऑफिस शाउटआउट का वक्त भी होने वाला है, तो अपना कोई भी ऑफिस शाउटआउट अगर देना है 5599 पे आप मुझे दे सकते हैं. नाउ हमारे हम कभी हाथ जो होते हैं एक जगह रह जाते हैं, पैर हम क्रॉस करके बैठते हैं, उसके बाद सडनली आपको लगता है कि पैर सो गया, हाथ सो गया, ये एक टिंगलिंग सी फीलिंग आती फिर चली जाती है. लेकिन अगर ये टिंगलिंग सी फीलिंग आपको बार बार आने लग जाती है रिपीटेडली, प्रॉबेबली लोग इसे डिसमिस कर देते हैं कि ये थकावट से हो सकता है, पुअर पॉस्चर की वजह से हो सकता है, या एज से रिलेटेड हो सकता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूरोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि जो टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है नर्वस सिस्टम में, इट इज सिग्नलिंग कुछ डीप हो रहा है एंड दैट नीड्स सम काइंड ऑफ अटेंशन. हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये काम करता है जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं कनेक्टेड टू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हर पार्ट हमारी बॉडी का, एंड कॉन्स्टेंटली ये मैसेजेस भेजते रहते हैं ताकि ये लोगों को कहें कि भाई चलो यू मूव, यू थिंक, यू रिएक्ट. अब ये सेंसेशंस जो है विच आर रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, एक्चुअली ये देखा जाए हमारी बॉडी के लिए कम्युनिकेशन चैनल बन जाते हैं. इन केस हमारी नर्व, स्पाइन या ब्रेन स्टार्ट हर्टिंग समथिंग लाइक दैट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल कॉज हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, इट्स सिग्नलिंग आउट आपके लिम्स के लिए कि जो टिंगलिंग बर्निंग नमनेस है और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक की तरह फीलिंग होता है. इन सिंपल टर्म्स आपकी नर्व्स जो है दे आर गेटिंग इरिटेटेड, दे आर गेटिंग डैमेज, दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड, जो एक फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे. दे कैन सेंड फॉल्टी सिग्नल ब्रेन को. इससे क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है टिंगलिंग का, बर्निंग का, नमनेस का, क्रॉलिंग सेंसेशन या सडन शार्प पेन्स आपको हो सकते हैं बिना किसी रीजन के. द ट्रिकी थिंग इज दैट ये आप शायद नोटिस नहीं करते, ओकेजनल टिंगलिंग वगैरह होती है जो टोज में होती है जब आप सो रहे होते हैं, या माइल्ड एक बर्निंग सेंसेशन फिंगर टिप्स पे होने लगती है आफ्टर अ लॉन्ग डे. अब ये सिम्टम्स जो है फ्रीक्वेंट होते चले जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर दम. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है जो टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन का है पेरीफेरल न्यूरोथेरेपी, न्यूरोपैथी. ये कंडीशन है जो पेरीफेरल नर्व्स को आपके इफेक्ट करती है. अब कहा जाता है कि जो नर्व्स है दिस इज़ आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये डैमेज होना शुरू होती है, ये एक सिग्नल देना शुरू करते हैं आपकी बॉडी के, आपके नर्वस सिस्टम्स को. कॉमन सिम्टम्स है पेन होना शुरू होता है, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन. तो ये कंडीशन जो है सेवरल रीजंस की वजह से डेवलप होने लग जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, विटामिन डिफिशेंसीज लाइक B12, ऑटो इम्यून डिजीज़ या किडनी डिसऑर्डर, सर्टेन इन्फेक्शंस, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन या साइड इफ़ेक्ट्स किसी मेडिकेशन के. कभी कभी ये होता है कि हम हेल्थ को अपने इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड आपकी नर्व्स को हेल्थी होना इम्पॉर्टेंट है, बट समथिंग इज़ प्रेसिंग ऑन इट, और ये होता है नर्व कंप्रेशन. ये नर्व कंप्रेशन इट कैन लीड टू समथिंग्स लाइक कार्पल टनल समथिंग, जहाँ पे आपके हैंड्स को इफेक्ट कर देता है टिंगलिंग और नमनेस की वजह से, फिर आप उनसे डील ही नहीं कर पाते हैं. और आपको बता देते हैं कि ये जो यूनिक सिस्टम है हम नर्वस कंप्रेशन के, इट्स अ पाथवे जहाँ पे एक पिंच्ड नर्व होती है आपकी इन द नेक फॉर इंस्टेंस, वो टिंगलिंग शुरू हो जाती है शोल्डर डाउनवर्ड्स यू नो टू द फिंगर्स, ये जो आपको एक लोअर बैक की तरफ आनी शुरू हो जाती है. आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ आर इवन मी आई कैन रिलेट टू इट. लेकिन हर केस में हम इसे कह सकते हैं कुछ वार्निंग्स जब आती हैं, कंटिन्यूस हेडेक्स, सीजर्स या फिर विजन चेंज, बैलेंस की प्रॉब्लम, पर्सनालिटी चेंज या आर्म या लेग्स में वीकनेस होना. इम्पॉर्टेंटली व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी शुड इवेल्युएट जब ये चीज़ें अकंपनी होती विद वीकनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पुअर कोऑर्डिनेशन, या फिर आपकी मेमोरी के में प्रॉब्लम होनी शुरू, विजन में आपके फोकस नहीं होता, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, अंडरलाइंग इश्यूज जो होते हैं इनके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए. नर्व कंडक्शन स्टडीज होती हैं और समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी या MRI स्कैन फॉर ब्रेन और स्पाइन, ये इंपॉर्टेंट है. तो कोशिश कीजिए जब मैंने आपको ये बातें जो सिम्टम्स बताए हैं इन्हें ईजी मत लीजिए, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ.
0: Time with Kashika.
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में. आप ही तो नहीं.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 डिग्री है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
5: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: The temperatures are falling, and for today only, so are the prices at Briscoe's one-day price drop. All Zip electric blankets, 60% off, plus shop huge 60% off winter deals today only. Open late at Briscoe's. See online for TCs and store hours.
8: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry, where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
9: Ah, what was that?
8: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
10: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5K savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
11: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
12: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic holiday destinations in the Pacific. Fly return to Samoa from just $795, or to Tonga return from only $735. Take that well-deserved holiday in Fiji and beyond with Fiji Airways. Sail on now. Book today at fijiairways.com or call your travel agent.
13: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
14: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
13: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
14: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
13: मैं वापस आऊंगा, releasing in cinemas on 12th June, distribution partner Forum Films, rating TBC.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Office shout out.
1: मैं ध्यान से सुन रही हूँ कि आप कितने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हो। Ash from Wellington, आपने क्या क्या कमाल करते हैं आप जब आप लिखते हैं कुछ भी, आई मीन आई लव इट। तो वेरी हैप्पी कोल्ड एंड टिंगलिंग वाली गुड मॉर्निंग। ये टिंगलिंग वाली गुड मॉर्निंग, मैं आपसे बात ही कर रही थी इतनी देर में आपका मैसेज आ गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैसे एक बात है, थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बचपन की यादों को मैं आपको झिंझोड़ना चाहती हूँ, बचपन की यादों को, जहाँ पे मैं कह सकती हूँ हम उन कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को टच कर जाती थी। लगता था कि हमारे घर पर भी कोई काबुलीवाला आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचिए, एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन ने इन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक 21st century का तड़का लगा के जहाँ पे उन्होंने इसको एक नए प्रोडक्शन की तरह से यहाँ पे पेश किया है। प्रीमियर इसका किया है वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग। इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए बलून डॉग लेकर आ रही है। और कमाल का ये है, इसका एक सोल्ड आउट प्रीव्यू शो था, उसके बाद ये 3rd June से 20th June तक हर रोज़ क्यू थिएटर में होने वाला है। iticket.co.nz के जरिए आप टिकट जाके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अमेजिंग सी कहानी को दर्शाया हुआ देखना चाहते हैं, जहां पर इंडियन इंक जो है अपने लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस को, उसमें ह्यूमर का तड़का, दिल का तड़का, दिल की बातों का तड़का, या फिर ओरिजिनल लाइव म्यूजिक, डांस, एक थिएट्रिकल मैजिक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये बलून डॉग एक पावरफुल सेलिब्रेशन है ऑफ द करेज एंड कनेक्शन, किस तरह से इट्स ऑल बियॉन्ड क्लास कल्चर एंड सर्कमस्टांसिस। तो डेफिनेटली इट्स रिकमेंडेड दैट ये ज़रूर देखने जाएं आप, और इसका डबल पास जीतने के लिए आप हमारे फेसबुक के पेज पे चले जाएं और वहाँ जाकर आप अपने फ्रेंड को टैग करें जिनके साथ आप ये देखना चाहते हैं। सो एश फ्रॉम विलिंगटन, ये गाना अब आपके लिए, आपका मैसेज सुना, मज़ा आ गया।
16: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ब्रांच नहीं है।
1: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि राहत फतेह अली खान जी हमारे सुपर सिटी में अगले महीने पधार रहे हैं, और ऐसे में हमारे पास डबल पास देने का एक बहुत सुनहरा मौका है। मैं चाहती हूँ आप में से जितने लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ कॉल करें, गाने किसी तरह से आप रिलेट कर पाते हैं। बाय द वे, एक चीज़ से आप अगर रिलेट कर पाते हैं श्रीमद् भागवत कथा से, तो आज आखिरी दिन है श्री राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ पर पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जो हैं आपके लिए भागवत कथा लेके आने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और ये 4 से 7:30 बजे तक चलने वाला है।

0: Eat better, live better. Now is the time जहाँ पर मैं आपकी एंट्री लेने वाली हूँ और आपको कॉल करना है 0800 00 हम पर. Now what you have to do is, now बोल रही हूँ ना ज़्यादा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आपकी now कॉल चाहिए है, तो आप मुझे भेजिए 5599 पे. टेक्स्ट नहीं करना है भाई मेरे, आप मुझे सिर्फ कॉल कीजिए 0800 00 हम पर. ऐसा कोई गाना जो आपकी करंट लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, कोई ऐसा गाना जो आपकी मेमोरी को रिफ्लेक्ट करता है कि अरे इस गाने के साथ तो मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, कोई क्रिएटिव डेडिकेशन अगर आप देना चाहते हैं जल्दी कीजिए 0800 00 हम पर कॉल कीजिए, क्योंकि यही मौका है जहां मैं आपकी एंट्री लेने वाली हूं फॉर अ डबल पास, एंड दैट टू फॉर राहत फतेह अली खान जी. आप 25th of July के दिन ये परफॉर्म करने वाले हैं एट द ट्रस्ट अरीना, और ये मौका बिल्कुल मत गवाइएगा. कहाँ, कब, कैसे ये टिकट जो है आपके लिए हो सकती है? JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions एंड शहजादा Productions आपके लिए लेकर आ रहे हैं. वैसे टिकट्स खरीदने हैं तो dryticket.com के जरिए आप ये टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन डबल पास जीतना है तो 0800 00 हम पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं. अच्छा, आपने टेक्स्ट किया है, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये गाना राहत जी का नहीं है, बट यस 0800 00 हम पर आपको कॉल करना है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल क्वालिफाई फॉर दिस. टाइम आ चला है, जल्दी से कॉल करो अगर आप कर सकते हैं तो. एंड ये कॉल अब आ गई मेरे पास, चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर. हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
1: गुड मॉर्निंग, मैं गौरव दिस साइड.
0: हेलो गौरव, कैसे हैं?
1: मैं बस बढ़िया. अब मैंने एक्चुअली पूरा सुना नहीं था, आपने राहत फतेह अली सर का गाने के लिए पूछा था या नॉर्मल गाना कोई भी जिससे याद आती
0: है? अरे राहत साहब का भी,
1: तो फिर तो राहत फतेह अली खान का एक गाना है जग सुना सुना जाके,
0: लवली सॉन्ग ना.
1: जब मेरी वाइफ नहीं थी यहाँ पे तो मैं वही गाना गाता रहता था.
0: ओ माय गॉड, जग सुना सुना आ गई वापस.
1: अब वापस क्या, एक्चुअली हम नए हैं ना यहाँ पे.
0: हाँ.
1: तो मैं पहले आ गया था, एक महीना पहले.
0: हाँ.
1: तो फिर एक महीना बाद आई, तो तब तक मैं यही सुन रहा था.
0: क्या भाई?
1: वो सुनवा रही थी मेरे को कि गौरव सुन तू ये.
0: ओह माय गॉड, दिस इज नॉट राइट. अच्छा अब आ गई ना बीबी.
1: हाँ जी हाँ जी.
0: क्या नाम है बीबी का?
1: भव्या सिंह.
0: हाँ भव्या सिंह. चलो जी भव्या जी, आपको ये मैं गाना डेडिकेट कर रही हूँ. आपके हस्बैंड अभी तो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन चलो कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ये कहीं भी मौका मिले गाना बजा पाऊँ तो ठीक है. बट आपका नाम कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया है.
1: थैंक यू सो मच,
0: माय प्लेजर, टेक केयर, बाय. तो ये तो गौरव जो थे, इन्होंने जग सुना सुना है गाने के बारे में बात करी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अगर कोई ड्रीम है आपका तो प्लीज़ ये ड्रीम आप का मुझे बताएं. 5599 पे टेक्स्ट करें. मेरी कोशिश यही है दैट मैं आपकी ड्रीम को इंटरप्रेट कर पाऊँ.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Nissan Big Deals, sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat, plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
2: Otara, oh yeah.
3: South Auckland's buses just became a lot better.
2: Grey South Road, now even greater.
3: With better bus routes, more frequent buses, and more.
2: Weymouth Road, way better buses.
3: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
4: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho, to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
6: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
5: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
6: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
5: मैं वापस आऊंगा, releasing in cinemas on 12th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary. Dil se dil tak.
7: अब भी दिल से दिल तक तो मैं पहुंच रही हूं, लेकिन अभी के लिए एक मेरे पास जो सवाल आया है, तो ड्रीम टू बी एन आर्किटेक्ट एंड ए सक्सेसफुल पेंटर एंडेड अप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. अरे आपने ड्रीम किया था, लेकिन ड्रीम क्या था? यू ड्रीम टू बी एन आर्किटेक्ट एंड अ सक्सेसफुल पेंटर एंडेड अप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. गौरव, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू बाय द वे. आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं. और आपको एक बात बताऊं, अभी जो न्यूज़ आ रही है ना, बहुत डिफरेंट है. एक सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चर जो है अनाउंस किया जा रहा है हेल्थ एंड न्यूजीलैंड फॉर हॉस्पिटल्स इन सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड. इससे क्या हो रहा है कि एक नेट लॉस होने वाला है 17 रोल्स का. एंड ये पब्लिक सर्विस एसोसिएशन की वजह से के जरिए पता चला है कि 96 रोल्स अक्रॉस तारानाकी, वाइकाटो, बे ऑफ प्लेंटी, टायराफिटी जो है ये डिसएस्टैब्लिश किए जाने वाले हैं. और फर्दर 30 वेकेंट रोल्स जो हैं उसको भी हटाया जाने वाला है. इन दे प्लेस 108 न्यू रोल्स विल बी क्रिएटेड, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 17 जॉब्स. ये अफेक्टेड हॉस्पिटल्स टोरंगा के हैं, फाकटाने के हैं, गिस्बन हॉस्पिटल के हैं, हावेरा के हैं, तारानाकी बेस हॉस्पिटल के, रोडा रीड कंटिन्यूइंग केयर एंड और भी काफ़ी जगहों के, थेम्स हॉस्पिटल वगैरह के. ये बताया कि नो पेशेंट इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ क्लिनिकल इम्पैक्ट बाय द प्रपोजल. सो या दैट्स वन न्यूज़. बट अब मैं बात करती हूँ ड्रीम के बारे में, क्योंकि अपनी ड्रीम तो ये किया था, लेकिन क्या होना चाहिए था ड्रीम को. तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपका ड्रीम आया था फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी. तो आपने कहा कि यू डेफिनेटली नो कि सम काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन ये होती है फॉर अ प्रेगनेंसी या बेबी. जो ऑफन जो ऐसे न्यू बॉर्न में आते, कोई नई रिलेशनशिप की बात होती है, यू हैव टू गेट रेडी टू इस्टेब्लिश अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ क्रिएटिव इंडेवर. और साथ साथ ये इंडिकेट करता है ऑफ अ फियर ऑफ टेकिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगजाइटी. अब नई लाइफ में एक ट्रांजिशन अगर आपका होने वाला है, तो ये आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. बट अभी के लिए ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो है, जो मुझे लगा कि इन्हें पसंद आया था, एंड कोशिश यही है कि इस गाने के बारे में जो वो बात करते अपनी बीवी को लेके, तो होपफुली ये गाना पसंद करें आप.

ये एक ऐसी फिल्म का गाना है जिस फिल्म के बाद बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर और ये जो आई थिंक प्रोडक्शन हाउस था टी सीरीज, ये सब लोग एकदम से अमर हो गए, उनके गाने उनका सब कुछ, लेकिन इन दो एक्टर्स जो लीड एक्टर्स थे वो कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। बट मूवी के गाने आज तक आशिकी के दिल को छू जाते हैं।

0: और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो भाई मौसम तो ठंडा ठंडा है ही है और इसके साथ साथ टुडेज हाईज इज गोइंग अप टू 15, ओवरनाइट टेम्परेचर विल बी 7. हल्की हवाओं के साथ साथ इस समय आप 8 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. 5:12 पर सनसेट बताया गया है.

0: सौरभ नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 11:04 होने वाले हैं एज आई स्पीक. और इस घंटे पर मेरे पास एक सिक्स वर्ड की स्टोरी नहीं आई अभी तक. जल्दी करो, भेजो. और साथ साथ आप के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से रेस्क्यू कर लेते हैं, ठीक है. और जीतने का मौका है आपके लिए बहुत खूबसूरत. अब ये क्या जीत सकते हैं, क्या बता सकते हैं? एंड ऑल द गुजूज इन द हाउस, आई हैव गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. अच्छा, मैंने इसके बारे में बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी के लिए हमारे जो पॉडकास्ट हैं आप सुनते हैं और इनको सराहते हैं, थैंक यू सो मच. तो आपको याद दिला देते हैं कि सैंडी एंड रोज़बी का अनफिल्टर्ड ड्राइव ये एक एशियन पॉडकास्ट में इस बार फिर जीता है और साथ साथ ये थर्ड टाइम जीते हैं, सो हैट्रिक है. सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम. वैसे इनके पॉडकास्ट का अगर आप भी दीवाने बनना चाहते हैं तो 5599 पे ड्राइव लिख के भेजें. अभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो जो इन्होंने तैयार किया है वो है शांकी सिंह, जो एक 7 फुट टॉल रेसलर है और ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं. इनकी कुछ पीछे की कहानियाँ, यू नो, BTS जो है वो आपको बताने वाले हैं. तो 5599 पे टेक्स्ट करें ड्राइव इनका ऑडियो वीडियो देखने के लिए. और वीडियो का प्रोडक्शन इंस्पायर मीडिया वर्क्स ने किया है, थैंक्स टू केतन फॉर दैट. ब्रेकफास्ट का कैचअप जो है अगर आप सुनना चाहते हैं तो BFP लिखकर आप हमें पहुंचा सकते हैं.
1: बचाओ क्या?

0: ईट बेटर लिव बेटर कशिश फूड्स आपको यही पैगाम देते हैं. लेकिन अभी तो केम छो हमारे जो गुजराती भाई बहन हैं, आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए, बिकॉज आपको एंटरटेन करने के लिए, हंसाने के लिए गुज्जू भाई आ रहे हैं. नी एक्सचेंज ऑफ स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया. भाई सिद्धार्थ रंदेरिया क्या कमाल. मैंने पिछली बार इनका शो देखा था एंड लिटिल बिट आई मीन ही वॉज प्रिटी easy to understand and he was really great in the comedy. But अब ये brand new comedy show लेकर आ रहे हैं जहाँ गुज्जू भाई हिमसेल्फ फंस जाते हैं एक unusual exchange offer में. उसके बाद serial of misunderstandings जो हैं, unexpected twist, बहुत ज़्यादा situations ऐसे funny होने वाले हैं, witty dialogues हैं, relatable funny family moments हैं और classic गुजराती humor है. पूरी फैमिली इसे इंजॉय कर सकती है. तो सिद्धार्थ रंदेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस हमेशा हर जगह जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि एंड तक आप इसे ज़रूर देखेंगे. एंड अपनी टिकट्स बुक करना चाहें तो premierTickets.co.nz के ज़रिए आप ये पिक कर सकते हैं टिकट्स और ये कॉमेडी कैरेक्टर लाइव स्टेज पर देखने के लिए गुजरात के मोस्ट लव्ड सिद्धार्थ रंदेरिया को देख सकते हैं. दिस इज़ ऑल हैपनिंग ऑन द 3rd of July 7:30 शाम को एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. टिकट जरूर खरीदेगा. मेरी 6 word स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: Streaming on Rover.
1: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
2: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
3: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
4: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
3: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalvari Wagh and Vedang Raina.
4: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
3: मैं वापस आऊंगा, releasing in cinemas on 12th June. Distribution partner Forum Films. Rating BBC.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ. अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन .co.nz.
9: Suntours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर Suntours. दैट्स 0800 478686. लिमिटेड स्पेसेस.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
11: So, my six word ki story, inhone mujhe call karke bataya, and I think I have written it right. क्योंकि इन्होंने कहा, मैंने जब वो न्यूबॉर्न के बारे में बात की थी, ड्रीम के बारे में, तो इन्होंने उसी समय एक स्टोरी बना ली. तो ओके फाइन, तो ये स्टोरी अभी मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ. क्योंकि ये स्टोरी इज समथिंग लाइक, हेलो वर्ल्ड, टाइप्ड द न्यूबॉर्न एआई. इट्स राइट राइट ओके आई होप सो. हेलो वर्ल्ड, टाइप्ड द न्यूबॉर्न एआई. इज़न्ट दैट सो ट्रू? एआई ऑफ कोर्स न्यूबॉर्न है और अपने आप ही खुद अपनी बातें लिख सकता है. सो हेलो वर्ल्ड, टाइप्ड द न्यूबॉर्न एआई. ओके एक्सेप्टेड. ठीक है जी, ये एक्सेप्ट हो गया है. बट अभी के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ. कई बार ऐसा होता है, यू नो, मैन ब्रश ऑफ सर्टन साइंस, यू नो, जहाँ पे उनको लगता है कि वो मैंने कल इसके बारे में बातचीत ज़रूर करी थी. एंड मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास उसके बाद काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया, जहाँ पे मैन की जो वेलनेस है मेक्स सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, सो मैनी थिंग्स वी डू. बट गुड न्यूज़ यही थी उससे रिलेटेड जो मैंने बताया कि इफ़ यू आर अंडर 50 एंड यू आर हैविंग अ ट्रबल गोइंग टू द टॉयलेट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इफ इट्स प्रोस्टेट रिलेटेड. और ये जो सिंपल चेक्स जो हैं फॉर अ रिस्ट्रिक्चर, ये आप ज़रूर ट्राई करा लीजिए. और ये ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हैं और दे आर इन्वेसिव एज वेल. कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो एक ही दिन के अंदर कर सकते हैं और इमिजिएटली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. सो जस्ट रिमेंबर जो मैंने कल आपको बताया था, इट इज़ एन अवेयरनेस विच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. इसे इग्नोर मत करिए. एंड देखो, आपकी डेली लाइफ में आपको जो इफेक्ट हो रहा है ना, उसमें आपको बहुत फर्क नजर आने वाला है.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सो मिड मॉर्निंग मजा में आपके साथ। अरे भाई देखिए, एक आ गया मेरे पास टेक्स्ट 4281। आपने भी एक 6-word स्टोरी भेजी है, ग्रेजुएटेड टुडे स्टिल लर्निंग एवरी डे, ग्रेजुएटेड टुडे स्टिल लर्निंग एवरी डे। 4281 आपका नाम बड़ा प्यारा है। अरे एक नाम लिखो ना साथ में तो भी मज़ा आ जाता है। ओके नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के मुझे आपके साथ डिस्कस करना है रोटी से रिलेटेड, लेकिन रोटी से रिलेटेड बात करूंगी वो बाद में। अभी के लिए मेरे पास जो डिस्कस करने के लिए नहीं, बताने के लिए है कि दी FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप जो है आपके लिए नॉर्थ हार्बर पे 15 से लेके 21 जून तक चलने वाला है, और हम बहुत प्राउड हैं टू ब्रिंग यू द स्टिक विद हम, यानी कि एक चांस मिलेगा आपको टू सी द ब्लैक स्टिक्स वुमेन जब ये डिफेंड करना चाहेंगे अपना टाइटल, और ये भी होम सॉइल पर। कैसा रहेगा जब 8 कंट्रीज एक साथ होंगी, वर्ल्ड क्लास हॉकी आप देख रहे होंगे, द बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट दैट वी हैव सीन इन न्यूजीलैंड। कई साल हो गए जो हॉकी के फैंस हैं। अच्छा आप वहाँ जाना चाहते हैं मुझे लगता है। ऐसे में सिंपल चीज़ आपको क्या करनी है, आपको हॉकी लिखना है। देखो आज मैं गलती नहीं करूँगी, आपको हॉकी लिखना है। आप ये डबल पास अगर जीत गए तो किसके साथ जाएंगे, अपना नाम और जिनको आप साथ लेके जाना चाहते हैं उनका नाम लिखिए, और फटाफट मेरे पास 5599 पे टेक्स्ट कर दीजिए। वैसे अगर टिकट्स एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं तो hockeynz.flicker.co.nz पर आप ज़रूर क्लिक कर सकते हैं एंड स्टिक विद हम इस एक्शन का पार्ट बनने के लिए। Are you ready?
1: Shockbusters. थोड़ा तो हॉल बना दे।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: I'm good.
3: मज़ा तो तभी आता है भाई. देखिए सुबीर, फ्रेंड्स के साथ आप जाएंगे हॉकी का ये मैच देखने के लिए. फैंटास्टिक. आई जस्ट लव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. खास तौर पे जब हमें इन सबको इंक्लूड करना है, इन सबको इनकरेज करना है. बाय द वे, ठंड का क्या हाल है भाई? नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड एक फ्रॉस्टी टेम्परेचर के साथ आज हम लोग उठे हैं. और मेट सर्विसेज ने बताया है इट्स नॉट कॉमन फॉर सम ऑफ द नॉर्थ आइलैंड के जहाँ पे लोगों को फ्रॉस्ट महसूस करना पड़ा. ये आईसी सी विंडशील्ड आपको ज़रूर मिली होगी. और ये जो क्लाउड जो ओवरनाइट थे उससे क्या हुआ है कि जो हमारी ग्राउंड की ब्लैंकेट यानी कि ज़मीन जो है वहाँ पर एकदम आपको आइसिकल टाइप की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई. लेकिन ओवरनाइट क्लियर स्काई था एंड देन यू वेक अप टू अ फ्रॉस्टेड मॉर्निंग. जो फाकटाने में है दे वोक अप टू 3 degrees टेम्परेचर. इट वॉज 1.1 degrees इन द नॉर्दर्न ऑकलैंड एंड 3 degrees इट वॉज इन साउथ सदर्न एरियाज. सो अप नॉर्थ कहा जाता है कि ये लो टेम्परेचर ओवरनाइट रहने वाले हैं. और साथ साथ ये स्की सीजन जो है बहुत जल्दी आने वाला है. मजॉरिटी ऑफ द साउथ आइलैंड जो है इट विल रिमेन फ्रॉस्टी. एंड जगहें जैसे कि आई कैन से अलेक्जेंड्रा इज -4.7 ऑलरेडी, सेंट्रल ओटागो इज 4.6 एंड माउंट कुक इज -4 degrees. सोच के ठंड लग रही है मुझे ऑलरेडी यहाँ बैठे बैठे. ऑकलैंड का जो है बाय द हाइज ऑफ 15, फांगरे 16 डिग्रीज, टोरंगा 16 डिग्रीज एंड टाउपो इज 12 डिग्रीज. गिस्बन एंड हॉक्स पे क्लाउडी डे रहेगा लेकिन गिस्बन में कहा जा रहा है 14 डिग्रीज अभी बताया जा रहा है. वेलिंगटन वालों आपको बता देती हूँ, एक थोड़े क्लाउड्स थे, थोड़ा फ्रॉस्टी आपके लिए तारानाकी टू वेलिंगटन एरिया ज़रूर रहे होंगे. क्लाउड्स की फोकास्ट बताई जा रही है. एंड कैपिटल में 14 डिग्रीज, पामेस्टन नॉर्थ में 15 डिग्रीज एंड न्यू प्लिमथ में 15 डिग्रीज सेंटीग्रेड बताया जा रहा है. नेल्सन टू वाला टू वेस्टलैंड जो है यहाँ पे भी फ्रॉस्टी मॉर्निंग बताई गई. मेट सर्विसेज ने बताया आइसोलेटेड शावर्स एक्सपेक्टेड है. क्या तड़का लगाते हैं ना न्यूजीलैंड में. यू नो ये हमारी समर्स को तो चलो समर्स तो समर्स थी नहीं, विंटर भी अब विंटर जैसा ठिठुर रहे हैं लिटरली.
0: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहां पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Oh no, we'll be late.
8: We'll be all right. I'll call the AA.
9: Award-winning road service, just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at AA. .co.nz.
10: The temperatures are falling and for today only, so are the prices at Briscoe's One Day Price Drop. All Zip Electric Blankets 60% off, plus shop huge 60% off winter deals today only. Open late at Briscoe's. See online for TC's and store hours.

प्रेस क्यूमिरी साइकिल में हम लोग आज रोटियों के बारे में, इस पूरे हफ्ते रोटियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोटी की चाट कैसी रहेगी? अगर आप सोचते हैं कि एक होममेड वर्जन ऑफ पापड़ी चाट बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, रोटीज को कट करना है छोटे छोटे इरेगुलर पीसेस में, उसके बाद इनको हल्का हल्का फ्राई कर दीजिए, टोस्ट कर दीजिए ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बस अब इनको क्या करना है, इसको टॉप अप करना है, दही के साथ फेंट लीजिए इमली की चटनी और पुदीने की चटनी, छोटा छोटा कटा हुआ बारीक प्याज और थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से सेव डाल दीजिए। हाँ, इतनी क्विकली रोटी की चाट बना ली हम लोगों ने। वैसे आपके पास भी कोई आइडिया है रोटी से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जिसको हम रेस्क्यू मी रिसाइकल भी कहते हैं, इसमें हम कुछ भी, किसी भी चीज़ को रेसिपी से लेके हम घर में कुछ भी है, उन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बातचीत ज़रूर करते हैं। एंड आई नो दैट यू आर इन्जॉइंग दिस वन एज वेल। तो चलो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको बताना चाहते हैं अबाउट जो हो रहा है हमारी कम्युनिटी में। और दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रही 108 अखंड हनुमान चालीसा के पाठ, और ये 13 जून को होने वाला है, सैटरडे को। परसों सभी डिवोटीज को वेलकम किया जाता है एट रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू। सुबह 8 बजे से शुरू होगा और उसके बाद कई जो मंडली हैं वो चालीसा का पाठ भी करने वाले हैं। पत उत्सव जो है ये श्री राम मंदिर में जो है ये शुरू कल से हो चुका है और 14 जून तक चलने वाला है। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज गणेश और देवी यज्ञ दोपहर 3 बजे से है, 7:30 बजे से कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और महाप्रसाद का आयोजन रोज़ किया जा रहा है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री रामलीला लेकर आ रहे हैं। माता सीता की लिए बहुत ढूंढ चल रही है, तो अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो इस रामलीला में भाग लेना चाहते हैं तो आप मास्टर अशोक से संपर्क करें ऑन 021-179-5459। और ये जो रामलीला है ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आप 8 अगस्त को 8 अगस्त के दिन कर सकते हैं।

बात है। वैसे आपने 7164 आइडिया दिया, रोटी नूडल्स बना सकते हैं। अच्छा, आई विल ट्राई दिस टुमारो कि मैं रोटी नूडल्स किस तरह से बना सकती हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी इसकी रेसिपी ढूंढने के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ आज, इन्जॉय किया एंड कुछ गाने, कुछ बातें और कुछ ऐसी सीख जो आपके साथ होती है इस दौरान, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए इकट्ठा कर करके लेकर आऊँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, इस चीज़ से दूर रहिए, इस चीज़ से हट के रहिए। बस यही मेरी कोशिश होती है एंड आई होप आई डू जस्टिस टू इट एंड यू इन्जॉय इट। तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार, जो भी इसे कहना चाहें। लेकिन अभी मेरी मुलाकात होगी आपके साथ एक मस्ती भरे मूड में कल आऊँगी, जहाँ पे झूमते हुए कहूँगी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स शुक्रवार। ओके, तो चलती हूँ अभी के लिए, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। और बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स, जिनके सौजन्य से आपके लिए ये माई टाइम 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मुमकिन हो जाता है। कमिंग अप नेक्स्ट इज नन अदर देन केतन, इनका साथ जरूर दीजिएगा। टेक केयर, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ, बाय।

0: Talks with Ketan.
1: Agya. Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalam alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is lunch box show mein. मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से, हम बोले तो 104.2 FM जहां पे चलाते हैं हम बहुत ही बढ़िया बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने। वेल यस, मैं हूं अभी से लेके 3 बजे तक बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे गपशप करने वाले हैं, अमेजिंग बातें के साथ आपको मौके भी दूंगा जहां पे आप मुझे शेयर करेंगे आपके सारे रिव्यूज, लाइक जो भी आप सोचते हैं उस पर्टिकुलर कुछ भी सिचुएशन मैंने बताई तो वहां पे आपको बस रिएक्ट करना है एंड देन यू जस्ट ईदर टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी एज वेल ऑन 0800-004-866 पे। बट अभी के लिए एंजॉय करिए ये बहुत ही खूबसूरत गाना और होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे मैसेज भी भेजिए जिसकी बात होगी थोड़ी देर में। नजर ना लग जाए, ऐश किंग की आवाज में एंजॉय करिए गाना।
0: बचाओ क्या